शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: दूरदर्शन का एक और पवित्र कार्यक्रम, एक और पवित्र एपिसोड हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं। और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं रोहिणी जी। और जैसा मैं हमेशा करता हूं, जिससे कि जो भी हमारे मेहमान है वो सीधे सीधे आपसे बात करें, मैं बीच में से हट जाऊं, मैं रोहिणी जी का स्वागत करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि वो आपसे बात करें, आपको बताएं कि वो कौन है, कहाँ है, क्या करती हैं। तो रोहिणी जी, हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए, उनके सामने आइए, हमें बताइए आप कहाँ हैं, क्या करती हैं।
1: मेरा नाम टीवी भी रोहिणी है। बेसिकली मैं हैदराबाद की नेटिव हूँ और रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में। ऑल माय लाइफ, जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक तो हम लोग सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड काम कर रही थी। बाय प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉरेक्स मैनेज करती थी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, ही वाज अ डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वी लिव्ड इन पंडारा रोड।
0: दोस्तों, आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पंडारा रोड बहुत ज्यादा हैपनिंग प्लेस है, और वहां पर रहकर हम बात करेंगे रोहिणी जी से, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया, समझा दुनिया को, जिंदगी को समझा। तो रोहिणी जी, इस प्रोग्राम के तहत हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, अपने आप को पहचानने की, तो आप मुझे थोड़ा एनलाइटन करने कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है क्या, और सबसे पहले आपको आध्यात्म के बारे में कब पता चला, किसने बताया?
1: ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे आपने इस सुंदर दिव्य दर्शन

0: नाम से जो चैनल आप कर रहे हैं काम इस नाम से उसको मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और सुंदर तरीके से अगर बताएं तो आध्यात्म तो हर घर में एवरीवन एवरी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो पूजा पाठ अपने घरों में करते ही हैं। तो आस्था ही हमने समझा कि स्पिरिचुअलिटी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा शुरुआत हुआ था, आई वुड से कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि मेरी आत्मा ने या मेरे सोल ने ऐसे पेरेंट्स को चुना जो आंध्रा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं।
1: जी।
0: तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग यू नो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करना, उनको मैं बचपन से देखती रही हूँ और मुझे लगा कि वही आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है। बट दैट इज ओनली रिचुअल दैट वी वर डूइंग इट, और आत्मा का अपने इवोल्यूशन के लिए जो चाहिए था वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर ये प्रश्न उठना कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ पे आई हूँ, इस पृथ्वी पे आके क्या मकसद है मेरा और मुझे कहाँ जाना है
1: जी।
0: अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर उठे तो आप समझो कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हो। देयर एक्चुअली योर फर्स्ट स्टेप बिगिंस। और वो कब होता है, जनरली हम देखते हैं कि या तो मन बहुत ही खुश है या फिर बहुत ही सैड है। जैसे घर पे आपने अपने क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को किसी को देखा, ही हैज पास्ड अवे और शी हैज पास्ड अवे, एंड यू सी द बॉडी एंड यू सी दैट ही इज नो मोर इन इट, देयर इज नो लाइफ, आत्मा कहीं चली गई। ये सिर्फ शरीर है। और वो जब देखते हैं वो वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है अंदर कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है
1: जी।
0: तो ये वाला जो प्रश्न आपने बोला मेरे स्पिरिचुअलिटी का कब शुरू हुआ, तो ये तो मेरे को लगता है कि 35-36 years old जब मैं हो गई, I lost my mother when I was 34, उसके बाद से ये डीपर सर्च जो है ये हमारा जर्नी इस सर्च पे शुरू हुआ।
1: ओके,
0: दिस इज व्हाट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी।
1: जी,
0: तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को समझ, जो मुझे समझ में आया अभी तक, तो मैं ये बता सकती हूँ आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी।
1: जी,
0: और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, मुझे ये ऐसा लगता है। आई एम देयर फ्रॉम 1996 से मैं कुछ साधना कर रही हूँ जिससे मुझे इस बात पे कॉन्स्टेंटली विथ कमिटमेंट चलने का मौका मिला।
1: जी, बहुत खूब। इसी तरीके की यात्राएं हमारे अपने जीवन में भी होंगी। आज जब रोहिणी जी ने कहा है तो हो सकता है आपको भी आपकी यात्रा याद और आ रही हो। दोस्तों, चलिए उस यात्रा पर चलते हैं अपने को समझने की और इस भजन को सुनते हुए।

0: बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर बात रोहिणी जी। तो आज के प्रस्पेक्टिव में, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है, जिस वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, उस समय में और समय में बहुत फर्क आ गया है। तो आज के यूथ के लिए आपको क्या लगता है, जो आज की जनरेशन है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारे परिवार में ही लोग हैं, उनके लिए अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज में ट्रेंड फॉलो करते हैं, घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पार्टनरशिप, कपड़े और जॉब और एवरीथिंग। सो आर दे फॉलोइंग ट्रेंड ओनली, या स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी मायने है उनका?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं अपने आपको ब्लेस्ड बोल रही थी, उसी तरह से मैं तो बोलूंगी कि आज का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर रियली ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उनको ये चीज तो समझ में आ जा रही है बहुत अच्छे से कि वेल्थ एंड नेम एंड फेम इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो भी कभी भी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या परमानेंट खुशी जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको कहाँ से तलाशना है, और उस परमानेंट खुशी के लिए क्या करना है, ये नॉलेज उन लोगों में बहुत यंग उम्र में ही मिलने लग गई है। मैंने जैसे बोला कि 36 इयर्स मुझे लगे कि वहां मेरा सर्च शुरू करने के लिए, तो मेरा बेटा जो 7 साल का था, ही वॉज रियली ब्लेस्ड। उसको अनोइंगली वो दीक्षा मिली, अनोइंगली उस पाथ को चुनने का मौका मिला, एंड देन ही कुड गो मूव फॉरवर्ड। उसी तरह से मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त किया, देन माई पैशन, इट वॉज माई पैशन टू टेक अलोंग पीपल ऑन दिस पाथ, हैंड होल्ड करके लोगों को, जिसको भी इंटरेस्ट है अपने आत्मज्ञान के रास्ते पे चलने का, उसका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाने का मेरा पैशन रहा है। हीलिंग वाज माय पैशन। पहले मैं बीमार थी, उसमें से मैंने अपने आप को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इस जर्नी पे चलती रही, और चलते चलते जितने लोगों को पॉसिबल है, जितने लोगों को चाहिए, इच्छा है, उन लोगों का हाथ होल्ड करके मैं आगे लेके चलना ही मेरा मकसद बना लिया अपने जीवन का
0: जी।
1: तो इसमें मैंने पाया है कि 8 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक, तब को मैं इस रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ। आई फैसिलिटेट द कोर्सेस फॉर देम। तो वो कोर्सेस के माध्यम से उनको अनोइंगली नोइंगली वो कौन है ये जानने का मौका मिल जाता है। और जो अल्टीमेट चीज है, हम इस पृथ्वी पे आए क्यों, क्या करना चाहते हैं, उसके रास्ते पे उनको ले जाना शुरू कर देती हूँ। तो आई फील दैट यंगर जनरेशन इज रियली ब्लेस्ड। और मैं देखती हूँ कितने यंगस्टर्स हैं जो एक बार इस रास्ते पे एक चख लेते ना, जैसे कि आंखें बंद किया और आपने ध्यान अपने सांस पे लेके गए, सी हु यू आर, आपको समझ में आना लगता है।
0: Wow.
1: और आज के डेट में बच्चे से लेके बड़े तक सारे स्ट्रेस में ही है, और जैसे स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ भी रास्ता अगर थोड़ा सा भी उनको चखा दो, तो दे आर गोइंग डीपली इनटू इट। तो आई वुड से कि इवन इफ दे आर फॉलोइंग ए ट्रेंड, इट नेवर माइंड, बट वो रास्ते पे चल पड़े ना
0: जी।
1: और वो जो चलना शुरू करते हैं, फिर उनको और कुछ चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ इस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। सो दे आर एंजॉइंग दैट अल्टीमेट ब्लिस एंड परमानंद जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। तो उससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं हमें।
0: बहुत सुंदर विचार करने वाली बात है, और हमें विश्वास कई बार हो जाता है कि हम यूथ से या आज की जनरेशन से थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबली हम चाहते हैं कि वो हमारी तरीके की जिंदगी जिए, लेकिन उनको भी पूरा हक है अपने तरीके से जीने का। तो रोहिणी जी ने बहुत प्यारे ढंग से हमें क्लैरिफाई किया, समझाया है। आइए विचार करते हुए इस भजन को सुने और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत सुंदर। और जाहिर से बात है रोहिणी जी, जैसे जैसे हमने पिछले सवाल में थोड़ा सा डिस्कशन किया और आपने हमें बताया, हमको समझ में आई बात। और आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी है हम पर, हम लगातार कोशिश में लगे हैं कि वो हमारे मतलब हमको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया से, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा पूछा। सोशल मीडिया समझिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जो इतने फास्ट इम्प्रूव हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, सोशल मीडिया क्या, ये सब चीजों के वजह से तो हमें कोने कोने में बैठे हुए भी कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो हमें बहुत जल्दी से पता चल जाता है, इजंट इट
0: जी।
1: तो अब इसके दोनों एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पुराने जमाने में टीवी चलती थी तो लोग, सिर्फ एक टीवी ही थी और कुछ थी नहीं, तो लोग उसमें ग्लूड हो जाते थे, बट देन देयर वाज अ टाइम कि दे वर फेड अप ऑफ दैट, दे कुड कम आउट ऑफ इट। सिमिलरली ये भी आप मानिए, सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फेसबुक है, लोग उसमें गुम हो जाते हैं। हाँ, उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं, वो खुद अपने विजडम से उनको ये यू नो दे नीड टू हैव देयर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बात सच्ची है कौन सी बात झूठी है, इतना तो विजडम उनमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। और वो मीडिया के वजह से वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, ये भी बहुत जरूरी है। बट ऑल सेड एंड डन, सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड एंड इज गुड। इट्स गुड दैट सोशल मीडिया के वजह से काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जिनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वो यहाँ टटोलते टटोलते बाय चांस एक्सीडेंटली भी अगर उसमें कहीं देख लेते हैं एंड देयर उनका इंटरेस्ट जग जाता है तो इट कैन कॉज एन अवेकनिंग इन देम, सो यू कैन टेक इट इन बोथ वेज।
0: जी,
1: सोशल मीडिया कैन इम्पैक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और बहुत ही अच्छे वैल्यूज के साथ में सोशल मीडिया को अगर लेके चले तो इट विल हैव वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन इवन स्पिरिचुअलिटी एंड द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं।
0: आई गेट इट। तो जाहिर सी बात है,

दोस्तों, ये बात बार बार कही जा रही है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड। हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना होगा। इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि हम अपना नुकसान कर बैठें, लेकिन सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए विचार करते हुए, ये एक थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है सोशल मीडिया को यूज करने का, विचार कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए।

0: रोहिणी जी, बात स्पिरिचुअलिटी की हो, आध्यात्म की हो, तो एक टर्म और है जो पीछे नहीं रह सकता, वो है रिलीजन। ठीक है, हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में यहां बात नहीं करेंगे, लेकिन आध्यात्म और धर्म, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, हमें बताइए ना, क्या ये एक ही चीज है या अलग अलग है?
1: धर्म तो वो हुआ जिसमें आप लोग पर्टिकुलर रिलीजन से आप पैदा हुए हो, उसी रिलीजन में जहाँ पे आपके पेरेंट्स एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो आप, आपके आत्मा ने उन पेरेंट्स को चुना और इस रिलीजन को चुना, आप पैदा हुए और उसमें चल रहे हो, एक आस्था के साथ चल रहे हो, दैट इज अ रिलीजन। बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट द रिलीजन। आप अगर एक बनाना लोगे, बनाना का जो छिलका है वो समझिए कि वो रिलीजन है, और बनाना जो है वो है स्पिरिचुअलिटी है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल अगर बोलो तो।
0: जी जी जी जी, जी.
1: तो हम लोग क्या कहाँ फंस गए, हम लोग सारे अपने अपने रिलीजन के, मतलब बनाना के छिलके में फंसे हुए हैं। बनाना को टेस्ट करना और बनाना को एक्सपीरियंस करना, स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड। जो बंदा स्पिरिचुअल होता है, आई मीन स्पिरिचुअल पाथ में जो चल पड़ता है, उसको ही इज एबल टू कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड and he understands the true being of love. You are made up of love and you are love. To wo ek experience hai, spirituality is an experience, I would say.
0: Ji.
1: Aur wo experience aapko itna mature kar deta hai ki aap har kisi mein positive cheez hi dekh sakoge aur prem se duniya ko connect kar sakoge, kyunki whole world, this whole world is nothing but the कॉन्शियसनेस ऑफ प्योर लव, और आप कण कण से आप जुड़ सकते हो विद दिस एक्सपीरियंस ऑफ लव। द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ लव, तो ये हमें उस तरह से कनेक्ट कर सकता है, और स्पिरिचुअलिटी इज दैट, आई वुड से। और रिलीजन में तो वो बात वहां से कुछ और में चली जाती है ना। रिलीजन इज फर्स्ट स्टेप, यू कैन से एटलीस्ट रिलीजन, एक रिलीजन फॉलो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान को मानते हैं, कुछ आस्था है, कहीं पे श्रद्धा भक्ति बनी हुई है उनके अपने ही तरीके से, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप। तो ये तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आप इसको आगे मिला के ले जा सकते हो।
0: आई गेट यू पॉइंट। दोस्तों अगेन, बहुत ज्यादा गहराई से विचार करने की जरूरत है। ये हल्का फुल्का विषय वैसे भी है नहीं, क्योंकि जब ये पूरी जिंदगी को बदल के रख देने की ताकत रखता है तो गहराई से विचार तो दोस्तों करना होगा ना। चलिए एक प्यारे से भजन को सुनते हुए विचार करते हैं, मेडिटेट करते हैं।

0: वाह हाँ
1: बहुत सुंदर। अब एक शब्द मुंह से निकल गया मैम, मेडिटेशन।
0: बिल्कुल, जैसे आपने मेडिटेशन बोला था वाह बोला
1: जी। सो क्या अध्यात्म में मेडिटेशन का रोल है, किस तरह से है? अगर है तो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं मेडिटेशन को, मतलब इसका मतलब हुआ ध्यान। तो मैं
0: यस
1: एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे क्लैरिटी मिल रही है ध्यान का मतलब क्या है मैम, और क्या
0: बिल्कुल
1: अध्यात्म में ध्यान अगर हम यूज करें तो कुछ ज्यादा फायदा है,
0: बिल्कुल
1: मतलब व्हाट इज द यूसेज?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब चल पड़ते हैं तो सदियों पुरानी हमारे जो संस्कृति है भारत की, हजारों साल से लोग मेडिटेट करते रहे हैं। ऋषि मुनिया जो जो हमारे गैंजेस के बैंक्स के ऊपर बैठ के करते रहे हैं, दैट इज अ टेक्निक कॉल्ड मेडिटेशन।
1: जी
0: मेडिटेशन इज नथिंग बट जस्ट लेटिंग गो, जस्ट लेट गो ऑफ योर सेल्फ। आपके क्रेविंग्स या अवर्शंस को लेट गो करना ही है और कुछ नहीं है। इट इज वेरी सिंपल टू लेट गो, और वो ही हम कर नहीं पाते हैं। जैसा ही हम लेट गो नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस बनती है। वेरी सिंपली आई वुड से पास्ट क्या है? पास्ट तो चला गया, क्या आप उसको लेके आ सकते हो? क्या नहीं ला सकते? और फ्यूचर क्या है? क्या आप जानते हो आगे क्या होने वाला है?
1: कुछ नहीं पता।
0: आगे का भी हमें पता नहीं। बड़ी सिंपल, एक बड़ी सुंदर एक सॉन्ग है, आई रिमेम्बर, आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू,
1: जी,
0: जो भी है बस यही एक पल है, इजंट इट?
1: एब्सोल्युटली।
0: तो जो भी है वो सिर्फ यही इस पल है, और इस पल की गहराई में जाना जो है वो मेडिटेशन है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, यू आर फुल्ली इन टू दैट, पूरे दिल जान से आप जो भी काम कर रहे हो, जब उसके अंदर आप घुस जाते हो, दैट इज मेडिटेशन। यू नो, फुल्ली बींग योर 100% इन दैट वर्क, वॉट एवर यू आर डूइंग इज मेडिटेशन। और इस पल को जीना वही मेडिटेशन बोलते हैं।
1: जी
0: और इसी पल के लिए वेरी ब्यूटिफुली इट हैज बीन सेड, प्रेजेंट इज इट, इट्स अ गिफ्ट, इजंट इट?
1: करेक्ट,
0: ये पल
1: एब्सोल्युटली,
0: जो है गिफ्ट है, वो आपके लिए प्रेजेंट है, वो
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल
0: इसको ही
1: सही कहा।
0: समझना हमारे लिए बहुत
1: सर
0: इम्पोर्टेंट है।
1: कुशलता से
0: एंड
1: बहुत
0: इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक
1: सकता हूँ।
0: जो हम अपने सांसों के माध्यम से मेडिटेशन के अंदर जा सकते हैं। एंड ब्रेथ इज द वन दैट कनेक्ट्स यू टू द आउटर एक्टिविटी एंड द इनर वर्ल्ड।
1: यस
0: आप आंखें बंद करो, और 1 मिनट के लिए अगर आप आंखें बंद करें और ध्यान अपने सांस पे ले जाएंगे, जस्ट फॉर ए मिनट,
1: जी,
0: कैन यू डू दैट? आप आंखें बंद करो और ध्यान अपने सांस पे ले जाएं, धीरे से आंखें खोलें,
1: वाओ, एब्सोल्युटली।
0: यू फील सो रिलैक्स्ड। So I can make you meditate just for 10 minutes and you can experience and let me know how you feel it.
1: ऑफ कोर्स
0: अपना रास्ता जो है, बोलते ना ब्रह्म ज्ञान खुद के अंदर है, ब्रह्मा जी ने अपने अंदर ही दबा दिया है। इट इज एवरीथिंग इज इनसाइड यू एंड यू आर एज ए ह्यूमन बीइंग सर्चिंग आउटसाइड एवरीथिंग तो वापस अपने घर का रास्ता। मतलब ये मान के चलो कि मेरा जो मकसद बना है आपको आपसे पहचान कराना, यू नो, खुद से खुद का जो मिलन है
1: जी,
0: वही है रास्ता अपने आप अंदर ले जाने वाला, और जो आपको आपके हु यू आर पे ले जाता है। आप समझ पाओगे, दैट इज इट
1: गेट यू पॉइंट, आई गेट यू
0: अल्टीमेटली।
1: पॉइंट।
0: हाँ, बस अपने अंदर ही जाना है, बाहर कुछ भी नहीं है। बाहर की दुनिया से हमने अपने आप को समेट के अंदर ले जाना सीखना है।
1: करेक्ट,
0: और इसके लिए अगर आपके लाइफ में कोई भी गुरु अगर मिल जाता है, गुरु मीन्स एनी वन हु कैन गाइड यू with confidence into that direction. Guru is nothing like आपके कमरे के बाहर रोशनी है, धूप है, आपके कमरे के अंदर धूप आने के लिए आपको खिड़की खोलना पड़ेगा ना.
1: Absolutely.
0: तब खिड़की से रोशनी आ सकती है, धूप अंदर आ सकता है. तो गुरु इज द वन हु इज ब्रिंगिंग लाइट इनटू योर लाइफ. यू हैव टू डू एवरीथिंग इज जस्ट लाइक यू नो, आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हो, रेलिंग का सपोर्ट हो तो आप बहुत आसानी से ऊपर चढ़ सकते हो.
1: जी.
0: अगर रेलिंग नहीं है तो आपको ऊपर चढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है. सो गुरु कैन मेक योर लाइफ वेरी वंडरफुल एंड वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड मूव फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन विच यू कॉल इट द स्पिरिचुअलिटी, टू वॉक ऑन द स्पिरिचुअल पाथ. तो ब्लेस्ड आई एम. मुझे भी टाइम लगा था एक गुरु मेरे जीवन में आने के लिए, बिकॉज आई माइसेल्फ वाज ब्लॉक्ड. बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी पूजा पाठ करने वाले थे, तो मुझे तो लगा कि मैं ही सब कुछ जानती हूँ, मैं अपने आप जो कर रही हूँ दिस इज द ओनली वे करके. बट व्हेन आई रियलाइज्ड, जब मेरे लाइफ में एक गुरु आए, एक पहला अपना तबीयत बिगड़ गया था जिसके वजह से मैं डेथ बेड पे जाके आई थी. As I told you, I lost my mother in when I was 34, and I myself went into death bed when I was 35. जब वहां से लौट के आई तो बोलते ना, एक रात के अंधेरे में जब आप चले जाते हो तो सुबह तो एकदम immediately after that is सवेरा only.
1: Correct.
0: Midnight के बाद में तो सवेरा आने वाला है. So I had gone to that lowest ebb, and then when I came out, I could see the sun. I could see the light in my life, and that was the path that I kept holding on to. And commitment ke saath mein wo sadhana karna bahut hi zaruri hai. Agar aapka maqsad aap apne aap ko janna chaho ki main kaun hu, main kahan se aayi hu aur main kahan ja rahi hu, to is cheez ke prashnon ka jawab ke liye to aapko sadhana commitment ke saath mein karna bahut hi zaruri hai.
1: Ji. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, कई बार किसी पर्टिकुलर इवेंट से इंस्पायर होकर, इन्फ्लुएंस होकर, मोटिवेट होकर और प्रोबेबली प्रेशराइज होकर कोई चीज सीख लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि उसके बेनिफिट्स कितने थे जो हम शायद आसानी से सीख भी सकते थे. दोस्तों आज मौका है रोहिणी जी की बातें सुनकर स्पिरिचुअलिटी को अपनाने का, अपने आप को पहचानने की कोशिश करने का, कॉन्शियसली डेलिबरेटली अपने अंदर झांक लीजिए. बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुंदर. तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से भजन को सुने और फिर मैं वापस आता हूं रोहिणी जी के पास.

0: बहुत सुंदर रोहिणी जी, आपकी सारी की सारी बातें सुनकर अगर कोई व्यक्ति ये तय करे कि अभी तक तो चलिए मैम मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब मैं आध्यात्मिक बनूंगा, स्पिरिचुअल बनूंगा, तो आप उसको मतलब दो तीन सिंपल, बहुत सिंपल कोई स्टेप्स बताइए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया होगा वो इंसान इस चीज के लिए, तो 1 2 3 कुछ स्टेप्स बताइए कि क्या करे वो।
1: जैसे आपने बोला कि एकदम फ्रेश बंदा है और उसने शुरू करना है कुछ आध्यात्म के रास्ते में
0: जी,
1: पहले उसके अंदर वो मैच्योरिटी आनी है कि हाँ मैं कौन हूँ जानना चाहते हो तो आप ये समझो कि आप इस रास्ते पे चल सकते हो। आप सिर्फ बॉडी हो क्या, या आपने जो भी लाइफ में एक्वायर किया है वो सारे आपके साथ शुरुआत से नहीं थे, आपने एक्वायर किया हुआ है। आर यू ओनली दैट, इज देयर एनीथिंग समथिंग बियॉन्ड दैट? आप सिर्फ खाना पीना सोना या वेल्थ एक्वायर करना, नेम फेम करना, इतना ही समझते हो क्या लाइफ, या लाइफ में कुछ और भी है, या ऐसा कोई चीज है जो परमानेंट खुशी नाम की चीज है, लाइफ इज एटर्नल बोलते हैं, क्या उस चीज को जानना चाहते हो, लाइफ इज एटर्नल कहाँ है कैसे है, तब वो इस रास्ते पे चलने के लिए शुरू हो जाते हैं।
0: ओके,
1: अगर ये क्वेश्चंस उनके अंदर उठना शुरू हुआ तो वो समझो कि इस बात पे पैर रखने के लिए तैयार है। और यहाँ शुरुआत करने के लिए कुछ नहीं, आज के डेट में लोग इतना परेशान स्ट्रेसफुल लाइफ हो गया है हर इंसान का, इवन छोटे बच्चों से लेके बड़े तक, एवरीवन इज गोइंग इनटू स्ट्रेस। डू यू एग्री टू दैट?
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली।
1: तो अब पहला क्वेश्चन, आप स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो क्या? तो डेफिनेटली एवरीबडी वुड लाइक टू गो आउट ऑफ स्ट्रेस एंड बी हैप्पी एंड जॉयफुल ऑलवेज, कम व्हाट मे बी द सर्कमस्टेंसेस। डू यू वांट टू कम बैक टू दैट जॉयफुल स्पेस इन यू? तो अगर स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहते हो तो जैसे आपने बोला है, मेडिटेशन इज वन इजी वे, सहज मेडिटेशन है जो एफर्टलेसली कर सकते हैं। अब मेडिटेशन के लिए आंखें बंद करना है, क्या आप आंखें बंद कर सकते हो? और कोई गाइड कर रहा हो तो उसको गाइड सुनते सुनते आप कर सकते हो कि नहीं वो देखो। वेरी सिंपली आई कैन से आई विल जस्ट गाइड यू इनटू अ मेडिटेशन जस्ट फॉर 10 मिनट्स एंड सी। 10 मिनट्स क्या, 5 मिनट, 2 मिनट भी आप शुरुआत करते हो तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। ध्यान आंखें बंद करना है और अपने सांसों पे ले जाना है। पहला ब्रेथ जो है, आप जब आए थे यहाँ पे दुनिया में पहला काम क्या किया था? पहला सांस लिया था,
0: ऑफ कोर्स,
1: है ना? और लास्ट हम क्या करते हैं बॉडी छोड़ने से पहले? लास्ट सांस लेते हैं, छोड़ देते हैं, सांस छोड़ी और बाहर गए, isn't it?
0: जी।
1: So the whole life is between that first breath that you have taken and the last breath that you are going to leave. और वो बीच में जो भी गुजरा है अप्स एंड डाउन्स, वो हमारी लाइफ रही है। और ये सांस ही है, ये सांसों का डोर ही है जो आपको, आपके माइंड को और आत्मा को कनेक्ट करता है। तो आपके आत्मा तक पहुंचने के लिए ये सांसों की डोर के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं।
0: करेक्ट।

0: whole world is one, it is full of one consciousness. Now the scientifically देखो तो पूरा दुनिया एक general vibration ही है. हम उस vibration को general vibration को अलग महसूस करते हैं, इसलिए हमारे अंदर we feel that there is a special vibration in us. When we let go this special vibration in us and start experiencing oneness with this universal vibration, तो आप ये समझो खुद का आत्मा का परमात्मा का मिलन हो चुका है और उसी पे जाना है हमें.
1: Right,
0: isn't it?
1: Absolutely. बहुत खूबसूरत.
0: And that is possible. बहुत ही सुंदर तरीके से सांसों के माध्यम से हम कर सकते हैं. Taking attention to your breath. Keep taking attention to your breath consciously. बार बार उसको लेके आना है. हाँ, लोग समझते हैं कि मेडिटेशन मतलब थॉटलेस हो जाना. दैट इज नॉट इट. आप माइंड को जो थॉट्स आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है. इट्स नॉट दैट रेजिस्टिंग द थॉट्स. एंड यू नो जैसे आप रिजेक्ट करते हो, रेजिस्ट करते हो थॉट्स को जस्ट विद द कॉन्सेप्ट दैट मेडिटेशन मीन्स थॉटलेसनेस, वो गलत कॉन्सेप्ट है. मेडिटेशन इज नॉट बीइंग थॉटलेसनेस. मेडिटेशन इज एक्सेप्टिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग, विटनेसिंग एवरी थॉट दैट इज कमिंग ऑन योर माइंड. सो इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. थोड़ा सा हमने बस लेट गो ही करना है. जैसे ही लेट गो करते हो आप वो शांति एक्सपीरियंस करने लगते हो, स्ट्रेस आपका डिसॉल्व होने लगता है. द मिनट आपका स्ट्रेस कम हुआ यू विल फील मोर एनर्जेटिक. हमें सिर्फ एनर्जी तो चाहिए, ज्यादा चाहिए ना, जो भी काम कर रहे हैं पूरा अच्छे से करने के लिए, और पूरा दिन ही हम एनर्जेटिक फील करें और किसी भी तरह के चैलेंज को हम ओवरकम कर पाए. उसके लिए शक्ति चाहिए, मन को चाहिए, माइंड को भी चाहिए. वो शक्ति आपको मेडिटेशन से और सांसों के ध्यान पे करने से आपको आ जाएगा.
1: राइट मैम. दोस्तों बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है जैसा मैम ने बताया, और उसको अपनाना, उसको प्रैक्टिस करना इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट एट ऑल. बहुत खूब रोहिणी मैम, आपका बहुत बहुत आभार है. थैंक यू सो वेरी मच. आज बहुत सारे मिथक हमारे दूर हुए हैं, बहुत कंफ्यूजन्स हमारे क्लियर हुए हैं और सिंपल रास्ते हमें मिले हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने के लिए और बहुत सारी बातें हमें बताने के लिए. थैंक यू सो मच मैम.
0: थैंक यू गॉड ब्लेस यू. मे योर जर्नी बी कंप्लीट एंड होल. That's what I would wish every listener. हमारे यहाँ पे जो भी आपको सुन रहा है सब अपने अपने तरीके से, रास्ता सभी का एक ही है. हम अलग अलग रास्ते से जा भी रहे हैं, पर्पस एक ही है और जाना भी हमने एक ही जगह में, दिव्य दर्शन को प्राप्त करने के लिए ही हम इस पृथ्वी पे आए हैं. बस वो अगर हमें समझ में आए तो हम बड़े आराम से निकल सकते हैं.
1: राइट मैम.
0: Thank you. God bless you.
1: Thank you.

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। अगर हर जोडियक साइन, हर राशि एक पेट होता। नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा हटके है, थोड़ा फनी, थोड़ा रिलेटेबल और थोड़ा सा

अरे ये तो मैं हूं वाला फील देने वाला। आज हम बात करने वाले हैं, अगर हर जोडियाक साइन एक पेट होता तो वो कैसा होता। सोचिए, अगर एरीज, टॉरस, जेमिनाई ये सब इंसान नहीं पेट्स होते तो उनका एटीट्यूड, उनकी आदतें कितनी इंटरेस्टिंग होती। तो चलिए एक इमेजिनरी पेट वर्ल्ड में चलते हैं। सबसे पहली राशि एरीज, द हाइपर पपी। एरीज एक छोटा सा पपी है, इतनी एनर्जी कि आप थक जाओ पर वो कभी नहीं। सुबह 6 बजे ही उठो उठो उठो खेलते हैं, अगर बॉल फेंक दो तो वो बॉल लेके वापस आएगा, लेकिन कभी कभी खुद ही भूल जाएगा कि बॉल कहाँ है। एरीज पेट का रूल सिंपल है, एक्शन पहले सोच बाद में। टॉरस, रॉयल कैट। टॉरस एक क्लासी कैट है जिसे कंफर्ट सबसे ज्यादा पसंद है, सॉफ्ट कुशन, परफेक्ट टेम्परेचर, परफेक्ट एस्थेटिक्स और खाना टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। अगर मूड नहीं है तो आप बुलाते रहो, वो सिर्फ आपको देखेगा और इग्नोर करेगा विद एटीट्यूड। जेमिनाई, द टॉकिंग पैरट, बोलता तोता। जेमिनाई एक तोता है जो सिर्फ बोलता नहीं, नॉन स्टॉप बोलता है। आप कुछ भी बोलो वो उसका रिप्लाई देगा और फिर उसका भी रिप्लाई देगा और कभी कभी खुद से ही बात करता रहेगा। कैंसर, इमोशनल टर्टल। कैंसर एक प्यारा सा टर्टल है, थोड़ा स्लो लेकिन बहुत इमोशनल। अगर आप थोड़ा सा भी इग्नोर कर दो तो अपने शेल में चला जाएगा, लेकिन प्यार मिले तो आपके पास ही चिपक के बैठ जाएगा। लियो, ड्रामा किंग लायन। लियो ऑब्वियसली लायन ही होगा। एंट्री ऐसी जैसे स्टेज पर आ रहा हो, अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए और अगर इग्नोर कर दिया तो ड्रामा गारंटीड है। वर्गो, परफेक्शनिस्ट रैबिट। वर्गो एक रैबिट है जो हर चीज परफेक्टली चाहता है, फूड भी अलाइन होना चाहिए, स्पेस क्लीन होना चाहिए और अगर कुछ भी ऑफ हो गया तो वो खुद ही ठीक करेगा। लिब्रा, स्टाइलिश स्वान। लिब्रा एक स्वान है, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल और हमेशा बैलेंस में, लेकिन उनके डिसीजंस उसमें खैर टाइम लगता है। ये खाना या वो खाना, ये ड्रेस या वो ड्रेस, ये प्रोफेशन या वो प्रोफेशन, और वो बस सोचता ही रहेगा। स्कॉर्पियो, द मिस्टीरियस स्नेक। स्कॉर्पियो एक स्नेक है, इसमें कोई दोराहे नहीं है। साइलेंट, ऑब्जर्वेंट, थोड़ा ज्यादा इंटेंस, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, ज्यादा लोगों से इनकी पटती भी नहीं, लेकिन जिस पर ट्रस्ट हो जाए उसके लिए सब कुछ, जान भी हाजिर है। सैजिटेरियस, द फ्री हॉर्स। सैजिटेरियस एक हॉर्स है जो बंधन बिल्कुल पसंद नहीं करता, खुला मैदान, फ्रीडम और एडवेंचर। अगर आप इसे बांधने की कोशिश करोगे तो ये सीधा भाग जाएगा। केप्रिकॉन, द वाइज एलिफेंट। केप्रिकॉन एक एलिफेंट है, स्ट्रॉन्ग, काम, इंटेलिजेंट और फोकस्ड, हर चीज प्लान करके करेगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अक्वेरियस, एक यूनिक डॉल्फिन। जी हाँ, अक्वेरियस एक डॉल्फिन है, डिफरेंट, इंटेलिजेंट और थोड़ी क्वर्की। कभी आपको समझ नहीं आएगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन वो खुद परफेक्टली क्लियर है अपने विजन में। और आखिरी राशि पाइसिस, द ड्रीमी फिश। पाइसिस एक फिश है जो अपनी ही दुनिया में रहती है, ड्रीमी, क्रिएटिव और हमेशा फुदकती हुई और कभी कभी रियलिटी से थोड़ी डिसकनेक्टेड, लेकिन दिल सबसे सॉफ्ट। दोस्तों, हर साइन अलग है, हर पेट अलग है और हर इंसान भी अलग होता है।
کسی میں انرجی زیادہ ہے، کسی میں ایموشن زیادہ ہیں، کسی میں لاجک زیادہ ہے اور کسی میں ڈریمز. او مائی گاڈ، اگر آپ کو لگ رہا ہے یہ تو بالکل میں ہوں تو ریلیکس، سب کو لگ رہا ہے. دنیا انٹرسٹنگ اسی لیے ہے کیونکہ سب الگ ہے، اور اگر سب سیم ہوتے تو لائف کتنی بورنگ ہوتی، سائمیز ٹوئنز جیسے. اسی لیے اپنے اندر کے پیٹ کو سمجھو اور دوسروں کے پیٹ کو ایکسپٹ کرو. میں ہوں آپ کی دوست. اگلی کہانی تک ضرور بتائیے گا آپ کا زوڈیاک پیٹ کون سا ہے اور کیا وہ آپ سے میچ کرتا ہے. تب تک کے لیے اپنی وائف کو انجوائے کریے اور لائف کو تھوڑا فن بنائیے.

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। बजट रोमांटिक्स। ये बंदा बोलता है मैं तुम्हें चांद तारे ला दूंगा, और डेट पे बोलता है स्प्लिट कर लेते हैं, इक्वालिटी भी तो इम्पोर्टेंट है। What?

हेनरीज कैफे, जहां चाय से ज्यादा कहानियां उबलती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिलचस्प कहानी के साथ। आज की कहानी थोड़ी सी धीमी है, थोड़ी सी गर्म चाय जैसी। पहले सिप में सिंपल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे आप उसे महसूस करोगे, अंदर कहीं गहरा उतरती चली जाएगी। शहर और उसकी दौड़, ये कहानी है एक शहर की। बड़ा शहर, भीड़ भरा, रोशनियों से जगमग, और फिर भी अंदर से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अकेला। यहाँ लोग भागते बहुत हैं, पर रुकते कम हैं। मिलते बहुत हैं, पर समझते कम हैं। और इसी शहर के एक कोने में एक छोटी सी गली थी, जहां वक्त थोड़ा धीरे चलता था, और वहां था हेनरीज कैफे। ना कोई फैंसी लाइट्स, ना लाउड म्यूजिक, बस एक पुराना सा वुडन बोर्ड जिस पर हाथ से लिखा था हेनरीज कैफे, और उसके नीचे छोटी सी लाइन थी, यहां चाय के साथ थोड़ा सा सुकून फ्री है। आप सोचोगे ऐसा क्या खास है इस जगह में? खास ये है कि यहां लोग चाय पीने नहीं, अपने आप से मिलने आते थे। हेनरी, वो कौन था? ज्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते थे, ना उसका पास्ट, ना उसकी कहानी। बस इतना पता था कि वो हर इंसान को थोड़ा ज्यादा ध्यान से सुनता था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो दुनिया की दौड़ से बाहर खड़ा हो, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो, और बस देख रहा हो, समझ रहा हो, बिना जजमेंट्स के। एक अजीब सी बात, हेनरी के कैफे में एक अजीब सी बात थी। यहां मेन्यू सिंपल था, चाय, कॉफी, थोड़ा सा खाना, लेकिन हर ऑर्डर के साथ एक सवाल फ्री मिलता था। जी हाँ, एक सवाल, और वो सवाल कभी सिंपल होता था, कभी गहरा, कभी वो सिर्फ इतना ही पूछता था, तुम ठीक हो? और लोग हंसते हुए कहते, हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन हेनरी के सवाल में कुछ ऐसा था कि लोग थोड़ी देर बाद रुक जाते थे और फिर धीरे से कहते थे, शायद नहीं। रोज शाम को तीन लोग वहां जरूर आते थे, जैसे तीन अलग कहानियां एक ही किताब के अलग पेजेस हों। राघव, कॉर्पोरेट जॉब, अच्छी सैलरी, सब कुछ परफेक्ट दिखने वाली लाइफ, लेकिन आंखों में थकान और एक अजीब सा खालीपन। वो रोज आता, चाय मंगाता और बस एक ही लाइन बोलता, यार समझ नहीं आता प्रॉब्लम क्या है। दूसरी मीरा, एक आर्टिस्ट, स्केचबुक हमेशा साथ होती थी, पर पेजेस अक्सर खाली रहते थे। उसके हाथ में टैलेंट था, लेकिन दिल में डर, डर कि लोग क्या कहेंगे। और तीसरी, शांति अम्मा, एक बूढ़ी माँ जो रोज आती थी, एक ही कुर्सी पर बैठती थी और दूर देखते हुए चाय पीती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, जो शायद कभी आने वाला ही नहीं था। एक शाम जो अलग थी, उस दिन बारिश हो रही थी, शहर धीमा पड़ गया था और कैफे में सिर्फ तीन लोग थे। हेनरी ने चाय सर्व की और इस बार उसने एक अलग सवाल पूछा, अगर कल सब खत्म हो जाए। जी हाँ, अगर कल सब खत्म हो जाए तो आज क्या करोगे? सवाल बहुत सिंपल था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। सच सामने आता है। राघव चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं जॉब छोड़ देता, मैं वो करता जो मैं सच में करना चाहता हूं। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखा देती, चाहे लोग हंसें या समझें, मैं दिखाती। और शांति अम्मा ने बहुत धीरे से कहा, मैं उसे माफ कर देती, अपने बेटे को,
हेनरी ने उन्हें देखा और बस इतना कहा, तो कल का वेट क्यों? अगले कुछ दिनों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। राघव ने सच में रेजिग्नेशन दे दिया, डर के साथ लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। मीरा ने अपनी फर्स्ट एग्जीबिशन प्लान की और पहली बार उसने अपनी पेंटिंग्स दुनिया को दिखाई। शांति अम्मा ने फोन उठाया, नंबर डायल किया और बस इतना कहा, बेटा घर आ जाओ। एक दिन तीनों कैफे आए लेकिन दरवाजा बंद था, बोर्ड हटा हुआ था और अंदर कोई नहीं था, जैसे वो जगह कभी थी ही नहीं। एक छोटा सा नोट, दरवाजे पर एक कागज चिपका हुआ था, जिंदगी रुकती नहीं, बस कभी कभी हम रुक जाते हैं, जवाब हमेशा तुम्हारे अंदर है, मैं सिर्फ तुम्हें याद दिलाने आया था। With love, Henry। तीनों वहां खड़े रहते हैं चुप। राघव बोला, ये कौन था? मीरा बोली, शायद एक इंसान। शांति अम्मा मुस्कुराई और बोली, नहीं वो एक एहसास था। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बहुत देर के लिए नहीं लेकिन बिल्कुल सही वक्त पर। वो आपको बदलने नहीं, बस आपको आपसे मिलवा देते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, आपको कभी पता नहीं चलता कि आप किसी की लाइफ में हेनरी बन चुके हो। कभी एक सही वक्त पर बोला हुआ शब्द, कभी एक सही वक्त पर दिया हुआ साथ, और कभी एक छोटी सी स्माइल किसी की जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। तो आज जब आप अपनी चाय पियेंगे या अपनी रूटीन में बिजी होंगे, तो एक बार रुक कर खुद से जरूर पूछेगा, मैं सच में क्या चाहता हूं? और अगर जवाब मिले तो कल का वेट मत करना। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सुन रहे थे एक दिलचस्प कहानी। आज का थॉट सिंपल है, कभी किसी के लिए हेनरी बन जाना, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक सही सवाल पूछना ही काफी होता है।

चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय। हमेशा बिजी रहने वाले लोग, ये लोग इतने बिजी होते हैं कि फ्री होने के लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए। कल मिलते हैं, कल बिजी हूँ। पर तुम तो घर पे हो। हाँ घर पे बिजी हूँ।

0: ये कार्य अभी अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है। बॉस बोले,
1: कल से मत आना भाई। तो दोस्तों, बात सिंपल सी है।
0: गैड जूखरी एक स्टाइल है, एक फ्लेवर है, एक अंदाज है, जो कहानियों को खूबसूरत बनाता है, बातों को गहरा बनाता है, लेकिन रियल लाइफ में थोड़ा सा ही अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए। आज किसी एक दोस्त को थोड़ा गैड जूखरी स्टाइल में मैसेज जरूर कीजिएगा, जैसे, हे मित्र, आपका दिन मंगलमय हो, और फिर उनका रिएक्शन देखिएगा। मुझे पक्का लगता है या तो वो कंफ्यूज होंगे, या फिर हंस पड़ेंगे, या फिर डायरेक्टली कॉल करेंगे आपको चेक करने के लिए, आपकी तबीयत चेक करने के लिए। चलिए एक और सीन। नॉर्मल, फोन क्यों नहीं उठाया? गैड जूखरी स्टाइल, हे प्रिय, तुमने मेरे आह्वान को क्यों अनसुना किया? रिप्लाई, फोन साइलेंट था यार। कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ में हम सिंपल शब्दों में ही सब कुछ कह देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा रुक कर, थोड़ा महसूस करके, थोड़ा प्यार से बोलेंगे ना, तो वही बात एक याद बन जाती है, एक मोमेंट, एक मेमोरी शायद। और शायद यही है गैड जूखरी का असली मतलब, शब्दों को थोड़ा और खूबसूरत बना देना और थोड़ा और महसूस करवा देना। मैं हूं तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे थे बातें इधर की उधर की। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए शब्द, एक और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए अपनी बातों में थोड़ा सा एहसास, थोड़ा सा जादू और थोड़ा सा स्टाइल जरूर रखिए।

0: घोड़ा चतुरा घोड़ा ये क्या रहा घोड़ा चतुरा एक पैर है ना या घोड़ा बोला या चतुरा बोला गा
1: एक चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत जात अरे आय आय आय आय आय आय चतुर नार बड़ी होशियार करके सिंगार अपने ही जाल मेरे मन के द्वार फंसत जात घुसत जात हम हंसत जात मरत जात
2: Zodiac Junction, जब 12 रास्ते एक ही मंजिल तक ले गए। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी सी हटकर है। इसमें ना सिर्फ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग हैं, बल्कि उनकी सोच, उनकी आदतें और उनके डिसीजंस सब कुछ एकदम हटके हैं। सोचिए, अगर जिंदगी एक सफर हो और हर इंसान अलग रास्ते से चल रहा हो तो क्या होगा? अगर एक दिन सभी रास्ते एक ही जगह पर आ मिले। एक अजीब सी जगह थी, ना मैप पर मिलती थी ना गूगल पर। नाम था जोडियाक जंक्शन, एक पुराना सा रेलवे स्टेशन जहां से वो लोग आते थे जो लाइफ में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते थे या फिर जो अपनी मंजिल ढूंढ रहे होते थे। उस रात वहां 12 लोग मिले, सब अलग, सब यूनिक और सब अपनी कहानी के साथ। अर्जुन हमेशा जल्दी में। अर्जुन प्लेटफॉर्म पर आते ही बोला, ट्रेन कहां है, मुझे जल्दी है। उसे रुकना बिल्कुल पसंद नहीं था, उसके लिए लाइफ रेस थी, बिल्कुल एक एरीज की तरह। भावना कंफर्ट क्वीन। भावना ने पहले बेंच चेक की, ये कंफर्टेबल है भी या नहीं। उसके लिए सफर का मजा सुकून में था, बिल्कुल एक टॉरस की तरह। चिराग नॉन स्टॉप टॉकर। चिराग ने आते ही सबसे बात करना शुरू कर दी, आप कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, और बिना जवाब का वेट किए खुद ही बोलता रहा, बिल्कुल एक जेमिनी की तरह। छवि दिल से जीने वाली। छवि थोड़ी इमोशनल थी, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होकर बोली, ये जगह थोड़ी अजीब सी फील दे रही है, नहीं, बिल्कुल एक कैंसर की तरह। लक्ष्य अटेंशन मैग्नेट। लक्ष्य एंट्री ऐसे करता है जैसे हीरो हो किसी फिल्म का, गाइज रिलैक्स मैं हूं ना, आई टेक केयर ऑफ इट, बिल्कुल एक लियो की तरह। विरेन परफेक्शन लवर। विरेन ने पहले ही 10 बार शेड्यूल देखा, फिर क्लॉक देखी और फिर बोला, सब कुछ परफेक्टली अलाइन्ड है, टाइमिंग सही है, बिल्कुल एक वर्गो की तरह। लीना कंफ्यूज्ड बट चार्मिंग। लीना 2 टिकट्स हाथ में लिए खड़ी थी, ये वाली लूं या वो वाली, डिसीजन उसके लिए एक एडवेंचर था, बिल्कुल एक लीब्रा की तरह। समर एक साइलेंट ऑब्जर्वर। समर चुप था, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, सबको देख रहा था, जैसे सबकी कहानी समझ रहा हो, बिल्कुल एक स्कॉर्पियो की तरह। कबीर एक फ्री सोल। कबीर ने बोला, यार कोई भी ट्रेन आ जाए मैं तो चढ़ जाऊंगा, उसके लिए मंजिल से ज्यादा सफर इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल एक सैजिटेरियस की तरह। देव फोकस्ड। देव सीधा खड़ा था, मैं यहां एक रीजन से आया हूं, एक टारगेट से, मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचूंगा, बिल्कुल एक कैप्रिकॉर्न की तरह। अयान एक अलग थिंकर। अयान ने अचानक बोला, गाइस क्या हो अगर ट्रेन ही इल्यूजन हो। सब उसे देखते रह गए, बिल्कुल एक अक्वेरियस की तरह। मेहर ड्रीमिंग। मेहर आसमान देख रही थी, शायद हम सब एक ही कहानी का हिस्सा हैं, बिल्कुल एक पाइसिस की सोच। और फिर अनाउंसमेंट हुआ, ध्यान दीजिए जोडियक जंक्शन पर आने वाली ट्रेन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सच्ची मंजिल जानते हैं। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। क्या सच में उन्हें पता था कि वो कहां जा रहे हैं? अर्जुन रुक गया। पहली बार शायद मुझे नहीं पता, भावना बोली। मुझे सिर्फ कंफर्ट चाहिए था, मंजिल नहीं सोची। चिराग चुप हो गया। सच में पहली बार। हर किसी को रियलाइज हुआ कि वो बस चल रहे थे लेकिन पता नहीं था कि कहां जा रहे हैं। तब समर ने धीरे से कहा, शायद ट्रेन यहां आएगी ही नहीं। सब शॉक हो गए। क्या मतलब? समर बोला, शायद ये जगह ट्रेन के लिए नहीं है, ये जगह हमें रोकने के लिए है, ताकि हम सोच सकें, समझ सकें कि हम सच में क्या चाहते हैं। और उस मोमेंट पर सबको समझ आ गया, जोडियक जंक्शन एक स्टेशन नहीं था, एक पॉज था। कोई ट्रेन नहीं आई, लेकिन सब वहां से चल दिए अपनी अपनी डायरेक्शंस में, लेकिन इस बार एक क्लियर माइंड के साथ। अर्जुन धीरे चला, भावना ने कंफर्ट के साथ एक पर्पस भी चूज किया, चिराग ने सुनना सीखा और हर किसी ने अपनी मंजिल खुद डिसाइड की। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ के जोडियक जंक्शन पर कभी ना कभी खड़े जरूर होते हैं, जहां हम रुकते हैं, कंफ्यूज होते हैं और सोचते हैं, मैं जा कहां रहा हूं? और शायद वही पॉज जरूरी होता है, क्योंकि बिना रुके सही रास्ता कभी नहीं मिलता। मैं हूं आपकी दोस्त और आज का सवाल बहुत सिंपल है, आप अपनी लाइफ के जोडियक जंक्शन पर हो या ऑलरेडी ट्रेन पकड़ चुके हो? सोचिए और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी प्रोग्रेस होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भी 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है एक शिक्षिका की उड़ान के आसमानी रंग का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी टीचर से जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर फेस को नए रंग नए जज्बे के साथ जिया है। दिल्ली के एक रेप्यूटेड स्कूल में 30 साल तक टीचिंग का समर्पित सफर और रिटायरमेंट के बाद भी सीखने आगे बढ़ने की लगन, यही इनकी पहचान है। डांस का शौक, भरतनाट्यम सीखना और मंच पर परफॉर्म करना, मंडला आर्ट और गार्डनिंग में मन लगाना, एनवायरमेंट कैंपेन से जुड़ना, इनकी लाइफ वाकई में इंस्पिरेशन से भरी हुई है। और सबसे खास इनका प्यार रेडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म से। अपना पॉडकास्ट शुरू करना, मेंटजा पर सोलफुल कन्वर्सेशंस करना और साधो जी के साथ खलील जिब्रान द प्रॉफिट पर 30 अर्थपूर्ण चर्चाएं करना, ये सब इनकी क्रिएटिव और थॉटफुल जर्नी को बखूबी बयान करता है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए एक आर्टिस्ट, एक इटर्नल लर्नर शुचि भसीन जी का, जिन्होंने जिंदगी को सच में एक कला बना दिया है। नमस्कार शुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, नमस्ते जी, जय हिंद। आप सबको खूबसूरती लगकर बधाइयां। सबसे पहले आलोक जी, आपका और समीर जी का और इस मंच का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने हम जैसे आम इंसानों को यहाँ पर आने का फैसला किया। और
0: ठीक है शुचि जी, फिर शुरुआत करते हैं, बिल्कुल आपके साथ में, आपके साथ इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी टीचिंग जर्नी की। दिल्ली के एक रेप्यूटेड स्कूल में 30 साल तक पढ़ाने का अनुभव आपका कैसा रहा, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए वहाँ के अनुभव।
1: जी, 22 साल की उम्र से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और उस समय का जोश और पैशन बहुत अलग तरह का था। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर चीज को साथ करते हुए बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ सहा भी। ये जर्नी वॉज वेरी चैलेंजिंग।

0: जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई का, पढ़ाने बच्चों को पढ़ाने का जो तजुर्बा चाहिए होता है समाज के लिए, चरित्र निर्माण करना बच्चों का और उनको हर तरह के अच्छे संस्कार देना, नई दिशा दिखाना, ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करी। और हमेशा यही रखा मेरे दिमाग में कि बच्चों को पढ़ाते समय मैं खुद भी साथ साथ उनके साथ ग्रो कर रही हूँ, उनको कुछ नया सिखाना पढ़ाना, जिसके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। धैर्य, सहानुभूति नहीं कहूंगी मैं, समानुभूति, रचनात्मकता और अडेप्टेबिलिटी, जैसे बहुत सारे वैल्यूज जो है वो सीखने को मिले।
1: जाहिर है, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। और दिल्ली जैसे शहर में स्कूल आना जाना, ये भी बहुत ही एक टफ टास्क रहती है, आई एम श्योर।
0: जी जी बिल्कुल, काफी डिस्टेंस था मेरे घर से और पीता, तो दिन के 4 घंटे तो आने जाने में ही लग जाते थे।
1: जी,
0: तो इसके साथ साथ घर को तो संभालना और स्कूल की पढ़ाई की जिम्मेदारी सब साथ साथ ही चलता है।
1: बिल्कुल सही बात। एक टीचर के तौर पर आपके लिए सबसे यादगार या रिवार्डिंग पल कौन सा रहा होगा? आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे, लेकिन कोई खास जो आपके जहन में हो।
0: जी, पल तो ऐसे बहुत सारे थे, पर एक एक साल के लिए मैंने बीच में ब्रेक लिया था। उस दौरान मुझे एक बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करना पड़ा, डून स्कूल के लिए, और उसकी उसने 6th-5th स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो है वो 7th स्टैंडर्ड के लेवल तक की तैयारी करनी थी उसने, और जो
1: अच्छा,
0: मैंने उसको 6 महीने तक पढ़ाया और वो एंट्रेंस एग्जाम में पास हुआ, एंड उसके पेरेंट्स ने बहुत बहुत खुश हुए कि भी हमारी पूरी इच्छा थी उस बच्चे को वहां तक पहुंचाने की और आपने उसमें हमारा सहयोग दिया। तो वो पल बहुत ही खूबसूरत पल था
1: बहुत
0: मेरे लिए।
1: ही पेरेंट्स ने बड़ा ग्रेटिट्यूड फील किया होगा, क्योंकि दून स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उसकी पढ़ाई करना, वो भी ऐसे दिल्ली में रह के, और उसके एंट्रेंस को क्लियर करवाना, आपने बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल बिल्कुल,
0: बहुत
1: बहुत बहुत बड़ा काम है।
0: के साथ साथ मैंने भी बहुत सारी पढ़ाई करी।
1: नेचुरली, बिल्कुल सही बात है। तो इतने लंबे समय तक बच्चे बच्चों और पेरेंट्स के साथ जुड़कर आपने खुद भी बहुत ग्रो किया होगा, खुद भी कुछ सीखा होगा। कोई ऐसी बातें जो बच्चों से हम सीख पाते हैं, ऐसा क्या ख्याल है आपका?
0: बच्चों से तो खैर वैसे तो हम हर किसी से हर समय कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं,
1: जी।
0: बच्चों के साथ जिंदगी जीना, अपना बचपन फिर से जीना, बच्चों का जो खिलखिलाकर हंसना और बेपरवाह होकर अपने कामों में लगे रहना, ये सब सीखने पर लगता है कि हम फिर से अपना बचपन जी रहे हैं बच्चों के साथ।
1: तो जी
0: बहुत
1: शुजी जी, हाँ बहुत बिल्कुल सही बात। तो शुजी जी, ये बच्चों की खिलखिलाहट पे जो आपने कहा है, इसी पे हम एक बच्चों से जुड़ा हुआ कोई गाना सुनते हैं, यहाँ हम रुक जाते हैं।

0: बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगर

0: बोले मतलब हिंदी, इस पगर से बट पर वोट मतलब क्या,
1: छुट्टी जी रिटायरमेंट के बाद आपने भरतनाट्यम सीखा और स्टेज पर भी परफॉर्म किया, ये इतनी एनर्जी और ये इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली कि मैं ऐसा कर सकती हूं और फिर स्टेज पे परफॉर्म करना, मैं थोड़ा बहुत सीखना तो चलिए कोई बात नहीं है लेकिन स्टेज पे परफॉर्म करना तो बहुत बड़ा काम है, आपने कैसे किया ये सब?
2: कोविड का टाइम था, हम सब ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ खोया उस टाइम में, हर चीज में ऑनलाइन, शिक्षा प्रणाली से लेकर नौकरी तक हर चीज ऑनलाइन हो गई थी। उस समय मैंने भी एक डांस की क्लास ज्वाइन करी और एक 1.5 साल तक भरतनाट्यम सीखा इसे, और फिर हमें जब कोविड में लॉकडाउन खुला तो हमें फिर मौका मिला कि हम स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मैं सबसे बड़ी थी उम्र में उस ग्रुप में, और 6 साल की बच्ची से लेकर उस समय मैं 58 की थी, 58 इयर्स आई वाज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट देयर फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट। बहुत अच्छा सफर था वो और बहुत कुछ सीखने को भी मिला उस दौरान। एक्चुअली पार्किंसंस को फाइट करते हुए मैंने सोचा था कि कुछ नया करना चाहिए लाइफ में, तो इसी को करके मैंने भरतनाट्यम ज्वाइन किया और ऑनलाइन क्लासेस लेकर ही हमने पूरा अपना प्रोग्राम तैयार किया। और मैंने अपनी पार्टनर के साथ जो 52 ईयर ओल्ड थी उनके साथ स्टेज पे सरस्वती वंदना का पूरा 5-6 मिनट का प्रोग्राम था वो करा। दैट वाज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। और सबसे खूबी की बात तो आपकी ये नजर आ रही है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेके भरतनाट्यम के बेसिक सीखे होंगे और फिर उसको परफॉर्म किया, ये कमाल है, ये बहुत बड़ी बात है।
2: हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि हम स्टेज पे रिहर्सल कर सकें या कुछ,
1: जी जी
2: 2-3 फिजिकल रिहर्सल कर सके क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा बहुत तो फिर भी चलता था, आपको पास में नहीं रहना लोगों के और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो सब ध्यान में रखते हुए भी हम ऑनलाइन ही क्लासेस, ऑनलाइन ही प्रैक्टिसेस करते रहे।
1: नेचुरली फिर क्या, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप तो चलिए मुझे ये बताइए कि जैसे आर्ट और क्रिएटिविटी जब ये आप सीख रही थी भरतनाट्यम या परफॉर्म कर रही थी, तो इससे कोई आपको अंदर से अपने अंदर बदलाव या कोई इनर ग्रोथ या कोई ऐसी इंस्पिरेशन, ये क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ चेंज आया आपके लाइफ के आउटलुक में या इनर स्ट्रेंथ में, ऐसा कुछ लगता है आपको?
2: मेरे ख्याल से डांस और म्यूजिक ऐसी चीज है जो हर किसी को बदल सकता है, एक इंस्पिरेशन होती है, तो वही इंस्पिरेशन मुझे भी मिली और पॉजिटिविटी बहुत रही मुझमें इस दौरान और अभी भी मैं उसको बरकरार रखती हूँ क्योंकि पार्किंसन जैसे इसको फाइट करना पॉजिटिविटी के बिना नहीं हो सकता, काफी पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है दोनों की आर्ट और म्यूजिक में, बहुत बहुत कुछ सीखने को है और अभी भी सीखना चाहती हूँ पर कई बार अपनी लिमिटेशंस होती हैं तो नहीं कर पाता इंसान, बट यस इनर स्ट्रेंथ तो बहुत आती है इन चीजों से जब आप अपने आप को महसूस कर सकते हो इन सब में, फाइंडिंग योरसेल्फ, सेल्फ डिस्कवरी होती है।
1: जी जी जी پارکنسن کے ساتھ آپ نے یہ چیلنج لیا اور کیا, بہت بڑی بات ہے, آپ کے جذبے کو سلام ہے, میں تو یہی کہوں گا.
2: ایسا کچھ نہیں, بس اپنی اپنے من کو پکا کرنے کی بات ہوتی ہے اور ایک اپنے میں سنیم لانا اور اپنے آپ کو پازیٹو رکھنا, میں تو یہی کہوں گی کہ یہ سب سے ضروری ہے کسی بھی چیز کے لیے, کسی بھی بیماری کے لیے اس کو فائٹ کرنے
1: کی. جذبے کے بالکل سے, تو اس جذبے کے نام پہ ہم ایک گانا سنتے ہیں, جذبے آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے.

0: श्रुति जी, आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। अब थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि कौन से हिंदी सॉन्ग्स या सिंगर्स आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिनको मिलके सुन के आपको सुकून लगता है और मजा आता है?
1: लता जी, आशा भोसले, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश दा, इन सबके गाने सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं, जो अभी भी दिल के बहुत करीब हैं। आजकल आज की डेट में बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आ गए हैं, पर अभी भी हमारा जो मैं कहूंगी कि उन उस समय के गानों का जो था, उनका सुर और उनकी लिरिक्स जो थे, वो आज की डेट में कहीं नहीं मिलेंगे। आप वंडरफुल पीरियड लता जी और किशोर कुमार।
0: अब तो फिर आपने इतनी लता जी किशोर जी की बातें कर ली हैं, आप तो ये बताइए कि कोई ऐसा गाना जो आपको बड़ा मोटिवेट कर देता है, इमोशनल कर देता है या एनर्जाइज कर देता है, कोई
1: जी
0: ऐसा गाना आप बताइए हमारे को, दो तीन गाने बताइए जो अच्छे लगते हैं।
1: सफर का है गाना, एक जिंदगी का सफर है, एक
0: हाँ,
1: ऐसा
0: है कैसा सफर,
1: बहुत ही खूबसूरत,
0: बहुत बढ़िया।
1: रोटी कपड़ा और मकान का मनोज कुमार के गाने आज भी दिल को छू जाते हैं।
0: जी, सफर के खाने तो बहुत अच्छे थे। मुझे याद है राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की पिक्चर थी,
1: जी,
0: और जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, वो भी
1: बहुत
0: मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो। एक और है वो फिरोज खान के साथ में, हो जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे।
1: वही बात कहेंगे।
0: हाँ, ये हमेशा मैं अपने घर में भी गाता रहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं
1: जी
0: है। तो ये गाने

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: श्रुति जी, आपने साधु जी के साथ प्रॉफिट पर 30 मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस की हैं, ये आइडिया आपको किस तरह से आया?
2: साधु जी के साथ मैं मेंटर पर ही जुड़ पाई और उनके साथ काफी मैंने उनके सर्कल्स अटेंड करे, उनके साथ हमारी भी बातचीत होती थी, आप भी उनमें कभी कभी शामिल होते थे
1: जी।
2: उन्होंने ही मुझे एक बार कहा कि वो प्रॉफिट की ट्रांसलेशन अपने तरह से अपने विचारों से करना चाहते हैं, तो मैंने होस्ट किया उनका वो प्रोग्राम जिसमें उन्होंने 30 सेशन में हर विषय पर चर्चा करी और उनके मैं किताब में से पढ़ के बताती थी और फिर वो अपने तरीके से उसको एनालाइज करके एक्सप्लेन करते थे।
1: अच्छा, तो
2: वो हमने पूरा किया, बहुत बहुत बड़ा काम था वो मेरी लाइफ का, वेरी फुलफिलिंग।
1: अच्छा, मुझे याद आ गया वो जो मॉर्निंग के अंदर साधु जी आया करते थे
2: जी। काफी उनके सर्कल काफी चलते थे पहले तो, बीच में धीरे धीरे अपना अपना ही शुरू करा।
1: अच्छा अच्छा, तो ये खलील जिब्रान की राइटिंग में आपको कौन सा थॉट या चैप्टर आपके दिल के बहुत करीब है? लव, फ्रीडम, पेन या चिल्ड्रन, कौन सा आपको अच्छा लगता है?
2: हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला
1: जी जी।
2: चिल्ड्रन का तो ये है कि चिल्ड्रन कम थ्रू यू, दे आर नॉट योर्स, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। हर एक एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ अलग ही था उसमें
1: जी।
2: लव का उसमें या कुछ आपके चिल्ड्रन के बारे में बात करें, अपने आप को पहचानने की बात है, सेल्फ डिस्कवरी की बात है,
1: सेल्फ डिस्कवरी, अपने अंदर झांकना, अपने आप को पहचानना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं शुचि जी अपन, और आपकी जो पसंदीदा चीजें हैं, गार्डनिंग है, मांडला आर्ट है, एनवायरमेंट की कैंपेन्स है, इनने आपकी लाइफ में क्या

0: बैलेंस दिया है, कोई सुकून दिया है, पीस दिए है, क्या दिए आपको ये सब करने से?
1: गार्डनिंग तो सुबह सुबह जब मैं अपने बगीचे में जाती हूँ अपने फूलों के साथ और पौधों के साथ बातचीत करती हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है।
0: जी
1: सुकून वहाँ बहुत सवेरे का जो है नया दिन शुरू करने पर मिलता है, बहुत ही अनमोल है। रही बात मंडला की, तो उसमें मंडला आर्ट करते करते जो डिसिप्लिन और एक जो क्रिएटिविटी है और साथ ही साथ आपकी जो बारीकी से काम करने का है तरीका, इससे बहुत सुकून मिलता है। पहले कुछ करने का बाकी तो हर चीज में रहना चाहिए, कितना कुछ नए दिन में कोशिश करती हूँ। पर्यावरण से या एनवायरनमेंट से बहुत ही ज्यादा, क्योंकि साइंस की टीचर थी तो हमेशा बच्चों को ये सिखाते थे कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे भी अपने आसपास में हमने प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन ड्राइव शुरू करी हुई है और एक एनजीओ के साथ अटैच हैं, जहाँ पर हम हर महीने अपना वेस्ट कलेक्ट करते हैं, प्लास्टिक का देते हैं, वो आगे करते हैं। ऐसे मैंने 15-20 लेडीज को साथ ग्रुप बनाया हुआ है और
0: अच्छा अच्छा
1: हम उसी में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम प्लास्टिक को थोड़ा कम करें अपने देश में रहते हैं।
0: मतलब आप जिस सोसाइटी में, जिस कम्युनिटी में रहती है, वहां भी आपने एक प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोजल का या कुछ ऐसा तरीका इजाद किया है जिसमें आप चाहती हैं कि ये सब नहीं हो प्लास्टिक है?
1: हम सब अपने घर में जो वेस्ट प्लास्टिक होता है वो इकट्ठा करते हैं हर महीने,
0: जी
1: और महीने का एक दिन उन्होंने डिसाइड किया है जहाँ पर एनजीओ की बाढ़ आती है और सारा वेस्ट जो है वो कलेक्ट करके ले जाते हैं।
0: अच्छा।
1: राधु बहन उसका डस्टबिन हम लोग इकट्ठा करके उनको देते हैं, फिर आगे उसका डस्टबिन जो भी है।
0: बहुत बढ़िया। आज के इस दौर में जबकि लोग बहुत ज्यादा कंसर्न नहीं है एनवायरनमेंट को लेकर, आप कोई मैसेज देना चाहें लोगों को, कोई बात कहना चाहें कि भाई ये करो?
1: आज की डेट में तो हर किसी को पता है क्या करना है, क्या गलत है, क्या सही है। किसी को बताने वाले बताने का मतलब ये है कि जब तक हम कुछ ना करें तो हम किसी को कह भी नहीं सकते कि आगे कुछ करिए। पर
0: जी
1: यही है कि जितना कम से कम हम प्लास्टिक अपनी लाइफ में यूज करें या कम कर सकें तो करने की कोशिश करनी चाहिए। और आज गुरु नानक देव जी साहिब की कई वाणी में मैं एक लास्ट शब्द कहना चाहूंगी यहाँ पर। नानक देव जी ने कहा है, किरत करो, वर्क हार्ड एंड वर्क ऑनेस्टली, नाम जपो, ऑलवेज रिमेम्बर गॉड एंड वन विद जपो, शेयर विद देवी। तो आई विल प्रे एंड सजेस्ट वी ऑल शुड फॉलो दिस।
0: हाँ, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। नानक देव जी का जो मैसेज है वो ही हमको रिट्रीट करना चाहिए सब लोगों के लिए। बहुत बड़ी बात है। तो शुचि जी, यहाँ नानक देव जी के नाम पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।

0: अब सुचि जी, हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं इस इंटरव्यू की। तो जब आपने टीचिंग से लेकर आर्ट, डांस और रेडियो तक कई रोल्स निभाए हैं, आगे अब क्या कुछ नया एक्सप्लोर करने का इरादा है, कुछ और इच्छा है आपकी कि मैं ये करूं?
1: अभी तो इच्छाएं तो कभी इंसान की खत्म होती नहीं है।
0: जी जी जी,
1: पर अभी फिलहाल ऐसा मेरे हाथ में आया नहीं है कि मैं आपकी कैसी करती हूँ। अभी ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है मेरी
0: जी,
1: अभी कुछ ऐसा सोचा है।
0: आप क्या देश के बाहर भी ट्रेवल करती हैं या सिर्फ देश में ही ट्रेवल करती हैं?
1: देश के बाहर भी करते हैं, दोनों बच्चे बाहर करते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: बेटी मेरी कनाडा में और बेटा दुबई में।
0: जी,
1: अच्छा। उन्हीं के पास आना जाना मेरा लगा रहता है। सोलो ट्रैवलिंग करना मेरा बहुत बड़ा सपना है, टूर पे जाना।
0: अच्छा अच्छा,
1: कुछ और नया करना अभी फिलहाल तो मैंने आगे दो बच्चों को सिलाई सिखाने का बीड़ा उठाया है।
0: अच्छा अच्छा,
1: एक्चुअली इसी लाइन में मैं आगे काम करना चाहती हूँ। तो छोटे बच्चे बच्चे हैं तो थोड़ा सा
0: अच्छा
1: करने की कोशिश करें।
0: तो सुचि जी, आपने लिसनर्स और पुराने स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई एक मैसेज देना चाहें, आपके स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे पुराने दिल्ली के अंदर, कोई मैसेज देना चाहें तो क्या होगा?
1: ये होगा कि अपने आप को स्वीकार करना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और उस चीज को एक्सेप्ट करो जहाँ पर आप उस चीज को स्वीकार करो जहाँ आप कुछ नहीं बदल सकते, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। एंड लेट गो, जो चीज आपके बस में नहीं है तो छोड़ दें। इसलिए अपने आप को प्रताड़ित ना करें, लेट गो।
0: बहुत खूबसूरत बात कह दी आपने, लेट गो वाली। अगर हम दुनिया में ये लेट गो समझ में आ जाए लोगों के, तो इससे बढ़िया कोई बात ही।
1: गो विद द फ्लो।
0: तो दोस्तों, कितनी खूबसूरत बातें और कितना प्रेरणादायक सफर। सुचि ने हमें दिखाया कि जिंदगी का हर पड़ाव एक नई शुरुआत हो सकता है, बस जरूरत है सीखते रहने और जीते रहने की। टीचिंग से लेकर डांस तक, रेडियो से लेकर फिलोसफी तक, उन्होंने हर फील्ड में अपनी ओरिजिनलिटी और वार्म्थ को से नया रंग भरा है। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और हर दिन कुछ नया सीखने का एक नया मौका आता है। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और हर दिन कुछ नया सीखने का एक नया मौका होता है। सुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी कहानी और अनुभव हमारे लिसनर्स के साथ बांटने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, याद रखिए, लाइफ इज ब्यूटिफुल व्हेन वी कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। मैं आलोक कुमार आपसे लेता हूं इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।
2: छोटी सी हमारी कायनात बन गई।
4: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
5: लुई पास्चर। आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पास्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
6: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
5: 27 दिसंबर सन 1892 सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
7: De Marseille, dans le sud de la France.
8: Ladies and gentlemen, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान के दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मोनसिनर द अबेडी उन्हें ये मेडल प्रदान करेंगे।

मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।

0: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है, उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
1: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
2: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।

0: किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन
1: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते हैं।
2: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
1: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
2: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
1: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
3: सन 1831 में
0: जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
1: चलो
0: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
4: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे की छड़ से दाग देता था।
5: चलो चलो चलो चलो चलो
6: चलो चलो चलो चलो चलो चलो।
0: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
4: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
0: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में 4th स्थान प्राप्त किया।
4: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
0: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
4: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
0: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
7: लुई पाश्चर
8: सर,
7: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
8: कहिए सर।
7: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब

0: दूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
1: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
0: ठीक है।
2: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पास्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पास्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
3: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड को नष्ट किया जाता है और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन है।
2: पास्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
3: इस जानकारी के साथ ही पास्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
2: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
3: सन 1874 में लिस्टर ने पास्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में बताया जिससे पास्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
2: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
3: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
2: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
3: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पास्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
2: तो फिर उन्होंने क्या किया?
3: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पास्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला ड्रग दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये ड्रग नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
4: अरे आजा आजा आजा, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
5: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
2: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
6: सर सर ये टेलीग्राम।
5: अच्छा लाओ दिखाओ।
6: अरे
1: आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
6: क्या हुआ सर?
1: देखो, टीके वाली सभी भेड़े बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
6: कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो सर।
1: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़े मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं?
6: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
1: हाँ चार्ल्स।
2: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
3: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
7: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ, पैरों और जांघ पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
1: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
7: डॉक्टर साहब, कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
1: देखिए आप,
7: ओह गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
1: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ, अब
7: मेरा
1: अच्छा,
7: बेटा।
1: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
2: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
3: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
2: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
3: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
2: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया, तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ, जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
3: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे, वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
2: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
1: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
2: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया। और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, माई ग्रैंडफादर वॉज द जेंटलेस्ट विद द गुडनेस ऑफ हिज हार्ट, मोस्ट अफेक्शनेट एंड सेंसिटिव इंडिविजुअल। ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, ऑलवेज वर्किंग टूवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज,
1: विज्ञान गीत।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: बाबा

कहावत है, अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा एक दिया जलाना ज्यादा अच्छा है। हमारे समाज में बहुत से लोग असहाय हैं और उनमें से अनेक भिखारी का जीवन बिता रहे हैं। इन दुखी लोगों के बारे में सोचते तो सब हैं, पर कुछ लोग संकल्प कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना है जिससे दूसरों का दुख कम हो। ऐसे ही एक कर्मवीर हैं बाबा आमटे, जिनकी करुणा का साकार रूप है आनंदवन। आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में एक बस्ती है। यहां कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और सम्मान के साथ जीवन बिता रहे हैं। बाबा का पूरा नाम मुरलीधर देवीदास आमटे है। पर इनकी मां इन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में 26 दिसंबर 1914 को हुआ। इनके पिता देवीदास हरबाजी आमटे एक बड़े जमींदार होने के साथ साथ सरकारी अधिकारी भी थे। मुरलीधर की मां पढ़ी लिखी नहीं थी, पर थी बहुत बुद्धिमान। मां ने इन्हें चित्रकला सिखाई, प्रकृति और प्राणी जगत से इनका परिचय कराया। मां सिखाती, जो सुख लेने में है उससे ज्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है। हार न मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मां के द्वारा दी गई सीख ही बाबा के जीवन में पग पग पर काम आई।

सेवा भाव से मुरलीधर के स्वप्नों को साकार करने में बहुत सहायता दी। सन 1948 में मुरलीधर वरोंस्की नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। वे सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भी थे। इसी पद पर रहकर उन्हें इन लोगों की वास्तविक दशा का पता चला। उन्होंने सोचा, जब तक मैं स्वयं इन लोगों का कार्य नहीं करता, मुझे इनकी कठिनाइयों का ज्ञान नहीं हो सकता। उन्होंने भी सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हो रही थी। सिर पर मैले की टोकरी रखे जैसे ही मुरलीधर ने पांव उठाया कि उनकी नजर एक कुष्ठ रोगी पर पड़ी। जहां मन भयभीत रहे वहां प्यार कैसा, और जहां प्यार नहीं वहां ईश्वर नहीं। मुझे अपने मन से भय को भगाना ही पड़ेगा। महात्मा गांधी ने अपने हाथों से कुष्ठ रोगी की सेवा की, फिर मैं अपने कर्तव्य से क्यों पीछे हटूं? बस इसी संकल्प के साथ वे अपने कार्य में लग गए। उन्होंने कोलकाता जाकर कुष्ठ रोग की चिकित्सा में विशेष प्रशिक्षण भी प्राप्त किया। सैकड़ों कुष्ठ रोगी प्रतिदिन उनके पास आने लगे और अपना इलाज कराने लगे। पहले माँ उन्हें बाबा कहती थी, अब सभी उन्हें बाबा पुकारने लगे। कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा करते हुए बाबा ने देखा कि उनकी समस्या केवल उस भयंकर रोग से छुटकारा पाने की ही नहीं, अपितु मानसिक भी है। इस रोग को इतना घृणित समझा जाता है कि परिवार वाले भी रोगी के पास नहीं फटकते। रोग से छुटकारा पा लेने पर भी समाज के लोग उसे स्वीकार नहीं करते और उसे अपना जीवन भिखारी के रूप में ही बिताना पड़ता है। लोगों को ये भ्रम है कि इस रोग का इलाज नहीं हो सकता और ये छूत का रोग है, किंतु ऐसा नहीं है। अब इसका इलाज भी संभव है। बाबा अधीर थे कि कैसे इन पुनः स्वस्थ हुए लोगों को बसाया जाए। उन्होंने अपने प्रयत्न से 250 एकड़ जमीन इस कार्य के लिए जुटाई और स्वस्थ हुए व्यक्तियों को उस पर खेतीबाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। सबसे पहले बनी बाबा आमटे और साधना ताई के लिए बांस की एक झोपड़ी, और फिर बनने लगे उसके आसपास इन रोगियों के लिए आवास, अस्पताल और विद्यालय। बाबा की झोपड़ी तो कई वर्षों बाद अब भी कुछ कुछ वैसी ही है, परंतु आसपास के भवनों को देखकर चकित हुए बिना नहीं रहा जाता। ये सब हैं बाबा की लगन और परिश्रम के साकार रूप। कुष्ठ रोगियों में किसी के हाथ नहीं, किसी के पांव की उंगलियां नहीं, और कोई देख नहीं सकता, पर सभी लगे हैं अपना भविष्य बनाने में। कोई केवल पैरों से मशीन चलाता है, तो कोई अंधा होते हुए भी फुर्ती से कुर्सी बुनता है। जो व्यक्ति जिस काम के उपयुक्त है वो उसी में लगा है।

बाबा आमटे नहीं चाहते कि इन लोगों की सहायता दान से की जाए। बाबा का विश्वास है, काम से आदमी का निर्माण होता है। वे प्रत्येक विकलांग व्यक्ति को कोई ना कोई हुनर सिखाकर उसे अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं।

बाबा आमटी के दो पुत्र हैं, विकास और प्रकाश। दोनों डॉक्टर हैं। विकास आनंदवन के स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष है। यहां रोगियों की चिकित्सा तो की ही जाती है, उन्हें स्नेह और सहानुभूति भी मिलती है, उनके आत्मसम्मान को बढ़ावा दिया जाता है और उन्हें फिर से स्वावलंबी बनाया जाता है।

आज आनंदवन के आसपास लहलहाते खेत हैं, फलों के बगीचे हैं, मुर्गी घर और पशु घर हैं। आसपास की चप्पा चप्पा भूमि इन लोगों के पसीने से सींचकर सोना उगल रही है। आस पड़ोस की मंडियों में यहाँ की उगाई साग सब्जी बिकने जाती है, दूध घी और मक्खन का व्यापार होता है। यहाँ के खेतों में उत्पन्न बीजों की नई किस्में भारत के कोने कोने में पहुंचाई जाती हैं। आनंद वन में कहीं बच्चों के लिए विद्यालय हैं, कहीं खेल के मैदान। कहीं छोटे छोटे कारखाने हैं, कहीं मनोरंजन के कार्यक्रमों के लिए सभागृह। यहां रहने वाले लोगों के चेहरों पर मुस्कान है। आनंद वन सचमुच

बाबा आमटे बच्चों से अगाध स्नेह करते हैं। एक बार एक दृष्टिहीन बालक ने गुलाब का फूल छूकर देखने की इच्छा प्रकट की। बाबा उसे फूलों के बगीचे में ले गए। बालक ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसकी उंगली में कांटा चुभा। उसने हाथ पीछे खींच लिया। बाबा आमटे उसी दिन से कांटों रहित गुलाब के पौधे की खोज में लग गए और अंत में आनंद वन में वो पौधा लग गया जिस पर गुलाब तो है पर कांटे नहीं। वास्तव में बाबा का संपूर्ण जीवन ही दूसरों के मार्ग से कांटों को हटाने में और फूल खिलाने में लगा है।

बाबा के कार्यों की सफलता से प्रेरणा पाकर अनेक स्थानों पर ऐसे आश्रमों की स्थापना हुई जिनसे असहाय व्यक्तियों को सहायता मिली। अब बाबा की कीर्ति फैलने लगी। उन्हें जगह जगह से सम्मान पत्र भेंट किए जाने लगे। भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया। 1978 का जमनालाल बजाज पुरस्कार तथा 1985 का मैग्सेसे पुरस्कार भी बाबा आमटे को प्रदान किए गए। ऐसे अनेक अन्य पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए। बाबा इन पुरस्कारों से प्राप्त समस्त धनराशि आश्रमों में लगा देते हैं। अपने देश में शांति तथा राष्ट्रीय एकता का वातावरण बनाए रखने के लिए बाबा हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। भारत जोड़ो अभियान भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए चलाया गया है। बाबा आमटे उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: रेलगाड़ी
2: बच्चों, रेलगाड़ी तो तुमने देखी होगी, है ना? हाँ, पहचान गए ना? रेलगाड़ी में होता है एक बड़ा सा इंजन और उसमें जुड़े होते हैं बहुत सारे डब्बे, तभी तो बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर आते और जाते हैं। और हाँ बच्चों, कितना मजा आता है जब तुम रेलगाड़ी का खेल खेलते हो, है ना? कैसे? तो आओ चलते हैं राजू और संजू के घर, जहां हो रहा है

0: को जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही समय में आ रही है।
1: दादाजी, ये तो बहुत बड़ी गाड़ी है।
2: हाँ बच्चों, देखा, ये है सचमुच की रेलगाड़ी। वो सबसे आगे इंजन है और उसके पीछे डिब्बे।
1: दादाजी वो देखिए, एक आदमी हरी झंडी दिखा रहा है। वो हरी झंडी क्यों दिखा रहा है?
2: इसलिए क्योंकि हरी झंडी दिखाने से तो गाड़ी चलती है और लाल झंडी दिखाने से रुक जाती है।
1: अच्छा। अरे हाँ, रेलगाड़ी तो चल रही। आइए दादाजी, अब तो गाड़ी चली गई, सब लोग भी चले गए।
2: हाँ हाँ बच्चों, चलो चलो वापस घर चले।
1: हाँ हाँ दादाजी, चलिए।
0: चुक चुक चुक चुक चुक।

0: उन उन व्यक्तियों में जिनमें सिकल सेल वाहक होता है उनमें कोई लक्षण नहीं होता है,
1: किस तरह के भी कोई लक्षण नहीं होता है,
0: ये अपने सामान्य जीवन जीते हैं। किंतु ये क्या, ये इन्हें भी पता होना चाहिए कि वो सिकल सेल रोगी है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस बीमारी को ले जाने का काम करते हैं। अतः इन लोगों को भी पता होना चाहिए कि हाँ हम सिकल सेल रोगी हैं, और जब हम शादी करें या शादी करें तो उस समय हम ध्यान रखें कि हम मेरी जब शादी हो रही है तो मेरी सिकल सेल रोगी से शादी ना होकर सामान्य व्यक्ति से हो, तो ये बीमारी यहाँ रुक जाए। तीसरा प्रकार होता है सिकल सेल एनीमिया प्लस थैलेसीमिया के कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों का जोड़ होता है। ये गंभीर तरह का होता है, इसमें सिकल सेल के भी लक्षण होते हैं, और दूसरा एक थैलेसीमिया जो कि ये भी खून टूटने की एक बीमारी होती है जो कि गंभीर तरह की होती है। तो इसमें जो है खून की कमी का बारंबार होना होता है, जिसमें ऐसे बच्चे या ऐसे मरीज, इन मरीजों को साल में 2 या 3 बार खून हमको चढ़ाना ही पड़ता है। तो जो सिकल थैलेसीमिया जो है वो सिकल सेल से भी थोड़ा गंभीर बीमारी होती है, गंभीर वाला प्रकार होता है। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के होते हैं, सिकल सेल रोग, सिकल सेल वाहक और सिकल थैलेसीमिया।
2: सर, जैसे कि आपने बताया कि हाथ पैर और जोड़ों में तेज दर्द होता है और ये उसके प्रमुख लक्षण होते हैं, आमतौर पर जो हमारे यहाँ के आदिवासी भाई बहन हैं वो खेतों में काम कर रहे होते हैं, उनके बीच में ये भी भ्रांति होती है कि खेतों में ज्यादा काम कर लेने के कारण हाथ पैर में जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो वे कौन से लक्षण हैं या वे कौन से, कब उन्हें टेस्ट करवाना चाहिए और ये पता लगता है कि उन्हें सिकल सेल एनीमिया है?
0: सिकल सेल एनीमिया को लेकर जो हमारे मध्य प्रदेश शासन है और अभी वर्तमान में भारत शासन है, ये बहुत गंभीर है। और अभी तो जो हमारे आदिवासी बाहुल्य जो जिले हैं उन सभी जिलों में, भारतवर्ष के सभी जिलों में सिकल सेल की जांच एक वृहद स्तर पर शुरू कर दी है उन्होंने, और फिर भी हमें जो है सिकल सेल की जांच, हम आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी में हैं तो यहाँ हमको 6 माह से लेकर 40 वर्ष के बीच में कभी भी करवा सकते हैं। अभी हमारे पास में कई तरह की जांचें होने लगी, हम नवजात बच्चे की भी जांच कर रहे हैं और गर्भ के अंदर बच्चे की भी हम सिकल सेल की जांच कर रहे हैं, तब हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं, तो हम कर रहे हैं। अभी जो हमारे शासन की ओर से सभी गर्भवती महिलाओं की सिकल सेल की जांच करना हमारी ओर से अनिवार्य हो गया है, शासन की ओर से अनिवार्य है। शासन हर गर्भवती महिला की सिकल सेल की जांच कर रही है, एवं आने वाले समय में और वर्तमान में हम अभी जिला स्तर पर कर रहे हैं, सभी नवजात शिशुओं की जांच कर रहे हैं सिकल सेल की, एवं 6 माह से लेकर 40 वर्ष तक के सभी महिला पुरुष बच्चों की हम सिकल सेल की जांच कर रहे हैं।
2: अच्छा, मतलब सर अगर कोई बार बार बीमार पड़ रहा है और अस्पताल आ रहा है, 6 महीने से लेकर के 60 साल तक का कोई भी व्यक्ति है, उसे अपनी जांच जरूर करवानी चाहिए जिला अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में?
0: बिल्कुल, जो हम सभी जगह की बात नहीं कर रहे, हम आदिवासी बाहुल्य जिलों की बात कर रहे हैं, तो इन बाहुल्य जिलों में सिकल सेल का जो है अधिकता है, इस बीमारी की अधिकता है, और इसीलिए हम हर व्यक्ति की जांच कर रहे हैं। और अगर कोई छूट भी जा रहा है तो उनसे भी हम यही कहते हैं कि आप अगर लक्षण आपको मिल रहे हैं, बारंबार आप बीमार हो रहे हो, बार बार बीमार हो रहे हो, हाथ पैरों में जोड़ों में दर्द बार बार हो रहा है, आप थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हो, थक जा रहे हो, थकान हो रही है और खून की कमी हो रही है, किसी तरह का पीलिया दिख रहा है, या छाती में दर्द उठना, या जो है कॉन्स्टिपेशन होना, तो ऐसी सारी समस्या अगर आपको हो रही है तो आपको सिकल सेल की जांच करवानी चाहिए।
2: जी सर, झाबुआ का जो पानी है उसके संबंध में यह भी कहा जाता है कि यहाँ फ्लोराइड इसके पानी में बहुत ज्यादा, बहुत मात्रा में पाया जाता है, क्या सिकल सेल रोग का पानी से कोई संबंध है?
0: सिकल सेल और पानी का कोई संबंध नहीं है, मैंने आपको पूर्व में बताया कि ये एक आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी कैसे होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती है, माता पिता में होगा तो बच्चे में होगा, तो इसका पानी या अन्य किसी खाद्य पदार्थ से कोई

0: जैसे ही जलवायु परिवर्तन हुआ या बुखार आया या किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ तो ये हसियाकार हो जाती है। हसियाकार होने से क्या होता है कि ये जो हमारी छोटी छोटी रक्त वाहिनियां हैं उनमें जाके फंस जाती है, और जिसके कारण क्या है कि आगे की खून की सप्लाई बंद हो जाती है, रक्त का प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण बच्चों में या मरीजों में जो है दर्द का एहसास होता है, दर्द होने लगता है। तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव इस बीमारी पर होता है, लक्षणों पे होता है।
1: अच्छा जी। और सर, एक मरीज जो है वो इससे कैसे बचाव कर सकता है खुद का?
0: जब भी हमारे पास कोई सिकल सेल मरीज आता है तो हम उन्हें बस यही कहते हैं कि आपको अत्यधिक ठंड से बचना है, अत्यधिक गर्मी से बचना है, कठिन परिश्रम से बचना है, और पानी की मात्रा ज्यादा से ज्यादा लेना है। सिकल सेल मरीज को हम यही सलाह देते हैं कि आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे आपको दर्द का एहसास उतना कम होगा, क्योंकि जितना हाइड्रेट रहेगा उतना उसके सिकलिंग होने की संभावनाएं कम होती है।
1: अच्छा सर, हर रोग का हम अक्सर ये सुनते आए हैं कि कुछ घरेलू इलाज होते हैं, क्या सिकल सेल एनीमिया में भी ऐसा कुछ है, कुछ घरेलू इलाज है?
0: घरेलू इलाज तो यही है कि आपको अत्यधिक मात्रा में पानी पीते रहना है। जहां भी आपको ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ तकलीफ होने लगी आप तुरंत आए, दर्द निवारक गोली डॉक्टर वगैरह डॉक्टर की सलाह के बगैर ही लें। घरेलू उपाय तो सिर्फ पानी है इसका, कि आप पानी की मात्रा अत्यधिक रखें और साथ ही जो हमारा तंदुरुस्त भोजन करें, हरी पत्तेदार सब्जियां आहार में ले, फल फ्रूट आहार में ले, और क्या कहना चाहिए कि नशे तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहे। घरेलू उपाय तो यही है कि आपको खान पान अच्छा रखना है।
1: सर, आपने बातचीत की शुरुआत में ये बात भी कही थी कि शादी के पहले काउंसलिंग करवाना बेहद जरूरी होता है और वो उससे काफी मदद मिलती है, ये कैसे करवा सकता है कोई भी व्यक्ति?
0: मैं आपको वही बार बार कह रहा हूँ कि जो ये बीमारी है आनुवंशिक है, और माता पिता में होगी तो बच्चे में होगी, ठीक है? तो अब हमने यही टारगेट किया है कि हमको शादी से पूर्व जो भी जोड़ा हमारे हमको लग रहा है कि ये आने वाले समय में ये शादी करने वाले हैं, तो जो हमने अभी पायलट प्रोजेक्ट चलाया है यहाँ पर जिले भर में, जिले भर ये कहिए कि अभी हम पूरे मध्य प्रदेश की 89 ब्लॉक्स में हम ये अभियान चला रहे हैं, सरकार शासन चला रही है, तो शासन जांच के साथ साथ में एक जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड बांट रहा है। तो वो किस तरह से काम करेगा? तो जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड पुरुष का अलग होगा, महिला का अलग होगा, दोनों का अलग है, फिर बीमारी वाले का अलग होगा, वाहक वाले का अलग होगा, और सामान्य वाले का होगा, जिनको मतलब किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है उसका नेगेटिव का होगा। ऐसे करके हमारे पास कुल 6 तरह के कार्ड बनेंगे, और जब ये सभी कार्ड को, या ये कहिए कि महिला का और पुरुष का जब हम कार्ड मिलाएंगे तो उस कार्ड से ये पता चल जाएगा कि इस जोड़े को शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो ये एक ये तो हमारा तरीका रहेगा कि हम जेनेटिक काउंसलिंग कार्ड के माध्यम से हम काउंसलिंग करें। दूसरा, हम हमारे जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, हमारे जो हमारे अमला है, स्वास्थ्य का अमला है, CHO है, हमारे ANM है, आशा है, उनके माध्यम से भी हम विवाह पूर्व काउंसलिंग करवा रहे हैं, और हमारे काउंसलर भी हर क्षेत्र में है। तो काउंसलिंग का हमारा तरीका ये है कि हम उस जोड़े को उसकी जांच करेंगे पहले, अगर वो सिकल सेल रोगी हैं, दोनों ही रोगी हैं, तो हमारी सलाह होगी कि आप विवाह ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि दोनों ही सिकल सेल रोगी हैं तो ये आनुवंशिक है, कि दोनों में ही लक्षण बढ़ के होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे हर बच्चा वो सिकल सेल रोगी ही आएगा। तो ऐसे में जो दोनों रोगी हैं तो दोनों रोगी की शादी उचित नहीं होगी
1: जी।
0: अगर दोनों ही सिकल सेल वाहक है तो भी संभावनाएं हैं। कैसे? उसमें 50% हर डिलीवरी पे संभावना रहेगी कि वो वाहक आएगा बच्चा, और 25% संभावना रहेगी कि वो बीमारी के साथ आएगा। तो ऐसे में हम ये भी कहते हैं कि दोनों वाहक को भी शादी नहीं करना है,
1: नहीं करना
0: है ना। ऐसे ही सिकल सेल वाहक और सिकल सेल रोगी की अगर होती है शादी

0: उसमें भी संभव है कि 50% हर डिलीवरी में बच्चा रोगी आएगा और 50% वहां का आएगा, तो वहां भी संभावनाएं हमारी कम हो जाती है। तो हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप सामान्य जिनको कोई भी लक्षण ना है उनसे शादी करें, और ऐसे ही अगर हमने ये काउंसलिंग करेंगे, करते करते हमने अगर सिकल सेल रोगी से वाहक पिलाएंगे अगली पीढ़ी को, अगली पीढ़ी जो वाहक है उसको हम सामान्य पिलाएंगे, यूं इस तरह से अगर हम चलेंगे तो जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक हमें समय बद्ध किया है कि 2047 तक हमको सिकल सेल का उन्मूलन करना है, इसको मिटाना है, तो इस रोग को हम इस तरह से मिटा सकते हैं।
1: सर, आपने चूंकि प्रधानमंत्री जी का भी जिक्र किया है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि शासन की ओर से वर्तमान में मरीज को क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं और क्या क्या योजनाएं हैं उसके लिए।
0: शासन की ओर से सिकल सेल रोगी को, खास करके रोगी को, वहां का तो सामान्य जीवन चलता है, रोगी के लिए तो पहले तो उसके रोग का निवारण के लिए, मतलब जो लक्षण है उसके निवारण के लिए हर जगह पर हर CHO को, जो हमारे हमारा ग्रामीण स्तर तक स्वास्थ्य अमला है उस तक हमने दवाइयां उपलब्ध करवा दी है। फिर हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सिविल अस्पतालों में वहां फ्री जो है उनको निःशुल्क जो हमारी दवाई वितरण, साथ में अगर उन्हें भर्ती होना पड़ रहा है तो वो भर्ती की सुविधा और सारी सुविधाएं मुफ्त है। यदि किसी मरीज को खून की आवश्यकता होती है, जिन्हें खून चढ़ाना पड़ रहा है, तो ऐसे मरीज को हम जिला स्तर पे एवं हमारा पेटलावत जो है वहां पर हम उन मरीजों को भर्ती करते हैं और अपने पास से ये कहना चाहिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट एवं फ्री ऑफ डोनर हम उनको ब्लड दे रहे हैं। मतलब क्या होता है कि जो सिकल सेल एवं थैलेसीमिया के जो मरीज होते हैं तो इनके परिजन ब्लड अरेंज कर करके ही परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर साल में 2 या 3 बार खून चढ़ाना पड़ता है। तो क्या होता है कि कोई भी परिजन है, उनके रिश्तेदार है, वो कब तक अपना डोनेशन करेंगे, तो उन्हें पता है कि हर दूसरे महीने में उसको ब्लड चढ़ाना है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा अपने पास से ही ब्लड डोनेशन करवा के वो उन्हें ब्लड दे रहे हैं।
1: अच्छा
0: जी। और जो शासन की आयुष्मान योजना है, यदि कोई मरीज अत्यधिक गंभीर हो रहा है, जिसे अन्य जांचों की आवश्यकता है, बड़ी जांचों की जैसे MRI की जांच या किसी तरह की सर्जरी या ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, तो वो हम आयुष्मान के माध्यम से उनको हम इलाज मुहैया करवा रहे हैं। ऐसे ही अभी सरकार द्वारा दिव्यांग सर्टिफिकेट दिया जा रहा है इनको
1: जी,
0: ताकि क्योंकि ये भी एक तरह से ब्लड ट्रांसफ्यूजन पे निर्भर करता है, जीवन शैली उसकी कहीं ना कहीं बाधित होती है, तो उसको देखते हुए सरकार द्वारा इन्हें दिव्यांग में भी लिया गया है एवं दिव्यांग उसके माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम दिव्यांग सर्टिफिकेट भी इनको दे रहे हैं। एवं इंदिरा आवास योजना भी चल रही है, वो भी प्रदाय की जा रही है शासन के द्वारा इनको
1: जी।
0: एवं जो बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, शिक्षण संस्थानों में भी उनको सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा कोई ऐसी जानकारी हो जो हमारे श्रोताओं के लिए, आदिवासी श्रोताओं के लिए महत्वपूर्ण हो और जो उनको आप कहना चाहें?
0: जी बिल्कुल। सिकल सेल एनीमिया गंभीर है, आनुवांशिक है, इससे रूप जो है निदान तो ना हो गए, बाकी इससे बचाव किया जा सकता है। बचाव का पहला मंत्र यही है कि आप पानी का अत्यधिक सेवन करें। जो सिकल सेल रोगी है उसे पानी कम से कम दिन भर में 4 लीटर पानी की, प्रतिदिन 4 से 5 लीटर पानी उसे लेना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि धूम्रपान, नशा, तंबाकू, इन सबके सेवन से दूर रहना चाहिए। दूसरा कि एक संतुलित आहार ले, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, अगर अंडा वगैरह खाते हैं तो वो भी खाते रहना चाहिए, प्रोटीनियस डाइट भी लेते रहना चाहिए। साथ ही जो रोगी हैं उनको अत्यधिक ठंड से बचना चाहिए, अत्यधिक गर्मी से बचना चाहिए, और हम स्कूली जो हमारे स्कूली शिक्षक हैं और जो हमारे टीचर हैं उनसे भी हम यही कहते हैं कि जो आपके अधीन जो सिकल सेल मरीज है या जो बच्चे हैं उनको आप आउटडोर गेम से दूर रख के उनको इनडोर गेमों में आप आगे ले जाएं, इनडोर एक्टिविटी में उन्हें आगे ले जाएं। तो जो आउटडोर एक्टिविटी की वजह से जो उसकी तकलीफें बढ़ती है वो इनडोर से मतलब इनडोर गेम्स में वो इम्प्रूव होगा और एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा वो।
1: जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सभी जानकारियों को देने के लिए।
0: जी धन्यवाद,
2: खूब खूब आभार डॉक्टर साहब ने अग्रवाल जी की तमुई। आज हमारा श्रोता भाइयों ने सिकल सेल जेवी गंभीर बीमारी ना बारा मा जानकारी अवगत करावी। तो श्रोता बंधुओं, यह हतेला डॉक्टर साहब संदीप जी चोपड़ा आपड़ा झाबवा जिला ना सरकारी अस्पताल मा जिला सिकल सेल नोडल अधिकारी से अने सवाल पूछनारा हतेला शिशिर जी अग्रवाल पत्रकार महोदय से अने भोपाल ना रहा वाला। आज आपुन इनुई वात वताड़ी सिकल सेल एक गंभीर बीमारी से, इन बीमारी ने बारा मा जेतरू आपु जानकारी राखी एतरो बचाव थाई। खास कर ये बीमारी घणी टाट पड़े एना मा अने अधिक गर्मी पड़े एना टाइम मा एना लक्षण आपुन देखवा मळे अने एनो बचाव करवा हारू आपुन घणी बधी वातियों ध्यान राखवो पड़े ये वात पण आपुन डॉक्टर साहेबे वताड़ी से। खान पान आपुन असली करवानो, दारू घुटका अने सिगरेट जेवी चीजो देखी आपुन बेहाथ दूर रहेवानू, कारण के आपुन डॉक्टर साहेबे कीधुं कि ये एक एवी बीमारी एने जड़ देखी खतम नहीं करी सकी, एनो इलाज करीने बचाव करी सकी। एतरे आपुन खास कर खान पान मा तो ध्यान देवो ज छे अने इना लक्षण आवे तो तुरंत आपुन अस्पताल जावानू अने डॉक्टर साहब हाथे मळीने वात वताड़वानी, एवी बीमारीनी वात हताड़वीनी जोवे, केम कि ये बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चाले छे। एने आपु जणावीने ज एनी बीमारीनो खात्मो करी शकीए। तो मारा श्रोता बंधुओ, आजना कार्यक्रममां बस एतरी वात। हूँ आरजे राकेश हावलू से तमारी देखी इजाजत, पण तमु कईथा मती जाजो, हामलता रहेजो आपड़ा झाबवानो पहलो सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआनी आवाज, तमारा ज रेडियो खतवार आरजे राकेश नी हाते अने नमस्कार।
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टंट्या भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
4: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटा भील 90.8 FM सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं? हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी तैयारी में लगे होंगे कि जैसे ही बरसात का मौसम आए तैसे ही हम अपने बीजों का जो उन्होंने रख के चयन करके रख लिया है और उनका वो अपने खेतों में डालकर अपने बीज की बोनी स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि ऐसे में हमारे किसान साथी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम और आप जानते भी हैं कि अगर झाबुआ जिले की अगर बात करें तो यहाँ पर सीमित किसानों के पास सीमित जमीन है, सिंचाई के प्रमुख साधन न होने के कारण खेती में बहुत ज़्यादा समस्या आती है। एक सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि यहाँ के किसान जो पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं? आखिरकार हमने देखा है, हमने सुना भी है यहाँ पर कि खेती करने के बाद हमारे किसान साथी यहाँ से अपने रोजी रोटी कमाने के लिए पलायन कर जाते हैं। आखिरकार उनको वो सुविधा उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है, ये सबसे बड़ा कारण भी है। आप रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि हमारे किसान साथियों को वो जानकारी उपलब्ध हो, वो जानकारी जिनके अभाव उनके पास रहता है, वो जानकारी जिस उन तक नहीं पहुंच पाती है। खासतौर पर अगर योजना की बात करें, बहुत सारी सरकार की स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई जाती हैं लेकिन हमारे साथियों तक नहीं पहुँच पाती हैं। लेकिन अब रेडियो टांटिया भील 90.8 FM एक ऐसा माध्यम है, क्योंकि ये झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, यहाँ पर अपनी बात करने के लिए आप फ्री हैं, यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए दूसरों तक पहुँचाने के लिए आप फ्री हैं, अपनी जो भी आपको समस्याएं खेतीबाड़ी में आती हैं उसको बात रखने के लिए आप फ्री हैं। आप आइएगा और यहाँ पर अपनी बात को रखिएगा और हम उस बात को जो भी आपके मन में सवाल हैं खेती किसान से जुड़ी उस सवालों का जवाब हमारे साथ विषय विशेषज्ञ जो रहेंगे उनसे हम जरूर दिलाएंगे। हमने आज कुछ गांव में हमने जाकर देखा है कि किसान साथी बस खेती पर आश्रित रहते हैं। उनसे जब हमने जानने की कोशिश की तो उनसे पता लगा कि यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, यहाँ पर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। उनका यह भी कहना है कि यदि एक आध साल बरसात नहीं होगी तो यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे किसान साथी आश्रित हैं वो तालाब और बावड़ियों से यहाँ पर जीवित हैं और वही उनके संसाधन है, वही उनकी सिंचाई के साधन है, जो कि अब हमें देखना होगा क्योंकि बरसात अब नज़दीक आने वाली है। ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करें, उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि शासन की योजना, क्योंकि शासन इस मौसम में जब भी किसान साथी हमारा फ्री होता है, जैसे ही अपनी रबी की फसल बो के फ्री होता है या फिर काट के फ्री होता है, तब हमारे किसान साथियों को क्या करना होगा कि सबसे पहले मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि खास तौर पर हमने जब किसानों से बात की तो उनसे ये निकल के आया है कि किसान साथी कहते हैं कि बस हम दो तीन इसमें अपने बीज लगाते हैं, चाहे वो मूंगफली का तो बहुत ही कम उत्पादन यहाँ पर लोग करते हैं, मक्का हुआ, मक्का के साथ साथ यहाँ पर सोयाबीन की खेती होती है, साथ साथ में यहाँ पर जो खेती की जाती है खास तौर पर हम देखते हैं कि यहां पर कम पानी वाली फसलें यदि हमारे किसान साथी अपने खेतों में लगाएं तो जाहिर सी बात है उनकी आमदनी में इजाफा होगा। हम उन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे कि हमारे किसान साथी किस तरीके से अपनी आय को दुगनी कर सकें। दुगनी तभी होगी क्योंकि शासन प्रशासन और केंद्र सरकार भी इसके लिए चिंतित है कि कहीं ना कहीं हमारे किसान साथियों को वो जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है जो जानकारी उनको उपलब्ध होना चाहिए। यदि आपके पास सीमित संसाधन नहीं है, यानी सीमित साधन है, खासतौर पर पानी के संसाधन नहीं है, आपके पास खेती सीमित है, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, उनसे पूछना होगा कि हम अपने खेतों में कौन से बीजों का चयन करें, कौन से ऐसे बीज हैं जिसमें कम पानी लगता है और उत्पादन अच्छा होता है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में सबसे पहले अपने किसान साथियों को, क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं, एक उन्होंने अपनी बखराई कर भी दी है, यानी जो कहा जाता है गर्मियों की जुताई बहुत महत्वपूर्ण रहती है, तो हमारे किसान साथियों ने अपनी गर्मियों की जुताई कर भी दी है। अब किसान साथियों को क्या करना है, मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ज्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य की अगर बात करें, जब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारी है। ऐसे ही हमारी भूमि रहती है, ऐसी हमारी जमीन रहती है, जब तक उसका परीक्षण नहीं कराएंगे, जब तक उसकी जानकारी नहीं उपलब्ध कराएंगे कि कौन से तत्वों की हमारी जमीन में कमी है, तब तक हमें पता नहीं लगेगा और तब तक हम वही परंपरागत खेती जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग करते चले आ रहे हैं उसी ढांचे से हम करते चले आएंगे और उससे जो समस्या आती है उस समस्या से हमारे किसान साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, सबसे पहले कि मिट्टी परीक्षण कराएं, सलाह लें कि आने वाले समय में हम कौन प्रकार के बीजों का चयन करें, किस तरीके से उपचार जो बीजों का होता है वो किस तरीके से हमें करना होगा, साथ साथ में अपने खाद बीज की भी व्यवस्था कर लें। जब हमने यहाँ पर बात की किसानों से तो पता लगा कि वास्तव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों को ये इसमें जो अगर फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र में वो खेती तो करते हैं लेकिन वो ही परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उत्पादन उनको बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसे में किसान साथी केबीके यानी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर सलाह ले सकते हैं या फिर कृषि विभाग में जाकर सलाह ले सकते हैं। यदि आपको वहां पर कहीं नहीं जाना है तो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहता है, 24 घंटे उपलब्ध है, आप हमें फोन लगाकर बात कर सकते हैं और यहां या फिर आपको लगता है कि रेडियो टांडिया भील जो गढ़वाल में उपस्थित है वहां पर आकर हमारे किसान साथी अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे ही हम गांव यहां पर पहुंचे, एक गांव में वहां के लोगों से जब हमने पूछा कि किस तरीके से आप खेती करते हैं, किस तरीके से आप बुवाई करते हैं, कौन कौन बीज आप अपने खेतों में लगाते हैं, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही परंपरागत खेती वो करते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी के पीने की समस्या है, खेती में पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तभी तो यहाँ के किसान यहाँ से पलायन कर जाते हैं। उनकी बात हम जरूर सुनेंगे, लेकिन बातचीत काफ़ी हो चुकी है, यहाँ पर एक वीली गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को।

0: रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपरो रेडियो आपरी बातें।
1: रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अभी आपने गीली गीत को सुना, गीली गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने किसान साथियों के पास आपको ले चलते हैं, उनकी हम बातचीत को सुनते हैं कि किस तरीके से अपने खेतों में बीजों का चयन करते हैं, किस तरीके से कौन कौन बीज लगाते हैं और इसमें मौसम में किस तरीके से तैयारी वो कर रहे हैं। आइए किसानों के हम अनुभवों को साझा करते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 FM आपना रेडियो अपनी बातें।
2: खेती हम लोग सोयाबीन बोते हैं, इसके बाद कपास और मक्का,
3: तीन चीज।
2: हाँ, मतलब ये
3: अभी
2: बरसात के टाइम में।
3: अच्छा अच्छा,
2: और फिर सियाले के टाइम में गेहूं, चने, बस ये।
3: अभी चूंकि ये बरसात का मौसम आने वाला है तो तैयारी किस तरीके से आप कर रहे हैं?
2: तैयारी
3: किस तरीके से करते हैं?
2: बस पहले हम ये जुताई कर लिया।
3: हाँ।
2: उसके बाद खाद बीज ला रहे।
3: अच्छा।
2: और सोयाबीन तैयारी कर रहे, कपास लाने की तैयारी, मतलब ले आए हैं अभी लोग।
3: कपास का क्या रहता है, बीज लगाते हैं आप की?
2: बीज लगाते सर।
3: बीज कैसे बोते हैं इसको?
2: उसको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ऐसे मक्का का करेंगे ऐसे नहीं, थोड़ा इतना दूर रखेंगे और एक एक एक एक एक करके लगाएंगे।
3: अच्छा, हाथ से ही लगा,
2: हाथ से लगाते
3: हैं। लगते कि
2: नहीं, बीज लगाते सर हाथ से।
3: हाथ से बीज लगाते हैं। पूरे खेत में कितना बीज लगता होगा?
2: हाँ, कितना बीज, 2-3 किलो बीज, जो भी लगता सर। डोरी पहले लंबा कर लेते, उसके बाद निशाना बनाते, वहाँ जहाँ निशाना है उस जगह पे वो बीज लगाते।
3: अच्छा अच्छा। और पानी कितना लगता है इसमें?
2: पानी सर वही बरसात का ही,
3: बरसात का है। वैसे अगर बरसात नहीं हुई तो कितना पानी देना पड़ेगा?
2: तो कनी है सर पानी यहाँ पे, जब तक उसको बरसात से बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद
3: यहाँ पे पानी की समस्या है
2: बहुत समस्या सर,
3: पानी आता ही नहीं।
4: पानी पीने के लिए,
2: पानी पीने के लिए बहुत कमी है।
3: अच्छा अच्छा अच्छा।
4: रात में उठ के जाना।
3: और जो अब खादों का इस्तेमाल होता है, जैसे अपन DAP और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, पहले जो हम लोग देसी खाद का इस्तेमाल करते थे, अब क्यों हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं उसका?
2: ये पशु के कारण ये कम हो गए सर।
3: क्यों कम हुआ है?
2: कम करते जा रहे हैं इनको लोग, बाग बढ़ गए पब्लिक, तो जैसे पहले इनको घूमने फिरने की जगह थी ज्यादा।
3: अच्छा।
2: उसको फिर से मतलब कर लिया उसको।
3: हाँ।
2: खेती करने लग गए।
3: हाँ।
2: तो इसीलिए कम हो गए सर ये, तो अपने आप कम हो गया सर।
3: अच्छा, अपने आप कम हो गए।
2: और DAP फिर और यूरिया, यूरिया से पौधा बढ़ता है।
3: हाँ।
2: और जल्दी मतलब तैयार करते।
3: अच्छा, यूरिया
2: अभी 2 बार लगा रहे थे, फिर अब लोग बाग 3-3 बार भी लगा रहे सर यूरिया।
3: अच्छा अच्छा। कपास का बीज कैसे मिलता है, मतलब कहाँ से आप लाते हैं और कितने रुपए किलो मिलता है?
2: इस साल थोड़ा महंगा है, यूं कह रहे सर, गए साल तो 750 की 250 ग्राम करके ला रहे थे हम।
3: अच्छा।
2: पैकेट आता 250 ग्राम का।
3: 250 ग्राम का पैकेट आता है, तो एक पैकेट कितने खेत में हो जाता है?
2: एक पैकेट सर करीब 1 बीघा।
3: 1 बीघा में 1 पैकेट।
2: हाँ।
3: जिसके पास 4-5 बीघा खेत है तो वो 4-5 पैकेट लगेगा।
2: हाँ सर। हाँ।
3: और इसमें कितने दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है कपास का?
2: 3 दिन बाद वो थोड़ा सा निकल जाते सर।
3: हाँ।
2: उसके बाद में बढ़ता जाता, फिर उसमें खाद बीज चालू रहता।
3: अच्छा, कितनी बार डालना पड़ता है ये खाद बीज आपको?
2: खाद तो 2-3 बार डालना पड़ता है, दवाई तो बार बार सर।
3: दवाई कितनी लगती?
2: दवाई तो गिनती नहीं होती सर।
3: अच्छा।
2: जैसे उसमें कीड़े लगते वैसे दवाई।
3: ऐसा क्यों, आपने यहाँ पर जो कृषि विभाग है या KBK है वहाँ पर संपर्क नहीं किया कि क्यों कपास में हमारे कीड़े लगते हैं?
2: वहाँ पे किया सर, वो अलग देते हैं सर दवाई।
3: अच्छा, उससे फायदा हो जाता है?
2: नहीं, उससे नहीं होता सर, इसीलिए फिर मार्केट से खरीदना पड़ा।
3: अच्छा, ये फिर आपको अगर कपास को देखा, 1 बीघा में आपने 250 ग्राम की पैकेट लगाई है, कितना अपन को मुनाफा हो जाता है?
2: 250 ग्राम का पैकेट अगर लगा है सर, तो अच्छा मेहनत आदमी कर ले, उसको देखभाल बढ़िया कर ले, तो पहुंच जाता सर करीब 50 के लगभग,
3: 50,000 के लगभग। ये 3 महीने में हो जाता?
2: हाँ,
3: 3 से 4
2: 4 महीने में।
3: 4 महीने में 50,000 का।
2: 4 के बोर भी बढ़ जाता है ना, मतलब सियाला कहना, ये तो मतलब ये बरसात के टाइम में बड़ा हो जाता पौधा, ठंड के दिन में वापस फिर लगने शुरू होता है।
3: अच्छा, और जैसे अब मक्का की प्रक्रिया क्या रहती है, मक्का बोने की, या फिर आप सोयाबीन, मूंगफली बोते हैं यहाँ पे?
2: बोते हैं सर, पर बहुत कम।
3: क्यों? मूंगफली तो सुना है कि पथरीले

0: परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। अभी क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया कि हमें इस खेती को करना है, इस प्रकार की खेती करना है, वो ही हम उसी पद्धति पे जा रहे हैं। आजकल बाजार में नए नए बीज की उपलब्धता हो गई है, साइंटिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, उनसे जानकारी लेते रहना चाहिए हमें। हमें बागवानी के ऊपर जोर लगाना चाहिए कि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित खेती है, तो हम किस तरीके से बागवानी, तो ये हमारे कुछ विकल्प हो सकते हैं खेती को या किसान की आय को दुगनी करने के लिए। आपने इस तरीके का प्रयास नहीं किया?
1: नहीं किया सर, जैसे पुराने जो आदमी लगाते आ रहे थे वैसे वैसे हम चलते आ रहे। और पहले पुराने लोग तो खाद ये यूरिया और डीएपी नहीं लगा रहे थे सर, इसी से काम चला रहे थे,
0: गोबर की खाद।
1: हाँ, गोबर के खाद से। फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते खाद बीज हम लगा रहे सर।
0: अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये खाद बीज से हमारी आम वो क्या नाम जो लागत थी वो उसमें बढ़ोतरी हुई, मतलब बढ़ गई?
1: हाँ, बढ़ गई है सर। और जिसमें कम पहले कम हो रहा था, अभी एक किलो अगर मक्का बो देंगे तो आराम से 2-3 क्विंटल हो जाते हैं।
0: 2-3 क्विंटल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी देखभाल किस तरीके से करते हैं?
1: देखभाल तो सर जैसे पौधा बाहर निकल जाता है उसके बाद देखभाल करना पड़ता सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: क्या लग रहा है इसमें क्या
0: नहीं व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था? यहाँ पर पानी के लिए क्या क्या साधन है?
1: पानी के लिए सर वही बरसात का ही पानी है हमारे पास।
0: और जैसे अगर रबी की फसल अपन बोते हैं जैसे गेहूं हुआ?
1: हाँ, वो तो तालाब में से लाते हैं सर। इधर
0: कहाँ से लाते?
1: पास में है तालाब इधर।
0: अच्छा,
1: उससे लेते। और
0: यहाँ पर कुआ बावड़ी पहले जो तालाब हुआ करते थे आप, कुछ नहीं है?
1: नहीं है सर, यहाँ पे तो इतना गहरा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे गड्ढे कर रखे, उसमें थोड़ा पानी ऊपर से ही जो उसमें रहते उसी से ही थोड़ा बहुत ले लेते। नहीं तो
0: आपने ऐसा कभी समय देखा है कि मतलब यहाँ पे कभी की बरसात नहीं हुई है और लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं?
1: बरसात नहीं हो तो वही का वही रह जाएगा सर, खत्म ही हो जाएगा।
0: खत्म हो जाएगा
1: बरसात से
0: पर ही?
1: हाँ सर,
0: यहाँ पर कुआ खोजते नहीं है?
1: नहीं है सर, नहीं है,
0: कुछ नहीं। हैंड पंप
1: किसी के पास है सर, बोरिंग?
0: अच्छा अच्छा,
1: वो लगाते लेकिन हर आदमी के पास नहीं है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: थैंक यू।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। और हमारे किसान साथियों की इस बातचीत को सुना, वास्तव में बहुत मेहनत हमारे किसान साथी करते हैं लेकिन उनको सही मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि हमारे किसान साथी हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे तो आप यदि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ पर संपर्क करें, तो यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप रेडियो टांटिया भील पर आप आ सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। आपकी जानकारी हम जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, केबी के जो रहता है साथ साथ में कृषि विभाग जो रहता है उसमें हम किस तरीके से हमारे विषय विशेषज्ञ के साथ आपके सवालों का जवाब हम दिलवा पाएं। साथ साथ में आप यदि आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आप जागरूक हैं, तो आप डायरेक्टली केबी के में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं और जानकारी भरपूर ले सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास जानकारी रहेगी तो हम अपने खेतों में अच्छे बीजों का चयन करेंगे, अच्छे बीज लगाएंगे अपने खेतों में, जिससे हमारे खेती में उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी हो। अब एक बात जब बात आती है कि हमारे किसान साथी सिर्फ 3 प्रकार की खेती करते हैं, यानी 3 प्रकार की जो फसलें रहती हैं उनको लगाते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मूंगफली हो, मक्का हो, और धान भी कहीं कहीं हमारे श्रोता साथी करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर दी है, गर्मी की जुताई भी हो गई है, अब वो बरसात का देख रहे हैं कि बरसात कब हो और कब अपने खेतों में हम बुवाई कर सकें। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं कि जिन किसान साथियों के पास सीमित जमीन है तो वो किस तरीके से अपने घर आंगन या पर छतों पर किस तरीके से छोटी बागवानी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं, जिससे जो हम सब्जी बाजार से लेकर आते हैं उस बाजार से जो सब्जियां हम खाते हैं वो हमारे शरीर को भी नुकसान करती हैं, क्योंकि केमिकल भरी जो हम खाद हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो आप किस तरीके से जैविक पद्धति से अपने घर आंगन या छत पर अपनी बागवानी को लगा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, कौन कौन से सब्जियों के ऐसे

बीच है जिनका हम चयन कर सकते हैं अपनी छतों पर या घर आंगन में या अपने खेतों में लगा सकते हैं। सब्जी का मौसम भी चल रहा है और सब्जी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तो छोटे छोटे मौके हमारे किसान साथियों के पास, वो कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भरपूर अनुभव है, कई सालों का अनुभव है खेती किसानी का, और वो जानते हैं कि किस तरीके से बीज लगाना है, किस तरीके से वो करना है। बस आपको पद्धति की जो जानकारी का अभाव जो रहता है, वो जानकारी आपको रेडियो टांडिया व्हील 90.8 एफएम आपको उपलब्ध कराने जा रही है। लेकिन साथियों, इससे पहले हम सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया व्हील 90.8 एफएम। अपना रेडियो अपनी बात है।

0: સ્ટેશન રેડિયો ટાંટિયા ભીલ 90.8 FM, આપણો રેડિયો આપણી વાતે.
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में. और अभी आपने महत्वपूर्ण बातचीत को सुना और साथ साथ में गीत को सुना. अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जून माह में हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, यानी बागवानी लगा सकते हैं. खास तौर पर सब्जियों के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं. तो आइए इस चर्चा को हम सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं. तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को.
2: जून के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं? हमारी पहली सब्जी है मिर्च, जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं. मिर्च को लगाने के लिए इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं. पौधे तैयार करने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के मिर्च के बीज खरीद सकते हैं, या फिर आपके घर में जो लाल मिर्च होती है उसके बीजों का इस्तेमाल भी आप पौधे उगाने के लिए कर सकते हैं. मिर्च के बीजों को लगाने के लिए आप किसी भी प्रो ट्रे या फिर गमले को लीजिए और इसमें मिर्च के बीजों को ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए. आधा से एक सेंटीमीटर गहराई पर मिर्च के बीजों को लगाकर इसमें पानी दे दीजिए. मिर्च के बीज से पौधे तैयार होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं. 20 से 25 दिन बाद इन पौधों को आप किसी बड़े गमले जिसकी साइज 12x12 इंच हो या उससे बड़े गमले में लगा दीजिए. लगभग 60 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी. मिर्च के पौधे को पानी कम और ज्यादा धूप की जरूरत होती है, इसलिए आपको मिर्च के पौधों को पानी कम देना है और उसे धूप वाली जगह पर रखना है. यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके मिर्च के पौधे के सारे फूल झड़ जाएंगे और उनमें फल भी नहीं आएंगे. मिर्च के पौधे जिस गमले में लगे हैं उसकी जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखे तभी पानी दें. साथ में यदि कोई पौधा रोगयुक्त दिखे तो उसे तुरंत हटा दें या फिर किसी ऑर्गेनिक दवा जैसे कि नीम के तेल का छिड़काव करें. मिर्च के पौधे को हर महीने खाद की भी जरूरत होती है. आप मिर्च के पौधे में बर्मी कंपोस्ट, किचन बेस्ड कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का समय समय पर बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं. मिर्ची की किस्में भी बहुत अधिक होती हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार मिर्च की अलग अलग किस्मों में से अपनी फेवरेट वेराइटी को गमले में लगाने के लिए चुन सकते हैं. दोस्तों, दूसरी हमारी सब्जी है बैगन, जिसे हम एग प्लांट या ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं. बैगन एक ऐसा पौधा है जो लगभग होम गार्डन में साल भर आपको बैगन देता रहता है. बैगन के पौधे भी बीज से ही उगाए जाते हैं और आप अभी जून के महीने में भी बैगन के पौधे तैयार कर सकते हैं. बैगन के पौधे तैयार करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने मिर्च के पौधे तैयार किए थे. आपको किसी भी गमले में बैगन के बीज को ऊपर ऊपर बिखेर देना है और उसे हल्की मिट्टी से कवर कर देना है. साथ में पानी दे देना है. लगभग 2 से 3 हफ्ते में बैगन के पौधे बड़े गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. जब बैगन के पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं, तो आप इन्हें अलग अलग ग्रो बैग या गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं. 12x12 इंच के गमले में आप एक बैगन का पौधा लगा सकते हैं और इससे बड़े गमले में आप 2 बैगन के पौधों को भी लगा सकते हैं. बैगन को फुल सनलाइट पसंद होता है. यदि आप अभी जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में बैगन के पौधे या फिर बीज लगाएंगे तो अगस्त में इनमें फ्लावरिंग और छोटे छोटे बैगन आना शुरू हो जाएंगे और लगभग 80 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने को भी मिलने लगेंगे. बैगन को भी समय समय पर अच्छी तरह से खाद देना जरूरी होता है. आप हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद बैगन के पौधे में दे सकते हैं. कई बार बैगन में मिलीबग या माइट का अटैक होता है. इनसे बचने के लिए आप शुरुआत से ही बैगन में किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें ताकि आपके बैगन में किसी भी तरह के रोग ना लगें. दोस्तों, बैगन को आप कलम से भी उगा सकते हैं. बैगन की कलम लगाने के लिए जुलाई का समय अच्छा होता है. तो आपके गार्डन में जो पुराने बैगन के पौधे लगे हुए हैं, आप उनकी कलम को लगाकर भी बैगन के नए पौधे बना सकते हैं. दोस्तों, अगली हमारी सब्जी है टमाटर. टमाटर सभी घरों में इस्तेमाल होता है और आप जून के महीने में टमाटर भी लगा सकते हैं. टमाटर की कई अलग अलग वेराइटी होती हैं जो आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं. टमाटर को लगाने के लिए भी इसके पौधे तैयार किए जाते हैं. पौधे तैयार करने के लिए टमाटर के बीज को ऊपर ऊपर मिट्टी पर बिखेर देना है और इसमें हल्की मिट्टी की परत से ढक देना है और इसके बाद इसमें पानी दे दीजिए और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखेंगे तो टमाटर के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे. लगभग 2 से 3 हफ्ते में टमाटर के पौधे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं. टमाटर को फुल सनलाइट पसंद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी टमाटर कोस की ग्रोथ के लिए सही नहीं होती, इसलिए आप इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं. 6 से 8 घंटे की धूप टमाटर के लिए पर्याप्त होती है. टमाटर लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने को मिलने लगते हैं। साथ में टमाटर को भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है। टमाटर में भी कई तरह के रोग आते हैं और इनसे बचने के लिए आपको पेस्टिसाइड पहले से ही तैयार रखना चाहिए। कई बार लीफ माइनर टमाटर में होता है और इससे बचने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के पौधे को सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप किसी भी लकड़ी की मदद से इसके स्टेम को सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में दोस्तों टमाटर को भी कलम से लगाया जा सकता है। आप टमाटर की कलम से एक नया टमाटर का पौधा तैयार कर सकते हैं। टमाटर का पौधा कलम से कैसे तैयार करना है? और दोस्तों हमारी नेक्स्ट सब्जी है भिंडी। भिंडी को भी आप जून के महीने में उगा सकते हैं। भिंडी स्पेशली गर्मियों में होने वाली सब्जी है जिसको फुल सनलाइट पसंद होता है। और भिंडी को आप जून के महीने में लगाएंगे तो आपको अगस्त से भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी। भिंडी लगाने के लिए आपको किसी भी 12x12 इंच के गमले या इससे अधिक साइज के गमले को लेना है। आप एक गमले में 2 से 4 भिंडी के पौधे उगा सकते हैं। भिंडी के बीज लगाने के लगभग 7 से 10 दिन बाद भिंडी के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और 45 दिन बाद भिंडी के पौधों से हमें भिंडी तोड़ने को भी मिलने लगती है। भिंडी बड़े आसानी से उगने वाला पौधा है, इसलिए आप इसे जरूर अपने होम गार्डन में ट्राई करें। भिंडी न केवल खाने में अच्छी लगती है बल्कि भिंडी के जो फूल हैं वह भी देखने में काफी सुंदर होते हैं। भिंडी को कैसे लगाया जाता है, बीज लगाने से लेकर भिंडी तोड़ने तक की पूरी जानकारी हमारे दोस्तों अगली हमारी सब्जी है जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है लौकी। लौकी को भी जून के महीने में बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। लौकी स्पेशली साल भर होम गार्डन में ग्रो हो जाती है, लेकिन सर्दियों और बरसात में लौकी सबसे अच्छी होती है। लौकी लगाने के लिए आप इसे सीधे ही 15x15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले में या ग्रो बैग में लौकी के 2 बीज लगा दीजिए। जब लौकी के पौधे कुछ बड़े हो जाएं तो आपको एक गमले में केवल एक लौकी का पौधा ही रखना है। लौकी लगाने के लगभग 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है और लौकी को होम गार्डन में उगाना भी बहुत आसान है। लौकी में बहुत ज्यादा रोग भी नहीं लगते, लेकिन लौकी में पॉलिनेशन की समस्या आती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि 2 से 4 लौकी के पौधे जरूर लगाएं ताकि लौकी के पौधे में सही समय पर पॉलिनेशन हो पाए और उसके फीमेल फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट हो पाए, जिससे आपको ढेर सारी लौकी हार्वेस्ट करने को मिले। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वह है खीरा। खीरा को भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। खीरा या ककड़ी को इसके बीज से उगाया जाता है। खीरा लगाने के लिए बीज को आप सेडी एरिया में उगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। बीज को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले में ऊपर से अच्छी मिट्टी या फिर कंपोस्ट युक्त खाद लेकर इसके बीज लगा दीजिए और इसमें हल्की नमी जो है बनाकर रखिए। 3 से 4 दिन में खीरा के छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आएंगे। अगर आपने इनकी पौध तैयार की है तो 2 से 3 हफ्ते में यह किसी बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खीरा को लगाने के लिए आपको 15 इंच या 18 इंच से बड़े ग्रो बैग की जरूरत होती है, क्योंकि यह एक बेल वाली सब्जी है। इसकी जड़ें काफी नीचे फैलती हैं, इसलिए बड़ा गमला लें ताकि आपको बाद में ढेर सारे खीरे तोड़ने को मिल सकें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि खीरा के 2-4 पौधे जरूर लगाएं ताकि आपको आगे चलकर खीरा में पॉलिनेशन की समस्या ना आए। आप केवल एक पौधा लगाएंगे तो हो सकता है कि फीमेल फ्लावर में सही से पॉलिनेशन ना हो पाए। खीरा के पौधे को भी 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है और इसमें भी आपको समय समय पर बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना होता है, जिससे खीरे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। दोस्तों अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है करेला। करेला को बीज से लगाया जाता है। करेला लगाने के लिए आप 15x15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग को लेकर इसमें 2 से 4 करेले के बीज लगा दीजिए। करेले के बीज को उगने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। करेले लगाने के लगभग 45 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और 60 दिन बाद आपको करेले तोड़ने को भी मिलने लगते हैं। करेला भी एक बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसकी बेल को भी किसी क्रीपर नेट या फिर लकड़ी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ाना होता है। करेले में भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत है, जिससे आपको ढेर सारे करेले तोड़ने को मिलेंगे। जून के महीने में आप मूली भी लगा सकते हैं। मूली को घर में गमले में उगाना बहुत ही आसान है। जब हम जून के महीने में लगने वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें आप सब्जियों के बीज या फिर उनके पौधे लगा सकते हैं। मूली को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले के ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए और अच्छे से उसमें नमी बनाए रखिए। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मूली के जो छोटे छोटे पौधे हैं वह मिट्टी से बाहर निकलकर आ गए हैं। आप इन पौधों को खुली धूप में रख सकते हैं, साथ में दोस्तों मूली के जो पत्ते होते हैं वह भी खाए जा सकते हैं। मूली लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको मूली गमले से उखाड़ने को मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल आप अपने किचन में सैलेड के रूप में कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे आप पूरे साल भर अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए आपको आपके पास जो भी मिट्टी है उसमें अच्छी जैविक खाद मिलानी है और उसके बाद आपको पालक के बीज उस मिट्टी के ऊपर बिखेर देने हैं और ऊपर से मिट्टी से कवर करने के बाद पानी दे देना है। पानी देने के लगभग 6 से 8 दिन बाद आपको पालक के बीज अंकुरित होते हुए दिखेंगे। पालक बहुत जल्द हार्वेस्ट करने को भी मिलने लगती है। लगभग 4 से 5 हफ्ते बाद ही आपको पालक की पहली पत्ती तोड़ने को मिल जाएगी। पालक को आप 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को तोड़ते जाएंगे तो लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको दोबारा इसकी पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। पालक के साथ आप इसी तरह की और पत्ते वाली सब्जियों को भी जून के महीने में लगा सकते हैं, जिसमें बथुआ, नौनिया, हरी भाजी, लाल भाजी जैसी बहुत सारी पत्तेदार सब्जियों को आप जून के महीने में लगा सकते हैं। यह सारे पौधे आप छोटे गमले में जिसकी हाइट 6 इंच हो उसमें लगा सकते हैं और यह सभी पत्तेदार सब्जियां सेहत के मामले में काफी ज्यादा फायदेमंद भी होती हैं। मई के महीने में आप मक्का या कॉर्न को भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। मई में लगाया गया मक्का आपको अगस्त में खाने को मिलेगा। बरसात के सीजन में मक्का खाना काफी लोगों को पसंद होता है। मक्का लगाने के लिए आपको 15x15 इंच के गमले में 2 से 4 मक्का के बीज लगाने होंगे। मक्का या कॉर्न लगाने के बाद इसे फुल सनलाइट में रखने की जरूरत होती है। मक्के को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे। गर्मी का सीजन है तो आप पुदीना भी आसानी से लगा सकते हैं। पुदीना की कटिंग लगती है, आप पुदीना की कटिंग को बाजार से भी ले सकते हैं। पुदीना को लगाने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की जरूरत नहीं है। जो भी मिट्टी आपके पास है आप उसमें पुदीना की कटिंग लगा दीजिए। पुदीना की कटिंग लगाने के लगभग 30 दिन बाद आपको उस कटिंग से पुदीना की पत्तियां हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगी। ध्यान रखें कि पुदीना को केवल अलग गमले में लगाएं, क्योंकि यह एक घास प्रजाति का पौधा है और एक बार यह बढ़ना चालू होता है तो फिर उसके बाद रुकता नहीं है। इसलिए इससे सेपरेट किसी गमले में लगाएं ताकि आपके दूसरे पौधे इससे खराब ना हो। मिट्टी में नमी बनाए रखने पर यह बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करता है। जैसे ही अभी जुलाई में बरसात आएगी और आप इसके गमले को खुली बारिश में रख देंगे तो इसकी ग्रोथ काफी तेज हो जाएगी और फिर आपको ढेर सारा पुदीना हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। जून के महीने में आप फ्रेंच बीन्स को भी लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स खाने में काफी पौष्टिक होती है और इसके पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। आप 15x15 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले को लेकर इसमें 4 से 5 फ्रेंच बीन्स के बीज लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन लगाने के लगभग 45 से 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है। फ्रेंच बीन्स की 2 तरह की वैरायटी होती है। एक वैरायटी होती है बुश वैरायटी और दूसरी वैरायटी होती है मचान वैरायटी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार फ्रेंच बीन्स की वैरायटी को सिलेक्ट कर उसे अपने होम गार्डन में जून के महीने में लगा सकते हैं। आप जून के महीने में एलिफेंट फुट, ओल या जिमीकंद या फिर जिसे हम सूरन कहते हैं उसे भी लगा सकते हैं। आप इसे कंद से लगा सकते हैं। जो कंद आप बाजार से खरीद कर लाते हैं आपको उसी को लगाना है। उसमें से सूरन का पौधा तैयार हो जाएगा और उसी की जड़ों में आपको बाद में जो है जिमीकंद भी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यह सेड लविंग प्लांट है और आप इसे किसी छायादार जगह में भी रख सकते हैं या फिर अपने बड़े पौधों के नीचे इसके छोटे गमले को रख सकते हैं। यदि आपकी बालकनी या छत पर ज्यादा धूप नहीं आती तो आप उस जगह पर भी सूरन के पौधों को लगा सकते हैं। यह देखने में काफी सुंदर लगता है। 12 से 15 इंच के गमले में आप सूरन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ सब्जियां जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं। आपने अभी इन सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार नहीं की है तो उसकी तैयारी कर लें और जून के महीने में इन सब्जियों में से जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप अपने होम गार्डन में लगाएं और उनसे ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करें।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी

अपने आसपास किस तरीके से बागवानी लगा सकते हैं, किस तरीके से सब्जी के छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं जिससे हमारी आय में भी वृद्धि होगी और साथ साथ में ताजी ताजी सब्जियां हमें खाने को मिलेगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे साथियों को पता नहीं है, उनके बारे में कुछ जानकारी हम अपने किसान साथियों को देना चाहते हैं। सब्जियों की पौध तैयार करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहती है जो हम अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अधिकतर सब्जी फसलें जैसे कि टमाटर हुआ, गोभी व प्याज, इनके बीज छोटे व पतले होते हैं, इनकी स्वस्थ और उन्नत पौधे तैयार कर लेना ही आधी फसल उगाने के बराबर होता है। क्योंकि स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए पौधशाला के स्थान का चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझना होगा, वो बातें क्या हैं कि सबसे पहली बात है कि स्थान ऊंचाई पर होना चाहिए जहां से पानी का निकास उचित हो, क्योंकि बरसात आने वाली है और ऐसे में हमारे किसान साथी लगा भी सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऊंचाई पर वो हम खेत होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखना होगा हमारे किसान साथियों को कि भूमि दोमट बुलाऊ जो मिट्टी रहती है वो होनी चाहिए। पीएच मान जो रहता है वो, यदि आपको समझ में नहीं आता पीएच मान, तो आप नज़दीकी जो कृषि विभाग है या फिर केबी के वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए। पीएच का मान लगभग 6.5 होना चाहिए। स्थान पानी के स्रोत के समीप होना चाहिए। स्थान खुले में होना चाहिए जहाँ सूर्य की पहली किरण पहुँचे। स्थान देखरेख की दृष्टि से ही निकट होना चाहिए क्योंकि आपके आसपास हो। स्थान खेत के किनारे पर होना चाहिए ताकि कृषि कार्यों में रुकावट ना हो। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि कैसे तैयार करें हम अपनी पौध को, तो वो भी हम कुछ वैज्ञानिक विधि आपको कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि कैसे तैयार करें अपने पौध में, पौधशाला में पौध कैसे बनाएं। तो यदि भूमि का पहली बार उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि दो ही फसल बोते हैं या फिर तीन फसल बोते हैं, तो उनको वही रट्टा रहता है कि हमें बस यही फसल बोना है। तो चूंकि नई आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो भूमि की पहली बार जो उपयोग हो रहा है उसे फफूंद रहित करने के लिए इसका जो फार्मेल्डिहाइड नामक रसायन से उपचार करना आवश्यक होता है। इसका 25 मिलीलीटर से 1 लीटर पानी से घोल बनाकर पौधशाला के लिए चुने गए स्थान पर अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर यानी छिड़काव कर भिगोएं। तत्पश्चात इस स्थान को पॉलीथीन चादर से अच्छी तरह से ढक दें। लगभग एक सप्ताह पश्चात पॉलीथीन चादर हटाकर इस जगह की अच्छी तरह से 3 से 4 बार जुताई व खुदाई कर खुला छोड़ दें, जिससे रासायन का

0: होनी चाहिए, इनकी जो चोंच रहती है वो निकली होनी चाहिए, डाई लगभग 1 मीटर और लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। सुविधा के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। बीज का उपचार, बुवाई से पहले 2 से 3 किलोग्राम बीज की दर से कैप्टन, थीरम, बेबस्टीन इत्यादि फपूद नाशकों से हमें करना चाहिए। साथ साथ में अंकुरण होने पर घास हटा दें तथा फुब्बारे से हल्की सिंचाई और नमी बनाए रखें। कीटों व कमर तोड़ रोग से बचाव के लिए 0.25% इंडोफिल एम 45 या 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य कर दें तथा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में के हिसाब से मेलाथियोन या फिर एंडोसल्फान का छिड़काव समय समय पर करते रहें। जब पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाए तो आप 0.3% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, थोड़ी कम मात्रा में करें ताकि जो बढ़वार है अच्छी से हो सके। 4 से 6 सप्ताह आयु वाले पौधों को 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंची रोपाई की योग बनाएं। रोपाई से 3 से 4 दिन पूर्व सिंचाई रोक दें तथा उखाड़ने से 1 घंटे पहले हल्की सिंचाई कर दें। ऐसा करने से जड़ें नहीं टूटती हैं और स्वस्थ पौधे का रोपण यदि सायंकाल में यानी शाम के समय करें और उसमें हल्की सिंचाई करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौधे तैयार करने के लिए विभिन्न फसलों के बीज द्वारा क्यारियों का आकार करना चाहिए। तो ये बातें महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे थे। तो हमें जानकारी जो हमने प्रदान की, जो जानकारी आपको बताई है, हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को अच्छी लगी होगी। अब साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप नज़दीकी आप कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में केवीके भी है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है झाबुआ में अच्छे वैरायटी के बीज उपलब्ध हो तो वहाँ पर सबसे पहले अपने जो हमारे कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर बीजों का चयन करने, साथ साथ में नई तरीके से आप करें, आप अच्छी फायदा इसमें होगी, अच्छा मुनाफा होगा। साथ साथ में किसान भाई हमारे क्या कर सकते हैं, बागवानी लगा सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं और जो आप फसल लगाते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो हमने पहले भी आपको बताई थी कि आप क्या करना है, गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में किसान साथी अपनी मेड़ बंधान का भी काम शुरुआत कर दें। साथ साथ में जो तालाब हैं आपके, जो तालाब खराब हो चुके हैं यानी मिट्टी भर चुकी है उनमें, उनकी साफ सफाई कर लें। साथ साथ में आसपास उनका मिट्टी चढ़ा दें और यदि आपको लगता है कि आप नहीं चढ़ा पाएंगे तो आप जो अपने नज़दीकी सरपंच हैं, सचिव हैं, उनसे संपर्क करके आप कर सकते हैं। अब हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी वो उससे जरूर हमारे किसान साथी सीखेंगे। और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, झाबुआ का पहला रेडियो स्टेशन है, ये आपके लिए है। आप आइएगा, कॉल लगाइएगा, बातचीत करिएगा और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर आप अपनी बात को रख सकते हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम से जाने का, फिर होगी आपकी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

0: आप सभी का स्वागत है दोस्तों, आपके ही अपने प्रोग्राम जिंदगी के रंग गीतों के संग में, जहां हम मिलते हैं उन खास लोगों से जिनकी जिंदगी संघर्ष, मेहनत और सफलता की प्रेरक कहानियों से भरी होती है। उनकी बातों के बीच में हम सुनते हैं कुछ ऐसे गीत जो उनके जीवन की भावनाओं और अनुभवों को संगीत में ढाल देते हैं। तो चलिए आइए इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ चलिए।
1: जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं जिंदगी के उन रंगों की जो कहानियों में छुपे होते हैं, जो यादों में बसते हैं और जो उन लोगों के सफर में मिलते हैं जिन्होंने अपनी सोच और तजुर्बे से समाज को समझने की एक अलग मजा दी है। आज की महफिल में हमारे साथ हैं एक ऐसे मेहमान जिनका सफर साहित्य, पत्रकारिता और रंगमंच से गहरा जुड़ा हुआ है। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, बरेली की तहजीब, साहित्य की गहराई और समाज को नजदीक से देखने वाला एक लंबा अनुभव, इन सब ने उनकी सोच, उनकी कलम को एक अलग पहचान दी। तो चलिए शुरू करते हैं बातचीत का सफर जिंदगी के रंग गीतों के संग पर। डॉक्टर राजेश, आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के जिंदगी के रंग गीतों के संग पर।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जिंदगी के रंगों में मुझे शामिल करने के लिए।
1: जी सर, शुरुआत से शुरू करते हैं, आपके सफर से अगर हम शुरू करें तो हर इंसान कहीं ना कहीं बचपन में कुछ ऐसे पलों से गुजरता है, कुछ ऐसी यादों से गुजरता है जो चुपचाप उस इंसान को शेप करती हैं, हम सब जानते हैं। तो आपका जो बचपन गुजरा बरेली में, उसमें ऐसी कौन सी यादें थी, ऐसे कौन से लोग थे या ऐसा कैसा माहौल था आपका जिसने आपको अंदर से शेप किया, आपकी समझ को शेप किया, आपके नजरिए को शेप किया?
2: देखिए, जब एक बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो वहाँ का वातावरण तो उस पर प्रभाव डालता ही है, लेकिन किसी भी इंसान की जिंदगी जो है वो हिज्जा हिज्जा, धज्जी धज्जी दूसरे लोगों से भी बनती है। वो दूसरों से भी बहुत कुछ सीखता है और उसका जो अपना एक पूरा वजूद होता है वो पता नहीं कितनी जगहों की शुमारी से होता है। तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो मेरे घर में माहौल बहुत अच्छा था। मेरी माँ एक सरकारी अधिकारी थी, हमारे घर में काफी काम करने वाले भी थे, बड़े बड़े बंगलों में रहे हैं हम लोग शुरू से, तो घर का माहौल अच्छा था, पढ़ा लिखा था। लेकिन जो मेरे और लोग थे, मेरे दोस्त थे, उनकी फैमिली थी, उनके परिवारों में आना जाना था या अपनी डॉक्टर की सोसाइटी में जो आना जाना था, वहां से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। बल्कि मैं तो अभी तक लोगों से सीखता आ रहा हूँ। अभी अभी इस वर्ल्ड बुक फेयर में मेरी किताब आई है, खुलती ही जंजीरें, जो मेरी कविता का तीसरा संग्रह है, और वो मैंने समर्पित ही अपनी दो आंटियों को और एक अंकल को किया है। और उसमें मैंने लिखा है कि उन लोगों को समर्पित जिनसे मैंने अपनी जिंदगी को लाइफ बनाना सीखा। तो आप बहुत कुछ सीखते हैं दूसरों से, हर एक किस्म होता है।
1: बिल्कुल, अगर आप उनमें से कुछ पंक्तियां सुनाना चाहें, क्योंकि ये बहुत, मैं इस थॉट से बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि कई लोग हैं जैसे मेरे भी जीवन में, जैसे आपने कहा कुछ आंटियों ने आपको स्टाइल का डेफिनेशन दिया, तो मैं बहुत इंस्टेंटली इस बात से रिलेट कर पाई क्योंकि मेरे जीवन में भी मेरी आंटीज ही थी जिन्होंने मुझे बहुत एक इम्पैक्ट छोड़ देते हैं कई बार आपके आसपास के लोग। तो उसमें से अगर आप कुछ पंक्तियां, अगर अभी आपके पास वो किताब है तो कुछ सुनाना चाहें तो हमारे श्रोता बहुत डेस्परेटली सुनना चाहेंगे उन्हें।
2: जिंदगी चेहरे पर उतर आएगी, प्यास फिर भी न ये बुझ पाएगी, हसरतें एक एक करके तेरी दरारों में बसती चली जाएंगी, लकीरों का समंदर होगा चेहरा तेरा, हर लकीर बस अपनी अपनी कही जाएगी।
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरा और खूबसूरत ख्याल। इसी ख्याल के साथ दोस्तों, हम बचपन की बात जब करते हैं तो यादें उभर ही आती हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कहीं ना कहीं उन गलियों में, उन दरीचों में ना पहुंच जाएं बचपन के। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा पहला गीत आज का, आइए सुनते हैं। आया है मुझे फिर याद वो जालिम,
2: गुजरा जवाना बचपन का।
1: बिल्कुल, देवर फिल्म का।

0: वेलकम बैक मेरे प्यारे श्रोताओं,
1: वेलकम बैक डॉक्टर राजेश। हम
0: जी
1: आगे चलते हैं। अक्सर कहा जाता है कि हर शहर की अपनी एक रूह होती है, तो बरेली की जब हम बात करें, जहां हम आप पले बड़े, तो बरेली की रूह को आप कैसे महसूस करते हैं और क्या वही एहसास आपको गुज़िश्ता बरेली लिखते समय हुआ, जो आप जिस एहसास के साथ आप बड़े हुए, किस तरह से आपने ये इन कहानियों को गुनना शुरू किया, बुनना शुरू किया और गुज़िश्ता बरेली लिखना शुरू किया, क्या सफर था आपका?
0: देखिए, हर चीज का एक मायना होता है। मेरा मानना यह है कि जैसे कि आपकी जिंदगी पे पिता का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है जिनसे आप सीखते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसे ही आपकी मातृभूमि का भी ऋण होता है। आपने जिस जन्म शहर में जन्म लिया है उसका भी ऋण होता है, वो भी चुकाना पड़ता है आपको। और गुज़िश्ता बरेली की जहां तक बात है, गुज़िश्ता यानी कि गुजरा हुआ बरेली, मैंने इसमें 100-150 साल पुराने सिलसिले से शुरू किया है कि जब हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं होता था या कुछ मैन्युफैक्चर नहीं होता था, लोग बहुत ही मामूली तरीके से रहते थे, कोई भी नेटवर्क नहीं था, कोई आदान प्रदान नहीं था सूचनाओं का। वो जमाना क्या था जब बरेली को जिन लोगों ने स्टाइलिश बनाया, जिन लोगों ने इसको कल्चर दिया, किसी शहर को कल्चर देना बहुत बड़ी बात है। जब लोग घर में पीतल के बर्तन, तांबे के बर्तन होते थे, उस समय में ये किसने बताया कि टी सेट क्या होता है, चाय और दूध को अलग अलग कैसे रखा जाता है, चीनी को अलग कैसे रखा जाता है। जब 1947 से पहले घरों में औरतें सिलती रहती थी, सूती धोतियां पहनती थी, उस जमाने में ये किसने बताया शहर को कि शिफॉन क्या होता है, कांजीवरम क्या होता है, पटोला क्या होता है, क्योंकि सब सूचनाएं नहीं थी लोगों के पास। बहुत बाद में ये संचार माध्यम हुआ है, अब तो हम लोग बहुत सारी सूचनाओं के ढेर पे बैठे हुए हैं। अब 1937 में एक आदमी पानी के जहाज से इंग्लैंड जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट नहीं थे उस समय, और वहां से अंग्रेजों के बने हुए सूट जो है उनकी टेलरिंग और ड्रेपिंग का डिप्लोमा लेके आता है। या एक आदमी ट्रक ड्राइवर होता है, अनूठा टेक होता है, उसने ऐसा क्या किया कि जेआरडी काटा बरेली आते हैं और उसके घर पे जाकर उसको मर्सिडीज गिफ्ट करते हैं। यानी कि शहर को कल्चर किसने दिया, पहली बार किसने कौन सा बड़ा होटल था, पहली बार कौन सा सिनेमा आया, पहली बार रसगुल्ला किसने इंट्रोड्यूस किया, पहला रेस्टोरेंट किसने बनाया। तो इस तरह से मैंने इन सूचनाओं को खोजा है और मैंने अब तक 200 कहानियां लिखी हैं, और मेरी कहानियां बहुत लंबी होती हैं। और

0: क्या है कि आने वाले समय में चीजें खत्म हो जाएंगी। अब मुझे जिस खानदान से जिस परिवार के बारे में मैं लिखा उसमें अगर मुझे 12 पीढ़ियों का 16 पीढ़ियों का सिजरा मिला है तो मैंने उसको शामिल किया है। तो अभी क्या वक्त ऐसा है कि आजकल के बच्चे इन चीजों को नहीं समझते, अपनी लेगेसी को नहीं समझते हैं। तो उनके लिए मैंने एक इतिहास दर्ज कर दिया है और ये किताब फॉर्म में आ रहा है। तो अगले आने वाले 200-400 सालों में भी किताब की शेल्फ वैल्यू बहुत लंबी होती है, शेल्फ लाइफ। तो बरेली का इतिहास लिख गया है और लोगों तक पहुंच भी गया है, इसीलिए मुझे रिंडिया टुडे ने बुलाया था और एक घंटे का मंच दिया, छोटा शहर बड़ी कहानियां। तो किसी शहर से इतनी बड़ी बड़ी कहानियां कैसे निकलती हैं, कल्चर कैसे निकलता है, कौन लोग हैं जिन्होंने बरेली को नेशनल इंटरनेशनल पहचान दी।
1: तो कुछ ऐसे ही किस्से अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, आप जो करंट कई सारे साहित्यिक आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें गुज़श्ता बरेली है, राधेश्याम कथावाचक के मूल्यांकन पर काम है, वसीम बरेलवी साहब की ऑटोबायोग्राफी है, तो इन पे काम करते करते यही कुछ तजुर्बे, कुछ मुलाकातें, कोई शख्स, कोई किरदार अगर आप हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहें ताकि वो बरेली को आपकी नजर से और जान पाए।
0: हाँ, अब अगर मैं वसीम साहब की बात करूँ, वसीम बरेलवी की, तो बहुत बड़े शायर हैं, इंटरनेशनल बहुत अक्लेम्ड हैं और उनको लोग सुन के उनके दीवाने हैं और आजकल तो यूट्यूब पे और इंस्टा पे वो छाए हुए हैं बिल्कुल। और उनकी मैंने 58 घंटे की रिकॉर्डिंग करी है, उनकी बायोग्राफी में लिख रहा हूँ। और क्या मतलब वो शख्सियत है, वो जो शेर पढ़ते हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन उनकी जो शख्सियत है वो इतनी काबिले तारीफ है। मैं तो ये देखता हूँ कि वो अपने देश के बारे में, अपने शहर के बारे में, आवाम के बारे में, यंग नौजवानों के बारे में, यहाँ की लोगों के बारे में कितने चिंतित रहते हैं, किस कदर मतलब वो लोगों के बारे में सोचते हैं और अपने पेन से भी भर उठते हैं कई बार जब लोगों की तकलीफों को देखते हैं। यानी कि किसी की शख्सियत इतनी संवेदनशील कैसे हो सकती है, फिर वो शायर हैं, संवेदना उनके अंदर है। अगर मैं राधेश्याम कथावाचक की बात करूं तो 1890 में उनका जन्म है और 17 साल की उम्र में उन्होंने रामायण लिखी थी। हमारे पास एक रामायण है वाल्मीकि की जो संस्कृत में है, दूसरी है रामचरितमानस जो तुलसीदास की अवधि में है, लेकिन इन्होंने जो लिखी है इन्होंने हिंदी उर्दू में, बिल्कुल सीता की जुल्फ लहराई, रावण का जनाजा जा रहा है। तो इन पूरे वर्ल्ड में जितनी भी रामलीला खेली जाती है उसमें जो संवाद है वो राधेश्याम कथावाचक की रामायण के संवाद है। और उसके बाद जब पारसी थिएटर शुरू हुआ था तो उसमें लैला मजनू और शीरी फरहाद जैसे उर्दू के नाटक होते थे जिनमें अश्लील संवाद होते थे, भौंडे दृश्य होते थे, तो उसको हटाकर इन्होंने हिंदी में हमारे माइथोलॉजी से बहुत सारे करेक्टर लेके इन्होंने 16 नाटक लिखे। और बहुत बड़ा श्रेय जाता है इनको भारतीय थिएटर को हिंदी में कन्वर्ट करने का और माइथोलॉजी के इन करेक्टर से। इनका वीर अभिमन्यु तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक खेला जाता था। इनके नाटक देखने वालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे लोग होते थे, तो आप सोचिए कितना बड़ा कैरिकेचर। और उसके बाद जब 1933 में पहली बोलती फिल्म आई है आलम आरा, तो उस समय पंडित जी बरेली से कलकत्ता जाके शकुंतला फिल्म बना रहे थे। तो राम मोदी की फिल्म झांसी की रानी में उन्होंने 8 गाने लिखे। तो इस तरह से बहुत बड़ा कैरिकेचर है उनका, बहुत बड़ा व्यक्तित्व। तो इस तरह के कई सारे व्यक्तित्व हमारे पास ऐसे हैं। हमारे पास किशन सरोज हैं जो बहुत ही बढ़िया गीतकार रहे हैं। तो तमाम लोग ऐसे बरेली में हैं जिनको हम याद कर सकते हैं और जिन पर हम फख्र कर सकते हैं कि वो हमारे शहर के हैं।
1: जी जी, कोई एक शख्स, कोई एक किरदार जो आपके जहन में एकदम उतर गया हो, जिसने आपको इन किताबों को लिखने के दौरान उनसे मुलाकात होके आपको ऐसा लगा हो कि पता नहीं क्या ही हो गया, या कोई एक बहुत इंसाइटफुल वाक्या अगर आप शेयर करना चाहें किसी के साथ।
0: देखिए, मैं अगर किसी एक के बारे में कहूंगा तो मेरी बेमानी होगी, क्योंकि तो सारी की सारी शख्सियतें इतनी बाकमाल हैं कि हाँ, कि उनके बारे में बहुत सारी मेरे पास यादें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। एक दिन मैं वसीम बरेलवी साहब के साथ बैठा हुआ था, तो कभी कभी वो घर के अंदर चले जाते थे, कभी कुछ लाने के लिए, कभी खाने पीने का कुछ कहने के लिए, कभी उनके बाग के आम खाया करते थे हम वहां पर। तो उस दिन जब आए तो उनके हाथ में एक इत्र था और एक दुशाला था सफेद। तो आए और उन्होंने दुशाला मेरे कंधे पर रखा, इत्र मुझे पकड़ाया। तो मैंने कहा, वसीम साहब ये क्या है? बोले, मेरा मन किया कि मैं आपकी हौसला अफजाई करूं, आपकी इज्जत करूं, आपका सम्मान करूं। नहीं ये कैसा सम्मान है जो सही सही मायनों में सम्मान है, ना यहाँ तालियां हैं, ना मंच है, ना रोशनियां हैं, ना लोग हैं है, और आप मुझे इस तरह से फेलिसिटेट कर रहे हैं, मैं तो भर गया हूँ अंदर तक। तो मैंने कहा देखिए अगर मैं किसी से कभी जिक्र करूंगा तो कोई मानेगा नहीं, कहेगा कि मतलब पता नहीं आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा इसकी एक तस्वीर होनी चाहिए। तो फिर बाहर से उनके काम वाले को आवाज दी गई और उसने आके वो तस्वीर ली। तो इस बात ने मुझे भिगो दिया अंदर तक कि मतलब उनके भाव मन में कैसा भाव उठा होगा उस समय कि उन्होंने लगा होगा कि मेरा सम्मान करना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, आप शहर को आगे बढ़ा रहे हैं, आप शहर की जान हैं, आप शहर को दुनिया के फलक पर पहुंचा रहे हैं। तो जब आपके काम को पहचाना जाता है, आपकी नीयत को पहचाना जाता है, तो सच बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल। और आपके शब्दों का चयन इतना सुंदर है, मन करता है कि आपको सुनते ही जाएं सर। खैर हम हमारे अगले गीत की तरफ चलते हैं। दोस्तों जिंदगी की कहानियां और लोगों के सफर हमें अक्सर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसी एहसास के साथ हम सुनेंगे हमारा अगला गीत, जिंदगी आ रहा हूं मैं।

0: और मैं तो महादेवी वर्मा से भी मिला हूँ, अमिता प्रीतम से भी मिला हूँ, शिवानी से भी और अमृता नागर से, विष्णु प्रभाकर से। मेरी किताब आ रही है जिनसे मैं मिला, उसमें मैं 40 लोगों के बारे में लिख रहा हूँ जो मतलब हिंदुस्तान के बड़े नाम रहे हैं, ठीक है ना। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनसे मिला हूँ, आमने सामने मिला हूँ। शिवानी ने पता नहीं कितने मुझे अमरूद और सेब छील के खिलाए हैं। महादेवी वर्मा के घर में मैंने खाना खाया, उनके धोती के पल्ले से अपने हाथ पोछ लिए, मैं 9th क्लास में था। और हाई स्कूल में मैंने उन्हीं पर निबंध लिखा और 12th में भी उन्हीं पर निबंध लिखा, उसमें मैंने इस कबाब का जिक्र भी किया कैसे मैंने उनके साथ खाना खाया। अमृता नागर के चौक वाले घर में लखनऊ में मेरा खूब आना जाना होता था। विष्णु प्रभाकर, भीष्म सहानी, कमलेश्वर जो दूरदर्शन के डायरेक्टर रहे हैं, जिनकी आंधी और फिल्में हैं जिनकी, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स। और सबने अच्छा लिखा है, इसलिए देखिए ना ये फिल्में इतनी मशहूर होती हैं और इतनी सफल होती हैं, किताबें इतनी सफल होती हैं, इनको बड़े बड़े प्राइज मिलते हैं। मेरे अभी दोस्त हैं खालिद जावेद, उन्होंने एक किताब लिखी थी नियमित खाना जो घर के किचन में जाली होती है जिसमें हम सामान रखते थे, आज तो फ्रिज आ गए हैं और चीजें हो गई हैं, लेकिन एक जमाने में घर के किचन में एक जाली होती थी जिसमें खाना पीना का सामान रख दिया था, तो उसे नियमित खाना कहते हैं। तो उसकी भी अभी अंग्रेजी में आई है पैराडाइज ऑफ फूड, ऊपर उनको 25 लाख का जेसीबी अवार्ड मिला है पिछले साल। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मजे की बातें होती हैं हम लोगों की, वो लोग कितने साधारण हैं लेकिन उनकी सोच कितनी बड़ी है और वो सोसाइटी को इतना कुछ देते हैं। कितने लोग तो किताबें पढ़ के बदल जाते हैं। अमनु भंडारी का आपका बंटी लें तो मैं कहता हूँ आपका बंटी तो कोर्स में लगा देनी चाहिए, अगर आपका बंटी आप पढ़ लेंगे तो कोई व्यक्ति डाइवोर्स नहीं लेगा लाइफ में अपनी, है ना। तो वो छोटे बच्चे की जो कहानी है जिसके माँ बाप अलग हो रहे हैं, तो ये तो ऐसा नहीं है, पढ़ने वाले खूब मजे के पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी ना पॉपुलेशन बहुत सारी है और बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी अनपढ़ भी है, तो हमें ऐसा लगता है लोग नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप रेस्ता में जाइए दिल्ली में या इंडिया टुडे के प्रोग्राम में जाइए या आप बुक फेयर में जाइए तो आपको महसूस होता है कि लोग कितने दीवाने हैं चीजों के।
1: बिल्कुल, ये जो तबके हैं जैसे JLF है हमारा, जश्न रेखता है, तो इनमें जाके जरूर एहसास होता है, बट कहीं ना कहीं जो साधारण, जैसे आपने बताया, जो सरलता थी लोगों की, जो साधारण एक एक अप्रोच थी चीजों को लेकर, उनकी उनको जो आप अप्रोच कर सकते थे, उनके आसपास होके एक इंसानियत महसूस कर सकते थे, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि वो लुप्त होती जा रही है लोगों में से, वो एक सरलता चीजों को करने की, सब कुछ सिर्फ एक एजेंडा के पीछे चल रहा है, एक नरेटिव के अंडर लिखा जा रहा है, बस करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, क्या आप ऐसा महसूस करते हैं?
0: देखिए मिक्स है, आजकल क्या है, सेल्फ प्रमोशन का जमाना है और दिखावे की दुनिया है। ये हमारा जितना सोशल मीडिया है सब क्या है, दिखावा ही तो है। ये हमारे आभासी दोस्त है, है? अगर हम बीमार पड़े हैं तो हमारा फेसबुक का या इंस्टाग्राम का कोई दोस्त आए हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे माथे को पट्टी बदलने के लिए कोई भी नहीं आएगा, है? हमारे पास खाने के पैसे ना हो या हमें कोई तकलीफ हो, आपके फोन में 2000 नंबर होंगे और शाम को अगर आपको उदासी ने घेर रखा है, आप दिल की कोई बात कहना चाहते हैं, आपको एक नंबर नहीं मिलेगा कि जिससे आप बात कर लें। तो 2000 नंबर होने के बावजूद भी आप तन्हा हैं, अकेले हैं, तो ये तो समय का सच है। और दिखावे की दुनिया है, थोड़ी नई जनरेशन जो है बहुत ज्यादा टिकती नहीं है किसी चीज पर, वो रील पे भी जाती है तो स्क्रॉल करती है, अगर उसके मतलब की तो देखेगी नहीं तो आगे बढ़ जाएगी। उसको बहुत तेजी से मतलब बदलाव चाहिए, बहुत तेजी से उतार चढ़ाव चाहिए, तो एक क्या है ना दौर होते हैं, तो ये भी एक दौर है, आगे कुछ और दौर आएगा। अब रैंजीज जो है वो अलग तरीके से बिहेव करते हैं, उसके आगे पता नहीं कौन कौन से और बन गए हैं, वो लोग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और मैं उनके बिहेवियर को देख भी रहा हूँ, जज भी कर रहा हूँ और मैं महसूस भी कर रहा हूँ कि जो लिखा जा रहा है, जो करा जा रहा है वो ठीक भी है। और अब बहुत सारी चीजें इन जनरेशन के लिए भी लिखी जा रही हैं। अब जैसे मैं अभी दिल्ली में था, एक किताब आई थी मेट्रोज में, तो एक में मतलब वो मेट्रो में सफर करता होगा तो मेट्रो के अंदर बहुत सारी कहानियां चलती हैं, लोग अपने सफर पे अपने कामों पे जा रहे हैं, अपने कॉलेज जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहानियां चलती हैं, कोई प्रेम की कहानी है, कोई अवसाद की कहानी है, तो उसमें से कहानियां ढूंढ के एक अपना संकलन निकाला है, तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। उधर से देखिए यतीन्द्र मिश्र को देख लीजिए आप, उन्होंने लता मंगेशकर की बायोग्राफी लिखी है या उन्होंने अभी गुलजार साहब की
1: बायोग्राफी लिखी
0: है ना, हाँ, तो मैंने वो भी पढ़ी है, यतीन्द्र मेरे दोस्त भी हैं, तो आप देखिए ना कि ये काम भी हो रहे हैं, धुनों की संसार, इस तरह की किताबें भी आ रही हैं। अभी मेरी एक दोस्त है नीलमा चौहान, उन्होंने लिखा था, एक किताब लिखी थी पतनशील पत्नियों के नोट्स, पतनशील पत्नियां, है ना,

0: सोचिए क्या सब्जेक्ट है ना, बहुत मजे का लिखा जा रहा है, वैरायटी लिखी जा रही है, बहुत पवित्र भी लिखा जा रहा है, बहुत अपवित्र भी लिखा जा रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव की बात है और चुनाव आज से ज्यादा रेलेवेंट कभी पहले नहीं था।
0: जी हाँ, आपके जयपुर के हैं विनोद भारद्वाज, उन्होंने अभी गालिब को लेकर किताब लिखी है, क्या शानदार किताब लिखी है, मैंने तो उनको फोन करके बधाई दी। मतलब कहाँ का दिल्ली, कैसा दिल्ली, और गालिब ने कौन सा दिल्ली देखा, उन्होंने एक किताब के जरिए दिल्ली ही नहीं पूरे हिंदुस्तान को, गालिब का जो हिंदुस्तान था, जो कलकत्ता तक की यात्रा थी, या बनारस था, या लखनऊ था, या वो रामपुर में स्टे किया था उन्होंने, वो पूरा दौर लिख दिया। मतलब मेरी आंखों से तो पूरा हिंदुस्तान निकल गया उनको पढ़ते हुए, तो बहुत सशक्त भी लिखा जा रहा है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: और ऐसा है ना, मैं थोड़ा पॉजिटिव देखता हूँ, मैं नेगेटिव देखता नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, दुनिया में नेगेटिविटी इतनी है
1: ऑलरेडी,
0: अगर हम नेगेटिव लिखेंगे या नेगेटिव सोचेंगे या नेगेटिव बात करेंगे तो हम उसमें प्लस ही कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होने से हम एक पॉइंट भी नेगेटिविटी के खत्म करते हैं तो ज्यादा बेहतर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और स्पेशली अभी जिस दौर से हम अभी गुजर रहे हैं उसमें तो बहुत जरूरी है कि हमारी सैनिटी मेंटेन करने के लिए हम थोड़ी पॉजिटिविटी देखें, वरना हम पता नहीं क्या होने वाला है हमारा। खैर आगे चलते हैं, आपने टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया तीनों का एक लंबा सफर तय किया है सर। आज के डिजिटल दौर में मीडिया बहुत तेज हो गया है जैसे कि हम सब जानते हैं, बट जो गहराई है अगेन कहीं ना कहीं लूज होती जा रही है। तो आपके हिसाब से एक अच्छा पत्रकार, एक स्टोरी टेलर वो है जो सबसे पहले खबर दे, या वो है जो समाज को समझ के अपनी समझ को समाज को दे?
0: देखिए एक्चुअली क्या है कि जितने मीडियम्स हैं ना उनका काम करने का ढंग फर्क है। अखबार जो है अपने हिसाब से काम करता है। हम मान लीजिए आज कोई बात हुई तो टीवी तो उसे तुरंत दिखा देगा ब्रेकिंग न्यूज में, अखबार अगले दिन देगा ना सुबह उसको, ना तो उसकी भाषा उसका तरीका अलग होगा लेकिन वो ऑथेंटिक होगा। फिल्में अलग तरीके से काम करती हैं। तो आपने बात कही स्टोरी टेलर की, तो स्टोरी टेलर तो ऐसा भी होता है कि आपसे उपन्यास लिखवा दे। मेरे एक दोस्त हैं वो मेरे पास आए थे, रात को हम लोग बातें कर रहे थे तो मैंने उन्हें एक कहानी सुनाई हम लोगों के आसपास की। तीन दिन बाद उनका फोन आया कि यार वो तो मेरे दिमाग में अटक गई है और मैं उससे एक नॉवल लिखना चाहता हूँ। वो एक क्राइम फिक्शन था और वो किताब लिख दी गई, 400 पन्ने का नॉवल लिख भी चुका है, लिखा भी जा चुका है, ठीक है ना। तो मतलब मेरी एक कहानी नरेट करने से वो लोग वो कहते हैं कि आपने इसे ढंग से एक कहानी नरेट की थी कि मतलब ये उपन्यास का रूप ले लिया इसने।
1: मैं मान सकती हूँ ये बात सर, क्योंकि आपसे बात करके सच में यही आभास होता है। जी जी, आपकी कहानी
0: अच्छा, आप जैसे कि अरुषि कांड हुआ था तब दौर अलग था, आज की तरह नेट तेज नहीं था लेकिन फिर भी मतलब लोग टीआरपी के भी काम कर रहे थे। तो मैं दिल्ली के एक चैनल में बैठा हुआ था तो ये हुआ कि कोई मैं एडिटर के पास बैठा था तो कोई आया नीचे का आदमी, बोला वो साहब खुखरी मिली है। खुखरी क्या होती है? तो वहाँ जो 100-150 लोग काम कर रहे थे किसी को भी नहीं पता था खुखरी क्या होती है। मैंने कहा खुखरी एक औजार होता है, एक वेपन है जो हर नेपाली के पास होता है, ये उतना इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि किसी सिख के पास कृपाण होती है ना। तो बोला सर ये कैसी होती है? तो मैंने कागज लाओ, तो कागज मैंने खुखरी ड्रॉ कर दी खुखरी कैसी होती है। मैं चाय नहीं पी पाया था, मैं देखा मेरा बनाया हुआ कागज टीवी पे चल रहा है, उसमें जाके वही खुखरी लगा दी टीवी पे। मतलब इतना फास्ट काम मतलब क्या मतलब अपॉर्चुनिटी वो गेन करते
1: हैं।
0: और मेरी बनाई खुखरी पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। मैंने कहा यार मुझसे बता दो, मैं थोड़ा ठीक से बना देता। तो टेलीविजन तो दैट दे आर मैड अबाउट टीआरपी, चाहे वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी देखा था पाकिस्तान में जो हमारी लड़ाई हुई थी, हम लोग कहाँ तक घुस गए थे अंदर, उसमें कुछ भी नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आज ही मेरा एक असिस्टेंट आया था मेरे पास, तो बोला सर बस लाइट कर गई, मैंने इसलिए जाने दे यार। तो बोला सर आपको डर नहीं लग रहा? मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा। मैंने कहा बात सुन, पृथ्वी कितने साल से है, सभ्यता कितने सालों से है, करोड़ों सालों से चल रही है, अभी तक कुछ नहीं हुआ ना?
1: कुछ नहीं हुआ।
0: मैं कहा छोटे मोटे कारनामे होते रहते हैं, कोई बात नहीं। अगर वो भाई मैंने कहा कोविड आया था, लगा कि अब दुनिया का अंत आ गया है, हम लोग फिर आज हक हक खेल रहे हैं, लेकिन हमें कोविड से सीखना चाहिए था, हमें भारत पाकिस्तान बनने से सीखना चाहिए था, हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान बनने से सीखना चाहिए था, हमें रशिया जो टूटा है उससे सीखना चाहिए, दुनिया के जो मुल्क टूटे हैं, जो मुल्क एक साथ मिले हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए। दोहराते रहते हैं, गर्मा नहीं चाहिए, क्योंकि आज भी जो हो रहा है जुनूनी तरीके से हो रहा है, उसके पीछे पॉलिटिकल कारण है बहुत सारे, तो उनमें क्या जाना है यार, अपना मस्ती से दिन गुजारो, मरना सबने है, कोई नहीं बच पाया,
1: बिल्कुल कोई नहीं बच पाया, बिल्कुल सब। बहुत ही खूबसूरत है आपसे बातचीत करना, एक बहुत ही प्यारा एहसास है, इतनी रिच एक लाइफ आपने जी है, आई थिंक एक जिंदगी में आपने कई जिंदगियां जी हैं, तो बहुत ही मजा आ रहा है मुझे। खैर हम चलते हैं,
0: अब ये सोचो मेरी गर्लफ्रेंड मुझसे कितनी खुश रही होगी।
1: हाँ आई एम श्योर कितनी रही, चलिए चलिए आपसे काउंट पूछ ही लेते हैं कितनी रही सही रही होंगी।
0: बात कर रहे
1: जी,
0: मैंने सजाना, महफिलों की जान बनना, ये भी एक अदा है
1: बिल्कुल, और इसी अदा पे हम सुनते हैं हमारा अगला गीत। दोस्तों जब बात सच और समाज को समझने की हो तो एक गीत हमें बहुत बहुत याद आता है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। चलिए सुनते हैं हमारा अगला गीत।

प्यार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उ...

नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है, तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो

0: स्वर्ग तो उतार ला, जमीन पर तू जिंदा है।
1: डॉक्टर राजेश, आप थिएटर से भी बहुत गहरा संबंध रखते हैं। खैर, ये एक और रंग है आपके जीवन का। आषाढ़ का एक दिन, महाभोज, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाटकों में आपने पार्ट लिया है, तो आपके लिए थिएटर का जो स्टेज है उसकी क्या अहमियत है और उसने आपको किस तरह के एक्सपीरियंसेस दिए? थिएटर किस तरह से आपको शेप कर पाया और क्या आपको महसूस होता है जब आप उस स्टेज पे होते हैं, कैसा फील करते हैं?
2: देखिए, यथार्थ और सत्य, मैं इसको ऐसे कहूंगा, क्योंकि जब आप थिएटर पे होते हैं तो आपके पास रिटेक का मौका नहीं होता। आप जो कर रहे होते हैं वही जा रहा होता है। क्योंकि मैं फिल्मों से भी जुड़ा रहा हूँ, मैं मनोज बाजपेयी और राजकुमार राव की फिल्म अलीगढ़ मैंने बरेली में बनवाई, ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उसके बाद बरेली की बर्फी भी मेरे पास आई, मिसेज अय्यर आई थी, लेकिन कुछ कारणों से वो बरेली में शूट नहीं हुई, लखनऊ में शूट कराई थी हमने।
1: तो
2: मैं फिल्मों के भी एक एक सीन और एक एक फ्रेम के पीछे रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखा है। लेकिन जब मैंने थिएटर किया है तो सबसे बड़ी बात है कि जब महाभोज हम कर रहे थे तो उसकी राइटर जो है मन्नु भंडारी, वो हमारे सामने बैठी है ना, ये बहुत बड़ी बात है। या हम संजीव का एक नाटक कर रहे, कहानी पे कर रहे थे, मैं चोर हूँ मुझ पर थूको, तो संजीव हमारे सामने बैठे थे, राइट। तो आप जो राइटर लिखता है, या काशी का अस्थी मैंने जब बैठ के देखा, मैं मंच पे नहीं था तो मैंने काशीनाथ सिंह के साथ ही बैठ के देखा जो उसके राइटर हैं, या रोनी हटंगड़ी हो, या और बड़े बड़े लोग हो, या मतलब ये जूही बब्बर हो, है ना, तो इनके साथ जो काम किया है, इधर जो नए लड़के आ रहे हैं इनके साथ भी है। बरेली में क्या है, एक विंदर मेयर के नाम से ब्लैक बॉक्स थिएटर है जो डॉक्टर ब्रजेश्वर सिंह है उनको उसको रन करवाते हैं, और रंग विनायक के नाम से हमारा जो पूरी टीम है। मैंने जो थिएटर किया है वो बहुत पहले किया, जब मैं यंग था, जब मैं स्टूडेंट था। और अभी क्या है, अभी बरेली बहुत लाइव है थिएटर्स के लिए, और हम लोग मतलब अब तक मैंने नहीं देखे होंगे तो शायद 2-3 हज़ार नाटक देखे होंगे, और दिल्ली जाके देखे, हाँ 2-3 हज़ार देखे हैं। मेरे दोस्त है एम सईद, वो गालिब पर उन्होंने 5 नाटक लिखे हैं, ठीक है ना। अभी वो दुबई, उनका फोन आया कि मैं दुबई जा रहा हूँ, उन्होंने नाटक मीना कुमारी और कमाल अमरोही पे लिखा था। तो भाई मैंने कहा भाई मीना को तो मैं इतना पसंद करता हूँ, यार मीना वाला नाटक मैं भी देखना चाहता हूँ, मैं मतलब तुम दुबई में कर रहे हो जाके, तो बोले नहीं आप दिल्ली आइए, मैं आपके लिए शो लगा दूंगा। तो नाटकों की दुनिया ना बिल्कुल पागल कर देने वाली होती है। और जब मैं यंगस्टर था तो मैं दिल्ली NSD जाया करता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ड्रामा देखता था, अंकुर उसके डायरेक्टर थे, उनसे मेरी बड़ी दोस्ती थी, उनसे बड़ी सारी बातें करता था मैं, वहाँ की जो मैगजीन आती है वो भी मैं लेके आता था। मेरे पास लगभग 10,000 किताबों का कलेक्शन है, मेरी अपनी लाइब्रेरी है, तो उसमें मेरे पास नाटक भी बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से नहीं होंगे तो मेरे पास 300-400 किताबें तो नाटक ही होंगी।
1: क्या बात है, मैं समझ सकती हूँ सर, बिल्कुल मैं आपसे बात करके समझ सकती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग कितना रिच होगा, क्योंकि वो आपकी बातों में झलकता है। यूथ जो है हमारा, अगर आप, क्योंकि आपने इतना एक्सपीरियंस है आपको और इतना जीवन आपने जिया है, और एक जीवन में जैसे मैंने कहा कई रंग रहे हैं आपके जीवन में, तो आज का जो यूथ है उनको अगर आप कोई एडवाइस देना चाहें कि किसी शहर को अगर समझना है, उसके साहित्य को, उसकी संस्कृति को, उसकी विरासत को समझ के आज के यूथ को उससे जोड़ना है, तो वो कहाँ से शुरू करें, पढ़ने से, थिएटर से, या लोगों की कहानियों से?
2: कहीं से भी शुरू करें लेकिन कर दें, टाइम को वेस्ट ना करें। और जैसे हम यहाँ पर थिएटर्स कराते हैं, कई दिन के फेस्टिवल्स होते हैं, तो बहुत सारा यूथ आता है। हम लोग सुबह शब्द फेरी निकालते हैं,
1: शब्द फेरी
2: के नाम से, सुबह जैसे प्रभात फेरिया निकलते हैं, शब्द फेरी निकालते हैं, है ना। उसमें हम एक लाउड स्पीकर लगा के रिक्शे पे, है ना, चलते हैं, लोगों को जगाते हैं, मोहल्लों में उठाते हैं सुबह 7 बजे कि आइए थिएटर देखिए, ठीक है ना। तो एक अलग तरह का जुनून पैदा करते हैं लोगों में। ऐसे ही जब हम किताबों का कुछ यहाँ पर करते हैं, बुक फेयर लगाते हैं, तब भी हम फेरी निकालते हैं। तो उसका मकसद यही होता है कि हम यूथ को जगाएं, हम ज्यादा से ज्यादा यूथ को आमंत्रित करते हैं। लेकिन यूथ, मैं आजकल के यूथ को कहता हूँ, मैं तो, लोग पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन मैं तो आजकल के यूथ से बहुत ज्यादा खुश हूँ और मैं उनमें बहुत सारी संभावनाएं देखता हूँ, क्योंकि इस यूथ के पास एक चीज बहुत कमाल की है जो और लोगों के पास नहीं रही, इनके पास है निर्णय लेने की क्षमता। ये कंफ्यूज नहीं रहते, ये इन्हें मार पता है इन्हें क्या करना है, इन्हें कहाँ जाना है, इन्हें कैसे करना है, जबकि दूसरों को लग सकता है कि ये कुछ ज्यादा सोच रहा है, कोई ज्यादा उड़ रहा है, लेकिन वो उड़ नहीं रहे होते, उन्हें पता होता है इन्हें क्या करना है। कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, बदलाव जल्दी है और बहुत तेजी से वो बदलना चाहते हैं। तो थोड़ा सा अपने पे नियंत्रण रखेंगे, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, गुज़िश्ता बरेली मैं तो बहुत लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखता हूँ और आप देखिए कि एक कहानी में अपने पेज पे डालता था, पता लगा 70,000 लोगों ने पढ़ी है, 80,000 लोगों ने पढ़ी है, मेरे पास हजारों में मैसेजेस आते थे और यूथ से आते थे ना, तो मुझे पता है कि यूथ पढ़ता है, ऐसी बात नहीं।

0: से 8-10 मुसाफिर उतरे, जिनमें से 3-4 ने वो एक पैसे की पुड़िया होती थी उस जमाने में सुनने की, वो खरीद ली, ठीक है ना। आपको कन्याकुमारी चला गया, आपको कश्मीर चला गया, उस जमाने में ज्यादा डॉक्टर नहीं होते थे, मेडिकेशन इतना होता नहीं था। अब उसको आंखों में कोई तकलीफ है या कोई बात है तो उसने वो सुरमा लगाया। अब सुरमा क्या है, वो जो है गुलाब जल में रखा हुआ पत्थर, जो एक साल से रखा हुआ है, जिसका बार बार गुलाब जल बदला जा रहा है, जो जब उसको पीसा जाता था तो उसमें ठंडक आ जाती थी, जब आप उसे आंखों में डालते थे तो जो इरिटेशन होता था आंखों का वो कट खत्म होता था। या ऐसे उन्होंने कुछ पेड़ों की जड़ों में उसमें से जो रस निकलता है क्वाफ था, तो उसके उससे सुरमे को मेडिकेटेड किया। तो अगर आपके कोई इन्फेक्शन है, कोई और खराब चीजें आंखों में, तो बात यह है कि सुरमा जो खरीदा गया वो कन्याकुमारी गया, कश्मीर गया, एक पैसे की चीज, लेकिन उसके साथ नाम गया बरेली का, बरेली का नाम गया। अब कश्मीर या कन्याकुमारी में कोई आदमी बैठा हुआ है वो करे, अब बरेली कौन जाएगा जो सुरमा लेके आएगा, तो इंतजार है, ठीक है ना। तो एक उस आदमी की सोच देखिए कि उसने बरेली के सुरमे को मशहूर कर दिया, सुरमा बरेली वाला आंखों में ऐसे गाला, सुरमे ने ले ली मेरी जान, है ना, या झुमका बरेली वाला कानों में ऐसा डाला, ठीक है ना, तो झुमका गिरा रहे बरेली के बाजार में। तो जबकि झुमका उनका कोई गिरा नहीं यहाँ पर, ये एक लोकगीत है। ये अलग बात है कि जब आशा भोसले ने इसको मेरा साया में गाया तो ये मशहूर हो गया, लेकिन ये हाँ, लेकिन उससे बहुत पहले ये यहाँ के लोकगीतों में शुमार था और कई गायिकाओं ने इसको पहले से भी गाया है। तो बरेली बड़ा खूबसूरत शहर है, देश की राजधानी और प्रदेश की राजधानी के बिल्कुल बीच के बीच टिका हुआ है, 250 किलोमीटर इधर है, 250 किलोमीटर इधर है, पास में नैनीताल है, पास में आगरा है, ब्रजभूमि कृष्ण की पास में है, मथुरा पास में है, गोकुल पास में है। तो बड़ा खूबसूरत शहर है, और इस शहर की खूबसूरती ये भी है कि जो अधिकारी यहाँ पर ट्रांसफर होके आते हैं अपनी पोस्टिंग के लिए, तो वो रिटायर होने के बाद यहीं बच जाते हैं। और ये सस्ता शहर भी है, मेडिकल हब है, एजुकेशनल हब है, बहुत कुछ है, कल्चर बहुत है शहर में।
1: जी जी जी, आपने, मैंने पढ़ा कि आपने PhD भी बुद्धिज्म में करी है, या एक किताब लिखी है बुद्धिज्म पे?
0: नहीं, मेरा PhD बुद्धिज्म पे है।
1: जी जी जी, तो बुद्धिज्म से आप कैसे जुड़े, और एस्ट्रोलॉजी भी खैर आपको इंटरेस्ट करती है, जो मैंने अभी आपकी बातचीत में भी समझा कि आपने जब मातृ ऋण और पितृ ऋण की बात की, तो क्या उस पे अगर कुछ एक दो बातें बताना चाहें, क्योंकि अभी हमारे पास समय है और मैं जानना चाहूंगी और आपके बारे में थोड़ा सा, और हमारी श्रद्धा भी।
0: मेरे घर में ऐसा कोई पढ़ाई लिखाई का माहौल था नहीं, मेरी माँ एक सरकारी अधिकारी थी स्वास्थ्य विभाग में, ठीक है ना। तो लेकिन मैं बचपन से किताबें मंगाता था, मेरे घर में जब मैं बहुत छोटा था कोई रिश्तेदार आता था तो होता था उसमें 10 रुपए दे जाते थे, 20 रुपए दे जाते थे, तो मैं उनसे कहता मुझे पैसे मत दो, मुझे किताब खरीदवा दो, तो नीली घाटी का रहस्य है या नील परी, तो इस तरह की किताबें मैं बचपन में कॉमिक्स लेता था, उसके बाद लोटपोट। और उस जमाने में क्या है कि हमारे घर में भी ये था कि जो हॉकर आता था वो रोज एक मैगजीन हमारे घर डालते जाया करता था, जैसे माझी आती थी, खासा हिंदुस्तान, धर्म, युग, सारिका, कादम्बिनी, रीडर डाइजेस्ट, तो हम मैं 24 घंटे में एक पूरी मैगजीन पढ़ देता था। वहां से मुझे पढ़ने का शौक हुआ, और आप देखिए 7th क्लास से मैंने VTP से किताबें मंगाना शुरू कर दी, तब ना इंटरनेट था ना टेलीफोन थे, पता ही नहीं था, पता ही मुझे कहां से पता होता था पूरे हिंदुस्तान में कौन सी किताब कहां छपी है, और मैं VTP से मंगाता था किताबें। और जब मैंने अपनी कार खरीदी है पहली, उससे पहले मेरे पास 2 कार की किताबों के मतलब पैसों की किताबें थी, तो मेरी लाइफ में, मेरी प्रायोरिटी में कार नहीं थी, किताबें थी, जो आज 10,000 से ज्यादा बढ़ के हो गई है, पूरी एक बड़ी लाइब्रेरी हो गई है मेरे पास। तो कल्चर जो आप महसूस करते हैं, क्वेश्चन आपने क्या पूछा था मुझे,
1: आप बहुत धर्म से आप कैसे जुड़े और एस्ट्रोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे सकते हैं?
0: तो क्या है कि ये सब करते करते पढ़ते पढ़ते मैं तो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, मैं तो एंथ्रोपोलॉजी करना चाहता था, उससे पहले मैं जूलॉजी करना चाहता था, मेरा सिलेक्शन हो गया था डेंटिस्ट के लिए KGMC, और मैं गया ही नहीं उसमें, तो मेरा जीवन भी ना बड़ा पागलपन भरा रहा है, मुझे बहुत कुछ करना होता था, तो मैंने कविता मैंने की लिखा, किताबें मैंने लिखी, साहित्य मैंने लिखा, इतिहास मैंने लिखा, और थिएटर मैंने किया, तो बहुत सारे काम किए, और बौद्ध धर्म भी इसका एक रूप है कि मैं धर्म को समझना चाहता था, तो मैंने समझने के लिए पीएचडी कर डाली फिर है ना. ऐसे ही मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है, आर्ट और लिविंग से भी मैं जुड़ा रहा हूँ, ऋषि रविशंकर का इंटरव्यू भी किया है, मेरे कई इंटरव्यू जो है वो दिल्ली आर्काइव में रखे हैं दूरदर्शन की, जहाँ से वो अक्सर रिले होते हैं. और बरेली का लोकल चैनल मैंने स्टार्ट कराया सन 2002 में, जो 10 साल हमने चलाया, उस तरह लोकल चैनल नहीं

0: से हमने यहाँ लोकल चैनल चलाया, न्यूज चलाई, मेरे दो प्रोग्राम, तीन प्रोग्राम थे, आपकी बात जिसमें पर्सनैलिटी बेस्ड इंटरव्यू थे, एक था हेल्थ एंड केयर, वो मेडिकल बेस्ड इंटरव्यू थे, यानी कि मैं मेडिकल जर्नलिज्म को तब कर रहा था, और एक प्रोग्राम था मेरा काबिले तारीफ, तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई हुनर है तो उससे हम बात करते थे। मल्टीपल मुझे तमाम फील्ड में जाना, मैं फूड ब्लॉगिंग भी करना चाहता हूँ, मैं ट्रैकिंग भी करना चाहता हूँ, मतलब ट्रैवल से भी लिखना चाहता हूँ, मैं मैगजीन भी निकालना चाहता हूँ, सब चलता रहता है। उसी का एक रूप है बौद्ध धर्म। वो भी एक काम हो गया तो हो गया
1: जी। बहुत ही एक स्पेक्ट्रम ऑफ रेनबो जिसको कहते हैं ना, इंद्रधनुष जैसी पर्सनालिटी। बहुत ही अच्छी बातचीत रही सर आपके साथ, और जिंदगी के रंग कभी यादों में मिलते हैं, कभी किताबों में मिलते हैं, और कभी उन लोगों की बातों में जो अपने तजुर्बे में हमें कुछ नया सोचने की, समझने की क्षमता दे जाते हैं। आज की ये महफिल हमारे साथ डॉक्टर राजेश शर्मा के साथ थी। थैंक यू सो मच राजेश सर, आपने हमारे साथ बहुत बहुत बहुत ही कीमती वाक्या एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एंड आई एम श्योर हमारे श्रोता आज बहुत कुछ इस बातचीत से लेके जाएंगे, और बहुत मतलब मैं तो बहुत ही खुश हूं कि आज हम कनेक्ट हो पाए। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस एपिसोड में जिंदगी के रंग गीतों के संग पर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके श्रोताओं को सुन के अच्छा लगा हो तो हमें पता लगना चाहिए कि उन्होंने कुछ सीखा समझा इससे, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका
1: जी। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे तनुषा, आपके तरानों की हम सफर, फिर मिलेंगे एक नए मेहमान, एक नए सफर और नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
2: मगर अब जो आना तो धीरे से आना।
3: और दोस्तों, इसी के साथ आज के इस खूबसूरत सफर को बस यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज की बातचीत और गीतों ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको कुछ नया सोचने की प्रेरणा दी होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान, एक नई कहानी और नए गीतों के साथ, जिंदगी के रंग गीतों के संग इस प्रोग्राम में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।

जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग। और आज का रंग है एक शिक्षिका की उड़ान के आसमानी रंग का। मैं आपका दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। आज हम मिल रहे हैं एक ऐसी टीचर से जिन्होंने अपनी जिंदगी के हर फेस को नए रंग नए जज्बे के साथ जिया है। दिल्ली के एक रेप्यूटेड स्कूल में 30 साल तक टीचिंग का समर्पित सफर और रिटायरमेंट के बाद भी सीखने आगे बढ़ने की लगन, यही इनकी पहचान है। डांस का शौक, भरतनाट्यम सीखना और मंच पर परफॉर्म करना, मंडला आर्ट और गार्डनिंग में मन लगाना, एनवायरमेंट कैंपेन से जुड़ना, इनकी लाइफ वाकई में इंस्पिरेशन से भरी हुई है। और सबसे खास इनका प्यार रेडियो और ऑडियो प्लेटफॉर्म से। अपना पॉडकास्ट शुरू करना, मेंटजा पर सोलफुल कन्वर्सेशंस करना और साधो जी के साथ खलील जिब्रान द प्रॉफिट पर 30 अर्थपूर्ण चर्चाएं करना, ये सब इनकी क्रिएटिव और थॉटफुल जर्नी को बखूबी बयान करता है। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए एक आर्टिस्ट, एक इटर्नल लर्नर शुचि भसीन जी का, जिन्होंने जिंदगी को सच में एक कला बना दिया है। नमस्कार शुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार, नमस्ते जी, जय हिंद। आप सबको खूबसूरत ही लगकर बधाइयां। सबसे पहले आलोक जी, आपका और समीर जी का और इस मंच का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने हम जैसे आम इंसानों को यहाँ पर आने का फैसला किया। और
0: ठीक है शुचि जी, फिर शुरुआत करते हैं। बिल्कुल आपके साथ में, आपके साथ इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी टीचिंग जर्नी की। दिल्ली के एक रेप्यूटेड स्कूल में 30 साल तक पढ़ाने का अनुभव आपका कैसा रहा, कुछ हमारे साथ शेयर कीजिए वहाँ के अनुभव।
1: जी, 22 साल की उम्र से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और उस समय का जोश और पैशन बहुत अलग तरह का था। जैसे जैसे समय बीतता गया, घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हर चीज को साथ करते हुए बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ सहा भी। जर्नी वॉज वेरी चैलेंजिंग, जिम्मेदारियों के साथ साथ पढ़ाई का, पढ़ाने बच्चों को पढ़ाने का जो तजुर्बा चाहिए होता है समाज के लिए, चरित्र निर्माण करना बच्चों का और उनको हर तरह के अच्छे संस्कार देना, नई दिशा दिखाना, ये सब ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने की कोशिश करी। और हमेशा यही रखा मेरे दिमाग में कि बच्चों को पढ़ाते समय मैं खुद भी साथ साथ उनके साथ ग्रो कर रही हूँ, उनको कुछ नया सिखाना पढ़ाना, जिसके साथ मैंने बहुत कुछ सीखा। धैर्य, सहानुभूति नहीं कहूंगी मैं, समानुभूति, रचनात्मकता और अडेप्टेबिलिटी, जैसे बहुत सारे वैल्यूज जो है वो सीखने को मिली।
0: जाहिर है क्योंकि बहुत चैलेंजिंग रहा होगा और दिल्ली जैसे शहर में स्कूल आना जाना ये भी बहुत ही एक टफ टास्क रहती है, आई एम श्योर।
1: बिल्कुल, काफी डिस्टेंस था मेरे घर से और स्कूल, तो दिन के 4 घंटे तो आने जाने में ही लग जाते थे।
0: जी,
1: तो इसके साथ साथ घर को संभालना और स्कूल की पढ़ाई की जिम्मेदारी सब साथ साथ ही चलता है।
0: जी बिल्कुल सही बात। एक टीचर के तौर पर आपके लिए सबसे यादगार या रिवार्डिंग पल कौन सा रहा होगा? आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे पल आए होंगे, लेकिन कोई खास जो आपके जहन में हो।
1: जी, पल तो ऐसे बहुत सारे थे, पर एक साल के लिए मैंने बीच में ब्रेक लिया था। उस दौरान मुझे एक बच्चे को एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयार करना पड़ा दून स्कूल के लिए, और उसकी उसने फिफ्थ स्टैंडर्ड की पढ़ाई जो है वो सेवन्थ स्टैंडर्ड के लेवल तक की तैयारी करनी थी उसने, जो मैंने उसको 6 महीने तक पढ़ाया और वो एंट्रेंस एग्जाम में पास हुआ। उसके पेरेंट्स ने बहुत बहुत खुश हुए कि भी हमारी पूरी इच्छा थी उस बच्चे को वहां तक पहुंचाने की और आपने उसमें हमारा सहयोग दिया। वो पल बहुत ही
0: पेरेंट्स ने बड़ा ग्रेटिट्यूड फील किया होगा, क्योंकि दून स्कूल का जो स्टैंडर्ड है उसकी पढ़ाई करना, वो भी ऐसे दिल्ली में रह के और उसके एंट्रेंस को क्लियर करवाना, आपने बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल,
1: बहुत
0: बहुत, बहुत बड़ा काम है।
1: फिर साथ साथ मैंने भी बहुत सारी पढ़ाई
0: करी। बिल्कुल सही बात है। तो इतने लंबे समय तक बच्चों और पेरेंट्स के साथ जुड़कर आपने खुद भी बहुत ग्रो किया होगा, खुद भी कुछ सीखा होगा। कोई ऐसी बातें जो बच्चों से हम सीख पाते हैं, ऐसा क्या ख्याल है आपका?
1: बच्चों से तो वैसे तो हम हर किसी से हर समय कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं।
0: जी जी जी,
1: बच्चों के साथ जिंदगी जीना, अपना बचपन फिर से जीना, बच्चों का जो खिलखिलाकर हंसना और बेपरवाह होकर अपने कामों में लगे रहना, ये सब सीखने पर बचपन लगता है कि हम फिर से अपना बचपन जी रहे हैं बच्चों के साथ।
0: तो जी शुजी जी, हाँ बहुत बिल्कुल सही बात। तो शुची जी, ये बच्चों की खिलखिलाहट पे जो आपने कहा है, इसी पे हम एक बच्चों से जुड़ा हुआ कोई गाना सुनते हैं, यहाँ हम रुक जाते हैं।

बिल्ली, आ ई मास्टर जी की आ गई चिट्ठी, चिट्ठी में से निकली बिल्ली।

0: बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा आग पे बैठा पानी था,

0: के चलता है, मांग में सिंदूर भरता है। माथे रोज लगाए बिंदे, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। इस पगर इस है बट पर वॉट मतलब क्या? माथे रोज लगाए बिंदे, इंग्लिश बोले मतलब हिंदी। हिंदी में अलजेब्रा छान, बी आई पी अटरवेर बनियान, बी आई पी
1: शुची जी, रिटायरमेंट के बाद आपने भरतनाट्यम सीखा और स्टेज पर भी परफॉर्म किया, ये इतनी एनर्जी और ये इंस्पिरेशन आपको कहां से मिली कि मैं ऐसा कर सकती हूं और फिर स्टेज पे परफॉर्म करना? भाई थोड़ा बहुत सीखना तो चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन स्टेज पे परफॉर्म करना तो बहुत बड़ा काम है। आपने कैसे किया ये सब?
2: कोविड का टाइम था, हम सब ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ खोया उस टाइम में। हर चीज में ऑनलाइन, शिक्षा प्रणाली से लेकर नौकरी तक हर चीज ऑनलाइन हो गई थी। उस समय मैंने भी एक डांस की क्लास ज्वाइन करी और एक 1.5 साल तक भरतनाट्यम सीखा इसे। और फिर हमें जब कोविड में लॉकडाउन खुला तो हमें फिर मौका मिला कि हम स्टेज पे परफॉर्म कर सकें। और यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि मैं सबसे बड़ी थी उम्र में उस ग्रुप में, और 6 साल की बच्ची से लेकर उस समय मैं 58 की थी, 58 इयर्स आई वाज द ओल्डेस्ट स्टूडेंट देयर, फ्रॉम अ टीचर टू अ स्टूडेंट। बहुत अच्छा सफर था वो, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला उस दौरान। एक्चुअली पार्किंसंस को फाइट करते हुए मैंने सोचा था कि कुछ नया करना चाहिए लाइफ में, तो सीखो करके मैंने भरतनाट्यम ज्वाइन किया और ऑनलाइन क्लासेस लेकर ही हमने पूरा अपना प्रोग्राम तैयार किया। और मैंने अपनी पार्टनर के साथ जो 52 ईयर ओल्ड थी, उनके साथ स्टेज पे सरस्वती वंदना पूरा 5-6 मिनट का प्रोग्राम था वो करा। दैट वाज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट फॉर मी।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। और सबसे खूबी की बात तो आपकी ये नजर आ रही है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस लेके भरतनाट्यम के बेसिक सीखे होंगे और फिर उसको परफॉर्म किया, ये कमाल है, ये बहुत बड़ी बात
2: है। हमें बिल्कुल भी मौका नहीं मिला कि हम स्टेज पे रिहर्सल कर सके या कुछ।
1: जी जी,
2: 2-3 फिजिकल रिहर्सल करते थे क्योंकि लॉकडाउन थोड़ा बहुत तो फिर भी चलता था, क्योंकि आपको पास में नहीं रहना लोगों के और थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, वो सब ध्यान में रखते हुए भी हम ऑनलाइन ही क्लासेस, ऑनलाइन ही प्रैक्टिसेस करते रहे।
1: नेचुरली नेचुरली सर, क्या ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप चलिए मुझे ये बताइए कि जैसे आर्ट और क्रिएटिविटी, जब ये आप सीख रही थी भरतनाट्यम या परफॉर्म कर रही थी, तो इससे कोई आपको अंदर से अपने अंदर बदलाव या कोई इनर ग्रोथ या कोई ऐसी इंस्पिरेशन, ये क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ, कुछ चेंज आया आपके लाइफ के आउटलुक में या इनर स्ट्रेंथ में, ऐसा कुछ लगता है आपको?
2: मेरे ख्याल से डांस और म्यूजिक ऐसी चीज है जो हर किसी को बदल सकता है, एक इंस्पिरेशन होती है, तो वही इंस्पिरेशन मुझे भी मिली और पॉजिटिविटी बहुत रही मुझमें इस दौरान, और अभी भी मैं उसको बरकरार रखती हूँ। क्योंकि पार्किंसन जैसे इसको फाइट करना पॉजिटिविटी के बिना नहीं हो सकता, काफी पॉजिटिविटी और डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी है दोनों की, आर्ट और म्यूजिक में बहुत बहुत कुछ सीखने को है और अभी भी सीखना चाहती हूँ, पर कई बार अपनी लिमिटेशन होती हैं तो नहीं कर पाता इंसान। बट यस, इनर स्ट्रेंथ तो बहुत आती है इन चीजों से, जब आप अपने आप को महसूस कर सकते हो इन सब में।
1: जी।
2: फाइंडिंग योर सेल्फ, सेल्फ डिस्कवरी होती है।
1: जी, तो पार्किंसन के साथ आपने ये चैलेंज लिया और किया, बहुत बड़ी बात है, आपके जज्बे को सलाम है, मैं तो यही कहूंगा।
2: नहीं ऐसा कुछ नहीं, पर अपनी अपने मन को पक्का करने की बात होती है और एक अपने में संयम लाना और अपने आप को पॉजिटिव रखना, मैं तो यही कहूंगी कि ये सबसे जरूरी है किसी भी चीज के लिए, किसी भी बीमारी के लिए इसको फाइट करने
1: पॉजिटिव। तो जज्बे के, बिल्कुल सही, तो इस जज्बे के नाम पे हम एक गाना सुनते हैं, जज्बे, आपके जज्बे को सलाम करते हुए।

0: श्रुति जी, आपको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। अब थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि कौन से हिंदी सॉन्ग्स या सिंगर्स आपके दिल के बहुत करीब हैं, जिनको मिलके सुन के आपको सुकून लगता है और मजा आता है?
1: लता जी, आशा भोसले, किशोर दा, मोहम्मद रफी साहब, मुकेश दा, इन सबके गाने सुन सुनकर ही हम बड़े हुए हैं, जो अभी भी दिल के बहुत करीब हैं। आज की डेट में बहुत अच्छे, बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आ गए हैं, पर अभी भी हमारा जो मैं कहूंगी कि उन उस समय के गानों का जो था, उनका सुर और उनकी लिरिक्स जो थे, वो आज की
0: जी
1: डेट में कहीं नहीं मिलेंगे। आप
0: सही बात।
1: वंडरफुल पीरियड लता जी और किशोर कुमार।
0: अब तो फिर आपने इतनी लता जी किशोर जी की बातें कर ली हैं, अब तो ये बताइए कि कोई ऐसा गाना जो आपको बड़ा मोटिवेट कर देता है, इमोशनल कर देता है या एनर्जाइज कर देता है, कोई ऐसा गाना आप बताइए हमारे को, दो तीन गाने बताइए जो अच्छे लगते हैं।
1: सफर का है गाना, एक जिंदगी का सफर, एक ऐसा
0: हाँ, है कैसा सफर।
1: बहुत ही खूबसूरत,
0: बहुत बढ़िया।
1: रोटी कपड़ा और मकान का, मनोज कुमार जी के गाने आज भी दिल को छू जाते हैं।
0: जी, सफर के गाने तो बहुत अच्छे थे। मुझे याद है राजेश खन्ना शर्मिला टैगोर की पिक्चर थी, और जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें जीने के लिए, वो भी मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वो। एक और है वो फिरोज खान के साथ में, हो जो तुमको पसंद हो वही बात कहेंगे।
1: वही बात कहेंगे। जी
0: हाँ, ये हमेशा मैं अपने घर में भी गाता रहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा नहीं
1: जी
0: है। तो ये गाने, और बाकी क्लासिकल में कोई आपको खास पसंद है, क्लासिकल गानों में?
1: ऐसा मैंने कभी तो बस ध्यान नहीं दिया इस तरफ, ध्यान
0: हाँ
1: देखा,
0: जी,
1: पर म्यूजिक सुनना वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, कोई भी किसी भी तरह का हो म्यूजिक, दिल को छूने वाला होना चाहिए बस।
0: चलिए सुचि जी, अब आते हैं अपन आपकी अपनी दुनिया में, रेडियो और ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया में। ये आपको इंटरेस्ट कैसे लगा और किस तरह से आप इनसे जुड़ी, रेडियो है ब्रॉडकास्टिंग से?
1: कोविड के टाइम की बात है, फिर वहीं से शुरू होती है बात। कुछ
0: जी
1: करने खास करने को नहीं होता था, तो कुछ ऐसी तलाश थी कि भाई कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए करने के लिए, तो मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू कर दिया पहले तो। फिर चांस की बात है कि मेंसा आया सामने, और उस समय का मेंसा और आज के मेंसा में भी बहुत फर्क है। उस समय हम कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, और हम लोग बहुत कुछ सीख पाए उस मंच पर। मैंने 115 के करीब सर्कल्स पोस्ट करे, जिसमें आप अपने आप कुछ भी, किसी भी बात पर चर्चा कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आपके पास कोई दर्शक हो, सुनने वाले कोई हो ना हो, पर आप अपने आप भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं। तो बस अपने आप को ऐसे ही एंगेज रखने के लिए, कुछ सीखने के लिए मेंसा ज्वाइन किया था मैंने, और आपसे भी उसी के दौरान मिला
0: हाँ, मेरा भी है
1: जी।
0: बिल्कुल, हमारी मुलाकात भी मेंटर पे हुई थी। बिल्कुल,
1: बहुत कुछ
0: मेंटर
1: सीखा।
0: प्लेटफॉर्म तो, जी, बिल्कुल सही बात। अब ये बताइए कि मेंसा जैसे प्लेटफॉर्म्स जिसमें सब लोग जुड़ जाते थे, फ्रीली जुड़ जाते थे, ये आप इसके साथ काफी जुड़ी रही हैं, मैं वैसे ही ऑफ द कफ सवाल पूछ रहा हूं, फिर आपने, अब डिसकंटिन्यू कैसे हो गया ये आपका मेंसा से?
1: एक्चुअली मेंसा की पॉलिसी थोड़ी चेंज हो गई थी,
0: जी
1: वो लोग केटर कर रहे थे यंगस्टर्स को इंग्लिश सीखने के लिए, तो उन्होंने
0: जी अच्छा
1: जैसे इंटरव्यूज के लिए बच्चों को तैयार करना, और वैसे ही आगे जो ये लोग देते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह जॉब्स के लिए और आगे की पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने
0: अच्छा
1: उस तरफ अपना डाइवर्ट कर दिया था स्किल सेट। तो हम लोगों के लिए कुछ खास करने को था नहीं, तो धीरे धीरे वो डिसकंटिन्यू हो गया। अदरवाइज बहुत अच्छा चल रहा था, हम काफी कुछ सीखने को मिला, काफी लोगों से जुड़े और कुछ सीखा कुछ सिखाया अपने लिए कुछ रेडी किया। आज भी सारे वो सर्कल जो है हमारे नाम के स्टोर्ड हैं और हम कभी भी उनको अप्रोच कर सकते हैं।
0: अच्छा हाँ अच्छा वो आर्काइव्स में तो होंगे, आपने जो भी सर्कल बनाए थे, जो भी रिकॉर्डिंग्स की थी, अच्छा वो
1: वो
0: सब वही है। अच्छा
1: सब नहीं है, तो
0: वाह
1: कभी
0: वो
1: भी हम
0: सही।
1: सुन सकते हैं कुछ भी, तो सीखने को बहुत कुछ मिला वहां पर। जैसे जैसे उनका टारगेट यंगस्टर्स की तरफ गया तो हमारी तरफ से मान हट गया, तो हमको भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा।
0: अच्छा फिर पॉडकास्ट की बात पे मैं वापस आता हूँ, आपने पॉडकास्ट में ज्यादातर कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए थे जब आपने पॉडकास्ट शुरू किया था?
1: ऐसी छोटे छोटे छोटे स्टोरीज को लेकर उनके बारे में मॉरल्स डिस्कस करना, और मतलब
0: अच्छा
1: इट वाज नॉट अ बिग थिंग बट छोटे बच्चों के लिए ज्यादा ठीक था वो, कि छोटी छोटी कहानियां लेकर उनके बारे में बात करना और उनके मॉरल्स का डिस्कस करना।
0: जी, मोटिवेशनल स्टोरीज और इस तरह की चीजें।
1: जी,
0: यहाँ शुचि जी हम रुक जाते हैं और एक गाने का मजा लेते हैं।

0: श्रुति जी, आप आते हैं एक फेवरेट बुक्स की तरफ। आपकी आपकी कौन सी ऐसी पसंदीदा किताब है जिसने आपका सोचने का नजरिया बदल लिया?
1: पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड किताब
0: ओहो, अच्छा।
1: मैंने
0: और
1: पढ़ी
0: जी,
1: थी, मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट करी और मैंने पढ़ी, तो काफी मेरा सोचने का नजरिया भी बदला। और अभी भी कभी जब मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ तो मैं इस किताब को पढ़ के बैठ जाती हूँ, कई बार उसको पढ़ने का लगता है, कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ तो पॉजिटिविटी और मोटिवेशन फिर से आ जाती है। वैसे तो बहुत बहुत बहुत सी किताबें हैं, एक टाइम था जब काफी पढ़ लेती थी पर अब धीरे धीरे छूटता जा रहा है।
0: नहीं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में कोई एक बात हम लोगों को अगर शेयर करना चाहें तो क्या शेयर करना चाहेंगे आप, कोई एक चीज?
1: पॉजिटिविटी का ही कहूंगी मैं कि हम अपने आप को जो कहते हैं, अपने आप से जो बात करते हैं, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिविटी ही हमें आती रहती है। तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन के लिए होती है जो धीरे धीरे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है और फिर वो ही हमारी रियलिटी बनती
0: बहुत
1: है।
0: खूबसूरत, बहुत बढ़िया किताब है। ये जैपनीज फिलोसफी इकिगाई, यानी लाइफ का पर्पस और जॉय, इस कंसेप्ट को आप अपनी लाइफ में कैसे महसूस कर सके, कुछ बताएंगी इसके बारे में? ये क्या कंसेप्ट है और किस तरह हम अपनी लाइफ में इसको उतार सकते हैं?
1: जी, इकिगाई का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप जब सुबह उठें तो आपके मन में कुछ ऐसे विचार आने चाहिए कि आपको अपना दिन कैसे अच्छा बिताना है।
0: जी
1: यू हैव समथिंग इन माइंड, आज मैं उठा हूँ तो मैंने आज ये करना है। अगर हम ये सोच के चलें कि आगे हमारे लिए कुछ है तो हम उसी की तरफ बढ़ेंगे। अगर हम ये मान के चले कि आज का दिन पता नहीं कैसे निकलेगा, या कुछ करना है नहीं करना, तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो एक एम होना
0: अच्छा,
1: चाहिए लाइफ, आप जब सुबह उठे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने आज क्या करना है। तो वो आपको एक पॉजिटिविटी भी देता है और आगे बढ़ने की, रोज सुबह खुशी खुशी उठने की इच्छा भी रखती है आपकी।
0: मतलब हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में एक इकिगाई खोजना चाहिए, सुबह उठ के कुछ ऐसा पर्पज होना चाहिए लाइफ पे।
1: छोटे छोटे ही तय हो वो, आप छोटे पर्पज से ही बड़े की तरफ बढ़ते हैं धीरे धीरे। यू हैव अ पर्पज इन माइंड।
0: बहुत खूबसूरती से बताया आपने। तो यहाँ एक गाने के लिए रुक लेते हैं, एक गाना अपन लोग एंजॉय करते हैं।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंस।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: श्रुति जी, आपने साधु जी के साथ प्रॉफिट पर 30 मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस की हैं, ये आइडिया आपको किस तरह से आया?
2: साधु जी के साथ मैं मेंटर पर ही जुड़ पाई और उनके साथ काफी मैंने उनके सर्कल्स अटेंड करे, उनके साथ हमारी भी बातचीत होती थी, आप भी उनमें कभी कभी शामिल होते थे
1: जी।
2: उन्होंने ही मुझे एक बार कहा कि वो प्रॉफिट की ट्रांसलेशन अपने तरह से अपने विचारों से करना चाहते हैं, तो मैंने होस्ट किया उनका वो प्रोग्राम जिसमें उन्होंने 30 सेशन में हर विषय पर चर्चा करी और उनकी मैं किताब में से पढ़ के बताती थी और फिर वो अपने तरीके से उसको एनालाइज करके एक्सप्लेन करते थे।
1: अच्छा,
2: तो वो हमने पूरा किया, बहुत बहुत बड़ा काम था वो मेरी लाइफ का, वेरी फुलफिलिंग।
1: अच्छा, मुझे याद आ गया, वो जो मॉर्निंग के अंदर साधु जी आया करते थे
2: जी। काफी उनके सर्कल काफी चलते थे पहले तो, बीच में धीरे धीरे अपना अपना ही शुरू करा।
1: अच्छा अच्छा, तो ये खलील जिब्रान की राइटिंग में आपको कौन सा थॉट या चैप्टर आपके दिल के बहुत करीब है? लव, फ्रीडम, पेन या चिल्ड्रन, कौन सा आपको अच्छा लगता है?
2: हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला
1: जी जी।
2: चिल्ड्रन का तो ये है कि चिल्ड्रन कम थ्रू यू, दे आर नॉट योर्स, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी। हर हर एक एस्पेक्ट में कुछ ना कुछ अलग ही था उसमें
1: जी।
2: लव का देखने या चाहते हैं फ्रीडम के बारे में बात करें, अपने आप को पहचानने की बात है, सेल्फ डिस्कवरी की बात है,
1: सेल्फ डिस्कवरी, अपने अंदर झांकना, अपने आप को पहचानना, यही सबसे महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा सा रुख बदलते हैं शुचि जी अपन, और आपकी जो पसंदीदा चीजें हैं, गार्डनिंग है, मांडला आर्ट है, एनवायरमेंट की कैंपेन्स है, इनने आपकी लाइफ में क्या बैलेंस दिया है, कोई सुकून दिया है, पीस दी है, क्या दी है आपको ये सब करने से?
2: गार्डनिंग तो सुबह सुबह जब मैं अपने बगीचे

0: मंडला आर्ट करते करते जो डिसिप्लिन और एक जो क्रिएटिविटी है, और साथ ही साथ आपकी जो बारीकी से काम करने का है तरीका, इससे बहुत सुकून मिलता है पहले कुछ करने का। बाकी तो हर चीज में रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नए दिनों को कुछ करते। पर्यावरण से बस एनवायरनमेंट से बहुत ही ज्यादा, क्योंकि साइंस की टीचर थी तो हमेशा बच्चों को ये सिखाते थे कि अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए हमें। तो यहाँ पे भी अपने आसपास में हमने प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन ड्राइव शुरू कर दी है, और एक एनजीओ के साथ अटैच हैं जहाँ पर हम हर महीने अपना वेस्ट कलेक्ट करते हैं प्लास्टिक का, जो भी देते हैं वो आगे करते हैं। ऐसे मैंने 15-20 लेडीज को साथ ग्रुप बनाया हुआ है, और
1: अच्छा,
0: हम इसी में लगे हुए हैं कि किस तरह से हम प्लास्टिक को थोड़ा कम करें अपने देश में रहते हैं।
1: मतलब आप जिस सोसाइटी में है, जिस कम्युनिटी में रहती है, वहां भी आपने एक प्लास्टिक वेस्ट को डिस्पोजल का या कुछ ऐसा तरीका इजाद किया है जिसमें आप चाहती हैं कि ये सब नहीं हो प्लास्टिक के।
0: हम सब अपने घर में जो वेस्ट प्लास्टिक होता है वो इकट्ठा करते हैं हर महीने,
1: जी हाँ
0: और महीने का एक दिन उन्होंने डिसाइड किया है जहाँ पर एनजीओ की बाढ़ आती है और
1: जी
0: सारा

0: आज गुरु नानक देव जी साहिब की कई वाणी में मैं एक लास्ट कुछ शब्द कहना चाहूंगी आपसे। नानक देव जी ने कहा है, किरत करो, वर्क हार्ड एंड वर्क ऑनेस्टली, नाम जपो, ऑलवेज रिमेम्बर गॉड एंड वन विद जपो, शेयर विद देवी। सो आई विल प्रे एंड सजेस्ट
1: हाँ, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट है। नानक देव जी का जो मैसेज है वो ही हमको रिट्रीट करना चाहिए सब लोगों के लिए, बहुत बड़ी बात। तो शुचि जी, यहाँ नानक देव जी के नाम पे हम रुक जाते हैं और एक गाने का आनंद लेते हैं।

अब शुचि जी, हम आखिरी पायदान पर आ गए हैं इस इंटरव्यू की। तो जब आपने टीचिंग से लेकर आर्ट, डांस और रेडियो तक कई रोल्स निभाए हैं, आगे अब क्या कुछ नया एक्सप्लोर करने का इरादा है?

0: कुछ और इच्छा है आपकी कि मैं ये करूं?
1: अभी तो इच्छाएं तो कभी कभी इंसान की खत्म होती ही नहीं है,
0: जी,
1: पर अभी फिलहाल कुछ ऐसा मेरे हाथ में आया नहीं है तो मैं आपकी कैसे कर सकूँ। अभी ट्रैवलिंग थोड़ी ज्यादा हो रही है मेरी, तो अभी कुछ ऐसा सोचा है।
0: आप क्या देश के बाहर भी ट्रेवल करती हैं या सिर्फ देश में ही ट्रेवल करती हैं?
1: देश के बाहर भी करते हैं, दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, बेटी
0: अच्छा,
1: मेरी कनाडा में है, बेटा दुबई में, तो
0: जी,
1: उन्हीं के
0: अच्छा,
1: पास आना जाना मेरा लगा रहता है। सोलो ट्रैवलिंग करना मेरा बहुत बड़ा सपना है, टूर पे जाना, तो कुछ
0: अच्छा
1: और नया करना। अभी फिलहाल तो मैंने आगे तो बच्चों को सिलाई सिखाने का बीड़ा उठाया है,
0: अच्छा
1: टीचिंग के लिए, तो ग्रेजुअली इसी लाइन में मैं आगे काम करना चाहती हूँ। कि जो छोटे बच्चे बच्चे हैं तो थोड़ा सा आप मदद
0: जी
1: करने की कोशिश करें।
0: तो सुचि जी, आपने लिसनर्स और पुराने स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई एक मैसेज देना चाहें, आपके स्टूडेंट्स भी बहुत होंगे पुराने दिल्ली के अंदर, कोई मैसेज देना चाहें तो क्या होगा?
1: यही होगा कि अपने आप को स्वीकार करना हमारा हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, और उस चीज को एक्सेप्ट करो जहाँ पर आप, उस चीज को स्वीकार करो जहाँ आप कुछ नहीं बदल सकते, तो आपको बहुत शांति मिलेगी। एंड लेट गो,
0: जी
1: जो चीज आपके बस में नहीं है तो छोड़ दें, इसलिए अपने
0: जी
1: आप को प्रताड़ित ना कर, लेट गो ऑफ
0: बहुत खूबसूरत बात कह दी आपने, लेट गो वाली। अगर हम दुनिया में ये लेट गो समझ में आ जाए लोगों के, तो इससे बढ़िया कोई बात ही।
1: गो विद द फ्लो।
0: तो दोस्तों, कितनी खूबसूरत बातें और कितना प्रेरणादायक सफर सुजीत ने हमें दिखाया कि जिंदगी का हर पड़ाव एक नई शुरुआत हो सकता है, बस जरूरत है सीखते रहने और जीते रहने की। टीचिंग से लेकर डांस तक, रेडियो से लेकर फिलॉसफी तक, उन्होंने हर फील्ड में अपनी ओरिजिनलिटी और वार्म्थ को से नया रंग भरा है। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और हर दिन कुछ नया सीखने का एक नया मौका आता है। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, और हर दिन कुछ नया सीखने का एक नया मौका होता है। सुचि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज आपकी कहानी और अनुभव हमारे लिसनर्स के साथ बांटने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, याद रखिए, लाइफ इज ब्यूटिफुल व्हेन वी कीप ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। मैं आलोक कुमार अब आपसे लेता हूं इजाजत। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग कहानी के साथ। तब तक कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सेलिब्रेटिंग लाइफ।
2: जिंदगी के रंग हजार।
3: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार है बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में आज के कलाकार हैं विनोद खन्ना, जो बॉलीवुड के एक बहुत बड़े स्टार रहे हैं। आइए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना। तो दोस्तों सुनते हैं विनोद खन्ना साहब के फैन से कुछ उनके बारे में।
1: दोस्तों हमारे साथ बने हुए हैं गौरव दीक्षित जी अयोध्या से। मैं इनसे पूछना चाहूंगा विनोद खन्ना जी के बारे में आप क्या कहेंगे?
2: क्या पर्सनैलिटी है भाई। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय विनोद खन्ना जी अपने चरम में हुआ करते थे, लगता था पर्सनैलिटी तो ऐसी हो।
1: बहुत बढ़िया। विनोद खन्ना जी की किसी फिल्म का कोई गीत आप सुनवाना चाहेंगे श्रोताओं को?
2: एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी मुकद्दर का सिकंदर
1: जी,
2: अमिताभ जी और विनोद खन्ना जी की, उसमें वो प्यार जिंदगी है, वो तो बड़ा अच्छा गाना है।
1: कौन सा गीत?
2: प्यार जिंदगी है।
1: ओके ओके, वो उन्हीं के ऊपर सुनाया गया था।
2: जी जी जी जी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही गीत हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं गौरव दीक्षित जी का पसंद का। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई।
2: बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद समीर भाई।
1: थैंक यू।
0: लीजिए पेश खिदमत है उनके ही फैन की पसंद का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा।
1: जज ने पूछा, तुम्हें तलाक क्यों चाहिए भैया? आदमी ने कहा, सर मेरी बीवी मुझसे लहसुन छिलवाती है, प्याज छिलवाती है, बर्तन मंजवाती है। जज ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? लहसुन को थोड़ा सा गर्म कर लिया करो, आसानी से छिल जाएंगे। प्याज को फ्रिज में रख दिया करो तो आंसू नहीं आएंगे, और बर्तनों में ना 10 मिनट पहले पानी डाल दिया करो, आराम से धुल जाएगा, समझे? तो आदमी ने कहा, समझ गया सर। जज ने कहा, क्या समझे? आदमी ने कहा, सर आपकी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब है।

0: मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर। आप मेरे साथ है ना
1: दोस्तों? विनोद खन्ना साहब का जन्म एक पंजाबी हिंदू फैमिली में पेशावर में 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

दोस्तों, विनोद खन्ना साहब को 2 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले। वो अपने जमाने में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले स्टार्स में से एक थे। लीजिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

0: देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।
1: दोस्तों, विनोद खन्ना साहब फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कुछ समय के लिए, 4 साल के लिए चले गए थे, थोड़ा आध्यात्म की तरफ घूम गए थे। 1982 से 1986 तक वो फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहे। लीजिए, पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

1987 में उनकी वापसी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और कई कामयाब फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ समीर, आप मेरे साथ है ना? नहीं दोस्तों, सुनते हैं विनोद खन्ना साहब की ही फिल्म का ये गीत।

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम के जो एक्टर हैं उनका नाम है जैकी श्रॉफ। जी हां, जैकी श्रॉफ जी का जन्म बॉम्बे में ही, जो कि आज की डेट में मुंबई है, हुआ था। इनका जन्म 1 फरवरी 1957 को हुआ था। लीजिए पेश खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

मैं समीर बोल रहा हूं, आपका रेडियो दोस्त। बने रहिए मेरे साथ। जैकी श्रॉफ जी ने 11वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद बस फिल्मों में आने की कोशिश में लग गए, और उसके बाद इतनी ढेर सारी फिल्में इन्होंने की कि बस मजा आ गया। इनकी शानदार पर्सनालिटी, इनके बोलने का अंदाज हम सभी को हमेशा याद रहता है। लीजिए पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का, उन्हीं पर फिल्माया हुआ ये गीत।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना? कैसे हैं दोस्तों? आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ।

जैकी श्रॉफ जी ने कुछ टेलीविजन शोज भी किए, जैसे लहरें, चित्रहार एंड मिसिंग। वहां भी इन्होंने अपनी कलाकारी की छाप छोड़ी। तो लीजिए, पेशे खिदमत है उन्हीं की फिल्म का ये गीत।

आपका दोस्त आरजे समीर। आगे बढ़ने से पहले जरा सा हंस लेते हैं। लीजिए दोस्तों, पेश खिदमत है हंसी का ये फुआरा। भाई साहब, आपको पता है गूगल का जन्म कैसा हुआ? एक बार रजनीकांत सुबह सुबह उठे, उन्हें ख्याल आया कि अगर उनकी नॉलेज का 1% हिस्सा भी दुनिया को मिल जाए तो उनका भला हो जाएगा। बस गूगल का जन्म हो गया।

मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं समीर। आप मेरे साथ है ना दोस्तों? आज के कलाकार प्रोग्राम के कलाकार जैकी श्रॉफ जी का ये गीत

देखे कहीं जाइएगा नहीं, बस मैं अभी हाजिर हुआ, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूं, समीर।

कैसे हैं दोस्तों, आप हैं आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। मनुष्य के शरीर के बारे में और मस्तिष्क के बारे में एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं दोस्तों। मनुष्य का मस्तिष्क, जो कि हमारा कंट्रोलर माना जाता है, जहां पर सारी पढ़ाई लिखाई अनुभव स्टोर होते हैं, आपको पता है वो किसी भी बात को सिर्फ पिक्चर्स में, छवियों में ही समझता है। मस्तिष्क के लिए शब्द कोई मायने नहीं रखते, सिर्फ छवियां, पिक्चर्स, फोटोज मायने रखती है। जब हम कहते हैं पेड़ तो मस्तिष्क एक पेड़ की छवि बनाता है। जब हम कहते हैं चिड़िया, हाथी, जंगल, जानवर, इंसान, तो मस्तिष्क सिर्फ छवियां बनाता है और उन्हीं को समझता है। इसलिए जब हम मोबाइल पर पिक्चर देखते हैं तो मस्तिष्क का काम तो हो गया ना, यानी कि मस्तिष्क चुपचाप बैठ जाता है, उसे छवि बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि छवियां पहले से बनी बनाई हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो मस्तिष्क उन सुनी हुई चीजों पर छवियां बनाता है, यानी कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि मसल्स काम करती है और हमारा दिमाग तेज होता जाता है। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए, क्योंकि मस्तिष्क उन सुनी हुई ध्वनियों पर, आवाजों पर छवि बनाता है और तंदुरुस्त रहता है। तो बने रहिए आपके रेडियो दोस्त समीर के साथ। आइए सुनते हैं जैकी श्रॉफ जी के ऊपर फिल्माया हुआ ये गीत।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: दोस्तों आप हैं आप ही के दोस्त समीर के साथ 90.8 FM रेडियो टांटिया भील आपके झाबुआ की आवाज पर। तो दोस्तों लीजिए शुरू करते हैं गजलों का ये महकता हुआ प्रोग्राम आज शाम। गजलों के साथ के प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे प्रोग्राम में जो शायर, जो राइटर, जो गजल कहने वाले कलाकार हैं, उनका नाम है नवीन नवा साहब। बाकी की बातचीत हम नवीन जी से ही करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनके कलाम भी सुनेंगे। नवीन जी आपका बहुत बहुत आभार कि आप हमारे प्रोग्राम में आए।
1: बहुत शुक्रिया गोयल साहब, मेरी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस रेडियो स्टेशन पे बुलाया और अपने सुनने वालों से रूबरू होने का मौका अता किया है। दोस्तों मैं नवीन नवा मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ और आज बातचीत होगी गोयल साहब के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना मजा मुझे आएगा उतना मजा आपको भी आएगा।
0: जरूर सर, जरूर जरूर जरूर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। तो प्रोग्राम को शुरू करते हुए एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछना चाहूंगा, आप बचपन में क्या बनना चाहते थे नवीन साहब?
1: मैं बचपन में सिर्फ बड़ा बनना चाहता था गोयल साहब।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या कहा है साहब, क्या कहा है, मजा आ गया साहब।
1: मैं सच में कहता हूँ कि मेरे ऐसी कोई सपने बड़े बड़े ऐसे नहीं थे। मैं बड़ा सिंपल सा लड़का था जब मैं छोटा था, छोटे गांव से था, छोटे शहर से था। तो कुछ कर गुजरने की तमन्ना जो है वो तो बाद में पैदा हुई और भगवान की दया कहिए, दोस्तों की दुआएं कहिए, बड़ों का आशीर्वाद कहिए कि जो मैं बनना चाहता था वो बन भी गया। मैं एक प्रोफेशनल बनना चाहता था। थोड़ी उम्र हो जाने के बाद एक जवानी में एक ख्याल आया कि प्रोफेशनल बनूं, तो मैं आज वो प्रोफेशनल हूं। मैं सिर्फ शायर ही नहीं हूं, मैं इस देश के बहुत सीनियर कंपनी सेक्रेटरीज में से हूं और महिंद्रा ग्रुप में कार्यरत हूं क्योंकि बहुत ही अच्छा ग्रुप है, बहुत अच्छी कंपनी है महिंद्रा फाइनेंस। मैं उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ सर्विस में और सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं कह सकता हूँ ये बड़े आत्मविश्वास के साथ कि जो छोटे छोटे सपने मैंने देखे थे वो सारे पूरे कर पाया हूँ इस उम्र तक आते आते।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब, मजा आ गया सुन के साहब। सच बोले तो आप फाइनेंस में इतनी ऊंचाइयों पर हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। फाइनेंस के व्यक्ति होने के साथ साथ आप शायर भी हैं, यानी कि आप दिमाग के साथ साथ दिल से भी सोच लेते हैं, क्या बात है, बहुत खूब। और जहां तक महेंद्र की बात करें, जी
1: बड़ा प्यारा जुमला था।
0: क्योंकि अक्सर होता है ना नवीन जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती का साथ कुछ ज्यादा बैठता नहीं है, लेकिन
1: लक्ष्मी जी वैसे भी मेरे साथ बहुत नहीं रहती।
0: तो किसी लक्ष्मी के पुजारी का सरस्वती का बेटा होना ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी गजल हमें सुनाएं, हमारे श्रोताओं को सुनाएं।
1: जी जरूर। देखिए मुशायरों में काफी सारा पढ़ता रहता हूं मैं और वहां पे एक तरीका होता है, एक सलीका होता है पढ़ने का जो मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं करूंगा। बिल्कुल सीधे सपाट तरीके से पढ़ूंगा और चाहूंगा कि जो लिखा है उसके साथ मेरे सुनने वाले जुड़े। एक छोटी बहर की गजल सुनाना चाहूंगा।
0: इरशाद साहब, इरशाद, इरशाद।
1: देखिएगा बड़ी छोटी बहर की है और ख्याल देखिएगा इसके।
0: जी जी।
1: मतलब बस फरमाइएगा कि जो बुलाने से पहले आता है,
0: जी
1: जो बुलाने से पहले आता है वो जमाने से पहले आता है।
0: क्या बात है, वाह
1: बहुत शुक्रिया। जो बुलाने से पहले आता है वो जमाने से पहले आता है, कोई जाने पे भी नहीं जाता।
0: नहीं।
1: कोई आने से पहले आता है।
0: हो वाह क्या बात है।
1: कोई जाने पे भी नहीं जाता, कोई आने से पहले आता है। अपने कांधों पे बोझ है ये ख्याल,
0: जी
1: सर झुकाने से पहले आता है।
0: सर झुकाने से पहले आता है।
1: अपने कांधों पे बोझ है ये ख्याल, सर झुकाने से पहले आता है, और जिंदगी है बस एक बहाना जो
0: जी,
1: जिंदगी है बस एक बहाना जो हर बहाने से पहले आता है,
0: पहले आता है।
1: जिंदगी है बस एक बहाना जो हर बहाने से पहले आता है।
0: बहुत खूब सर,
1: छोटी सी गजल थी, मैंने सोचा किसी से शुरुआत की जाए।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही प्यारी, बहुत ही संजीदा और बहुत ही मीनिंगफुल गजल जो बिल्कुल दिल को छू कर गई। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतनी प्यारी सी गजल के लिए। मैं आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम पिछले सवाल में बचपन की बात कर रहे थे, अभी भी बस उसी बचपन को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। मैं हमेशा इस बात का बहुत बड़ा फैन हूं, और हमेशा जिससे भी मुलाकात होती है, बातचीत होती है, तो कभी कभी निकल पड़ता है मेरे मन से कि मैं अपने मन के एक कोने को हमेशा बच्चा रखना चाहता हूं, खेलता रहना चाहता हूं, चाहे मेरी उम्र कितनी भी क्यों ना हो जाए। तो इसी चीज से संबंधित एक सवाल कि अपने बचपन की कोई प्यारी सी याद के बारे में हमें बताइए।
1: ये दरअसल अपने बचपन की बात छेड़ी, शायर हो तो मेरा एक शेर मुझे याद आ
0: रहा है। अरे
1: वाह, मुझे याद नहीं रहते शेर जैसे था
0: जी जी जी जी,
1: कि मेरी पहचान ऐसे करवाना
0: जी,
1: मेरी पहचान ऐसे करवाना एक बूढ़ा जो अब भी बच्चा है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दरअसल ये सवाल मैंने सजो के रखा था, बचा के रखा था कि मैं इस प्रोग्राम के आखिरी में आपसे पूछूंगा, लेकिन मजेदार वाली बात है आपने जवाब प्रोग्राम के पहले ही दे दिया। क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत तो
1: हर एक दिल में बच्चा होता ही है
0: जी। Right, sir. Fantastic.
1: I'm still a child. तो मेरी बचपन की ऐसी आप पूछेंगे तो एकदम से कि बिल्कुल खास या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि दरअसल मैं अपना बचपन अब तक जी ही रहा हूँ, शायद ये कारण हो सकता है कि मुझे बचपन की कोई स्पेशल याद नहीं है।
0: क्या बात है ना?
1: लेकिन I have had a very very good childhood. जैसे कि आप बड़े बड़े मेहमान आपके प्रोग्राम में आते होंगे जो अपने यादें बताते होंगे कि कैसे उन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना किया, कैसे उभरे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो बड़ा प्यारा सा सिंपल सा बचपन रहा है मेरा, छोटे से शहर में, डोंबिवली शहर में रहते थे हम लोग
0: जी जी जी।
1: तो उसकी स्पेसिफिक ऐसी कोई यादें नहीं है, बस थोड़ी दोस्ती की है, थोड़ी मजे की है, थोड़े थोड़े है। जैसे कि भाई एक जमाना हुआ करता था, मैं 57 साल का हो गया हूँ गोयल साहब, तो एक जमाना हमारा भी हुआ करता था जब हम काफी शरारती हुआ करते थे। तो मुझे याद पड़ता है कि हम एक बिल्डिंग में खेलने जाता था मैं, और वहां हमारे पक्का खेल हुआ करता था कि वहां पे सुबह सुबह एक फल वाला फल बेचने आता था।
0: ओहो।
1: तो हम यूं करते थे कि वो जैसे ही अंदर चला जाए बिल्डिंग के, तो हम में से कुछ बच्चे जो है वो पैराफिट पे उतर के आते थे उस एंट्रेंस के।
0: अच्छा,
1: है ना? और जैसे वो बाहर आता था तो उसकी टोकरी में से हम फल उठा लेते थे ऊपर से, और उस बेचारे को पता भी नहीं चलता था कि दो केले गायब हो गए या दो संतरे नहीं रहे। तो हम फिर बड़े मजे से खाते थे। तो ऐसी बहुत सारी शरारतें थी बचपन में
0: जी।
1: उस वक्त पेड़ भी काफी हुआ करते थे, फिर वो बेर के झाड़ के पास जाके बेर गिराना, बिल्डिंगों पे चढ़ना, कूदना, पालना, वो सारी मस्तियां तो की है बचपन में
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: ऐसा
0: जी।
1: लेकिन मैं शहर का बच्चा रहा तो गांव की यादें जो खूबसूरत होती है वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी दोस्तों की यादें हैं, बहुत सारे प्यारे लोगों की यादें हैं।
0: बहुत खूब,
1: लेकिन मेरे ख्याल से बहुत पर ही हो गया।
0: बहुत खूब, बहुत प्यारी, ये होता ही है साहब। तो आगे बढ़ते हुए बस अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की कोई गजल हमें बता दें जो हम अपने दोस्तों को सुनवा सकें।
1: जी वैसे तो बहुत सारे हैं पसंदीदा गायक, लेकिन ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब गजल की बात आती है तो दो नाम तो सामने आते ही है, तो गुलाम अली साहब का है
0: जी,
1: और एक जगजीत सिंह साहब का है
0: जी। बिल्कुल,
1: तो मेरे पसंदीदा गायकों में ये दोनों आते ही है
0: जी,
1: है ना? और मैंने इस तरह चुनने की कोशिश की है जो आप आसानी से बजा सके, मेरे भी पसंद के हैं वो गाने
0: जी।
1: तो देखिए गुलाम अली साहब ने गजल गाई है जो हसरत मोहानी साहब की लिखी हुई है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो
0: जी।
1: चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद,
0: क्या बात है, क्या
1: हमको
0: बात है?
1: अब तक आशिकी का वो
0: जमाना याद है।
1: अगर ये गजल सुना सके तो बड़ी
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। आइए दोस्तों सुनते हैं नवीन जी के हुक्म पर ये बहुत ही प्यारी सी गजल गुलाम अली साहब की गाई हुई।

0: तो बहुत ही प्यारी गजल के बाद नवीन जी आगे बढ़ते हुए मैं एक बार फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी एक और प्यारी सी गजल हमें सुनाएं।
1: जी जरूर सर। मैं ज्यादातर ऐसे कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो गजलें सुनाऊं इसके बाद की करूंगा कोशिश की जो पसंद की जाती है बहुत ज्यादा।
0: जी जी
1: तो उससे लोग जुड़ पाएंगे सुनने वाले, है ना।
0: जी।
1: एक मेरी गजल है, दूसरी छोटी बहन की गजल है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रही है, पसंद की जाती है, और जब भी मैं खड़ा होता हूं तो मुझे एक रिक्वेस्ट आती है कि ये सुनाई जाए।
0: क्या बात,
1: सुनिएगा, लुत्फ उठाए इसका। इसकी नदीम जो है बहुत अलग है और उसका ख्याल बहुत अलग है।
0: जी स्वागत है इरशाद।
1: सुनिए। ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर।
0: जी।
1: ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर, जाने क्या क्या टंगा है खूंटी पर।
0: ओहो।
1: नींद आने पर आंख पहनेगी।
0: जी।
1: अब सुनिएगा खूंटी पर क्या क्या टंगा।
0: जी।
1: नींद आने पर आंख पहनेगी वो जो सपना टंगा है खूंटी पर।
0: ओहो क्या बात है, क्या बात है।
1: शुक्रिया। नींद आने पर आंख पहनेगी वो जो सपना टंगा है खूंटी पर।
0: जी।
1: धूप की राह देखता हूं मैं।
0: जी।
1: मेरा साया टंगा है खूंटी पर।
0: ओ ओके।
1: धूप की राह देखता हूं मैं, मेरा साया टंगा है खूंटी पर। अब ये शेर सुनिएगा कि एक बस्ता टंगा है एल्बम का।
0: जी।
1: एक बस्ता टंगा है एल्बम का, एक जमाना टंगा है खूंटी पर।
0: एक जमाना टंगा है।
1: एक जमाना टंगा है खूंटी पर।
0: बहुत खूब।
1: और ये शेर देखिए कि तुमने वादे को टांग कर रखा।
0: जी।
1: तुमने वादे को टांग कर रखा, अब भरोसा टंगा है खूंटी पर।
0: वाह वाह वाह।
1: तुमने वादे को टांग कर रखा, अब भरोसा टंगा है खूंटी पर।
0: बहुत खूब।
1: और इस तरह के लोगों से हम मिलते ही हैं, तो उन पर एक शेर है कि उसके चेहरे पे एक खूंटी है।
0: जी।
1: उसके चेहरे पे एक खूंटी है और मुखौटा टंगा है खूंटी पर।
0: ओ माय गॉड।
1: उसके चेहरे पे एक खूंटी है और मुखौटा टंगा है खूंटी पर।
0: बाप रे बाप, क्या बात है, क्या बात
1: और,
0: है।
1: और आखिरी शेर यू है कि काम खूंटी से क्या उतारोगे।
0: जी।
1: काम खूंटी से क्या उतारोगे जब इरादा टंगा है खूंटी पर।
0: वाह।
1: काम खूंटी से क्या उतारोगे जब इरादा टंगा है खूंटी पर।
0: क्या
1: ध्यान मेरा टंगा है खूंटी पर, जाने क्या क्या टंगा है खूंटी पर।
0: माय गॉड, बहुत खूबसूरत साहब, बहुत खूबसूरत, बहुत ही लफ्जों के साथ, बहुत ही जबरदस्त कारीगरी, जो कलाकारी लफ्जों के साथ आपने दिखाई साहब, मजा आ गया। यही तो होता है शायरों के साथ, बस यही तो खूबसूरती है कि उनको लफ्जों को इस्तेमाल करना आता है, किस तरीके से वो अपनी भावनाओं को, लोगों की भावनाओं को अलग तरीके से पेश कर देते हैं, तो नजारा ही बदल जाता है।
1: बहुत शुक्रिया।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। खूंटी का इतना खूबसूरत इस्तेमाल तो पहले कभी किसी ने सोचा भी ना होगा।
1: जी, ये बहुत पसंद की जाती है, ज्यादातर युवाओं में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है ये गजल।
0: बिल्कुल सही फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो नवीन जी, ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए बस एक छोटा सा सवाल, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप जैसे शायर से तो मुझे बहुत ही खूबसूरत सा जवाब मिलने वाला है इसका। फर्ज कीजिए अगर आपको आपकी तीन इच्छाएं पूरी कर देने वाला जिन्न कहीं से मिल जाए, तो क्या तीन इच्छाएं हैं आपकी?
1: मैं कहूंगा आपके जैसे दो और मिल जाए।
0: ओह माय गॉड। भाई वाह, भाई वाह, बस बस बस इसी तरीके के जवाब का इंतजार कर रहा था मैं। ओह गॉड।
1: एक शायर का जवाब नहीं, तो एक कंपनी के जवाब।
0: तो एक शायर का जवाब भी बताइए ना सर।
1: मैं कहूंगा कि भाई आप मुझे तीन इच्छाएं क्या देंगे, आप पूछिए आपकी तीन इच्छाएं, मैं देता हूँ आपको।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: जिंदगी में सब मिल चुका है। मैं कहना चाहता था कि जिंदगी में भगवान ने सब कुछ दे दिया है
0: जी,
1: मेरी
0: जी,
1: कोई इच्छा अधूरी आज तक छोड़ी ही नहीं है
0: जी जी।
1: ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो या इस फोरम में मैं अपने अपने भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनके सामने कि वो मुझ पर इतने मेहरबान रहे हमेशा।
0: बहुत खूब साहब, बहुत खूब। और जो सबसे पहले बात आपने कही वो भी बहुत ही प्यारी है कि जिनको आप ही कहेंगे कि देख भाई तू सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है, शायद किसी ने तेरी इच्छा तो कभी पूछी ही नहीं, चल तू बता तेरी इच्छा क्या है।
1: बिल्कुल, शायद मैं पूरी करता हूँ।
0: बहुत बहुत खूब। अरे बस सर, वो तो रोता रोता गीला गीला होके गिर पड़ेगा। वाह वाह, क्या कहा है। तो अब फिर से आपके पसंदीदा किसी गजल गायक की हमें गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवा दें।
1: जी जरूर, ये तो आप मुझ पर उपकार कर रहे हैं ऐसी गजलें सुना के, और दिनों के बाद सुन रहा हूं मैं भी, मौका नहीं मिलता
0: है। जी
1: तो जगजीत सिंह साहब की तरफ आते हैं
0: जी।
1: वैसे आदमी साहब की गजल उन्होंने गाई थी एक फिल्म के लिए, अर्थ फिल्म के लिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या क्या गम है जिसको छुपा रहे हो।
0: बहुत बहुत संजीदा
1: गजल सुना सके,
0: बहुत ही संजीदा, बहुत ही खूबसूरत गजल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं नवीन जी की फरमाइश पर ये प्यारी सी गजल जगजीत साहब की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए नवीन जी, मैं फिर से आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक गजल हमारे श्रोताओं को और मुझको और सुना दीजिए।
1: जी जरूर। देखिएगा एक ये थोड़े से दकीक कहते हैं, इससे कि कठिन उर्दू अल्फाज का इस्तेमाल किया हुआ, लेकिन मैं अर्थ बताकर उसका रसभंग नहीं करूंगा।
0: जी
1: सुनने वाले समझ जाएंगे विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट।
0: जी
1: सुनिएगा कि मतलब यूं है कि घर में कुछ और इजाफा हुआ तामीर के बाद।
0: जी, जी
1: ये वैसे मैं वजाहत यही करता हूँ लेकिन यहाँ कर सकता हूँ, ये खुदा से अल्लाह से भगवान से कहा गया है। ये अशार जो उनसे कहे गए है कि घर में कुछ और इजाफा हुआ तामीर के बाद, एक दीवार बनी थी तेरी तस्वीर के बाद।
0: क्या बात है।
1: घर में कुछ और इजाफा हुआ तामीर के बाद, एक दीवार बनी थी तेरी तस्वीर के बाद, और ख्वाब लगता हूं तो फिर देख मुझे लुत्फ उठा।
0: जी
1: ख्वाब लगता हूं तो फिर देख मुझे लुत्फ उठा, मैं दिखाई नहीं दूंगा तुझे ताबीर के बाद।
0: ताबीर के बाद। जी बहुत खूब।
1: कुछ घड़ी रख दे कहीं दूर जरा लौह कलम।
0: जी
1: कुछ घड़ी रख दे कहीं दूर जरा लौह कलम, आलम वजद रहेगा नहीं तहरीर के बाद।
0: बहुत खूब।
1: बाद जंजीर के भी मैं न रिहा हो पाया।
0: जी
1: बाद जंजीर के भी मैं न रिहा हो पाया।
0: जी
1: पांव लोहे के हुए थे मेरे जंजीर के बाद।
0: ओह माय गॉड। ओके बहुत खूब।
1: बाद जंजीर, बहुत शुक्रिया। बाद जंजीर के भी मैं न रिहा हो पाया, पांव लोहे के हुए थे मेरे जंजीर के बाद। और ये शेर आखिरी है इस गजल का, जंग के बाद यहाँ अमन भी तो आएगा।
0: जी
1: जंग के बाद यहाँ अमन भी तो आएगा, हल चलाना भी सिखाना मुझे शमशीर के बाद।
0: शमशीर के बाद। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब,
1: बहुत शुक्रिया गोविंद साहब। जंग के बाद यहाँ अमन भी तो आएगा, हल चलाना भी सिखाना मुझे शमशीर के बाद।
0: क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो शास्त्री जी की जय जवान जय किसान वाली कहानी हो गई कि साहब शमशीर चलाने के बाद हमें हल चलाना भी सिखाना, क्योंकि एक ही रोल में इंसान इस दुनिया में नहीं रहता, कई रोल बदलता है, कई चेहरे बदलता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, अकाउंटेबिलिटीज होती हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, और हम सब जिम्मेदारियों को बहुत खूबसूरती से निभाते हैं इस दुनिया में। शमशीर अपनी जगह है और हल अपनी जगह है। बहुत खूब, क्या कहा है साहब, मजा आ गया।
1: बहुत शुक्रिया।
0: तो नवीन जी, आगे बढ़ते हुए एक फिर से मासूम सा सवाल, आपका आपका सबसे पसंदीदा खाना क्या है और क्यों?
1: खाने तो बहुत सारे पसंदीदा है। I'm a bit of a foodie, rather I was before I had a bit of a cardio issue. बड़ा अजीब सा खाना है जो मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा है, शायद इसलिए कि मेरी माँ ने बचपन से मुझे वो खिलाया था।
0: जी
1: उस डिश को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन मैं बताता हूँ कि जो राइस होता है
0: जी,
1: उसमें थोड़ी सी क्रीम डाली जाती है दूध की
0: जी,
1: और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है
0: जी,
1: और उसे मिक्स करके मेरी माँ मुझे दिया करती थी।
0: अरे वाह।
1: तो चावल के साथ में थोड़ा सा दूध का क्रीम और थोड़ा सा नमक, बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन था, लेकिन लोग ट्राई करें घर में, है ना।
0: बिल्कुल,
1: चावल हो बहुत ज्यादा सूखा हुआ नहीं हो, थोड़ा सा गीला सा हो,
0: जी जी जी जी,
1: पका हुआ, और इसमें मिक्स करके आप खाए, देखिए बड़ा मजा आएगा आपको।
0: कमाल है, बहुत खूब, बहुत खूब। बिल्कुल प्रिसाइसली ये इंग्रेडिएंट्स तो नहीं, लेकिन बचपन में और अब भी कभी कभी थोड़ा सा गीला चावल जो होता है, जैसे आपने फरमाया, उसमें हम लोग घी डाल के और फिर नमक मिर्च डाल के खा लेते हैं बस। तो
1: ये भी ट्राई करूंगा।
0: हाँ, क्रीम की जगह घी हो जाता है और कुछ नहीं, और अमेजिंग अमेजिंग टेस्ट आता है साहब, मजा आ जाता है। जब कुछ ज्यादा पकाने की इच्छा ना हो या मैडम की ज्यादा पकाने की इच्छा ना हो, तो हम लोग बहुत सिंपल तरीके से एक एक कटोरी इस तरीके से चावल खा के खुश हो जाते हैं। क्या बात है।
1: जी।
0: सिंप्लिसिटी इन लाइफ ऑलवेज इज ब्यूटिफुल एक्चुअली. हम लोग जबरदस्ती उसको बहुत सारे जामा पहना के बहुत सारी लाइटें लगा के उसे कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं. देखा जाए तो वो
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: बड़ी सादगी वाली चीजें बड़ी खूबसूरत होती हैं. बहुत खूब बहुत
1: मैं क्या बात कहना चाहूंगा छोटी सी आपने जी, जी, बात छीड़ी है तो उसपे
0: प्लीज प्लीज
1: कि हम लोग लाइफ ओरिएंटेड कम होते जा रहे हैं और लाइफ स्टाइल ओरिएंटेड ज्यादा होते जा रहे हैं.
0: वाह
1: ये है
0: क्या बात है. बिल्कुल सही बात है सर. हम स्टाइल ज्यादा मारने लगे हैं और जीने कम लगे हैं. क्या बात है. बढ़िया बढ़िया बहुत खूब बहुत खूब. तो सर आगे बढ़ते हुए मैं फिर से आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने किसी पसंदीदा गजल गायक की हमें गजल बताएं जो हम अपने दोस्तों को सुनवाएं.
1: जी तो तलत अजीज साहब की तरफ आते हैं.
0: क्या बात है.
1: गजल है कि मखदूम मोहिद्दीन साहब जो थे उनकी लिखी हुई गजल है.
0: जी
1: बहुत सारे गजल गायकों ने गाई है. तलत अजीज साहब ने बहुत अच्छी धुन पे से गाया था कि चिड़छिड़ी रात फूलों की.
0: क्या बात है.
1: रात है या बारात फूलों की. तो ये गजल अगर आप सुना सके तो
0: बहुत ही प्यारी गजल साहब. बहुत ही प्यारी गजल. बिल्कुल बिल्कुल आपका हुक्म सर आंखों पर. आइए दोस्तों सुनते हैं तलत अजीज साहब से उनकी प्यारी सी ये गजल नवीन जी की फरमाइश पर.

0: बहुत खूब नवीन जी, आपसे फिर गुजारिश करूंगा, मन नहीं भर रहा है, एक गजल और सुना दीजिए।
1: जी बहुत शुक्रिया, सुनाता हूँ। ये गजल भी जो है सिंपल सी गजल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। ज्यादातर मैं इसी से इख्तिताम करता हूँ अपनी हर पेशकश का, मुशायरों में कही या नसीहतों में कही, कारण आपको आखिरी शेर में पता चल जाएगा। मैं मोहब्बतों का शायर जाना जाता हूँ, मैं कौमी यकजहती का शायर जाना जाता हूँ। बहुत सारी जगह
0: इरशाद,
1: तो सुनिएगा ये गजल, मतलब देखिए और फरमाया कि नमी हो जिसकी आंखों में
0: जी
1: वो बंजर हो नहीं सकता।
0: ओहो, ओके।
1: नमी हो जिसकी आंखों में वो बंजर हो नहीं सकता, जिसे मिट्टी से निस्बत हो वो पत्थर हो नहीं सकता।
0: बहुत खूब।
1: वो साहिल हो नहीं सकता तलातुम का जिसे हो डर, जो साहिल से न टकराए समंदर हो नहीं सकता।
0: समंदर हो नहीं सकता, क्या बात है।
1: न छेड़े बादबां को जो नहीं पतवार से उलझे,
0: जी
1: न छेड़े बादबां को जो नहीं पतवार से उलझे, किसी कश्ती को वो तूफान मयसर हो नहीं सकता।
0: मयसर हो नहीं सकता, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत
1: वो बहुत शुक्रिया। वो फिर एक लम्ज से, खुशबू से या आहट से होता है।
0: जी,
1: लम्ज का मतलब टच।
0: जी,
1: वो फिर एक लम्ज से, खुशबू से या आहट से होता है, जो जादू सिर्फ नजरों से उजागर हो नहीं सकता।
0: वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।
1: और ये शेर देखिए बतौर खास कि सुकून हो, प्यार हो या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो।
0: जी,
1: तीन तीनों के बारे में कहा है कि सुकून हो, प्यार हो या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता।
0: हो ही नहीं सकता, क्या बात है, क्या बात है। वाह,
1: बहुत शुक्रिया। सुकून हो, प्यार हो या फिर वो चाहे खुद खुदा ही हो, अगर भीतर नहीं है तो वो बाहर हो नहीं सकता। और ये शेर आखिरी है कि जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत।
0: जी,
1: जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, पर उसका हद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता। जमाने भर की लाशों पर भी हो जाए खड़ी नफरत, और उसका कद मोहब्बत के बराबर हो नहीं सकता।
0: हो नहीं सकता, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गजल साहब, मजा आ गया।
1: बहुत शुक्रिया।
0: नफरत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो जाए, मोहब्बत के बराबर तो कभी पहुंच ही नहीं सकती, क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नवीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्यारी सी गजल के लिए। बस ये एक सवाल जो मेरा फेवरेट सवाल है, किसी भी बातचीत में मैं ये जरूर पूछ लेता हूं, क्योंकि इस सवाल को पूछने के बाद मैं अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करता हूं कि जो साहिबान ने जो जवाब दिया, क्या मैं उसके लायक हूं भी, या मेरे लिए वो कुछ नए रास्ते खोलता है क्या। सवाल ये है सर
1: जी,
0: कि अगर मैं किसी को आपके बारे में बताऊं तो आप क्या चाहेंगे कि मैं आपका परिचय उनको कैसे दूं?
1: मैं पहले ही कह चुका हूं ये बात।
0: जी जी, आप जवाब वैसे पहले दे चुके हैं। वो एक शेर दोबारा सुना दीजिए, पर तो उस

0: पूछी जाती है तो लोग कहते हैं कि मैं कहूंगा तो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं शायर हूं, या मैं 57 साल की उम्र में हूं, या मैं ये हूं, या मैं इसका बेटा हूं, मैं ये पहचान नहीं हो सकती। आप अंदर क्या है पहचान तो वो है ना, बाहर क्या है वो पहचान किसी को।
1: बहुत खूब सर, बहुत खूब।
0: तो अंदर अगर आप बच्चे हैं तो बताना है कि भाई आप बच्चे हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया सर। एक बुक मैंने पढ़ी काफी समय पहले हो गया, राइटर का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मूडी करके, और बुक का नाम है द आई फैक्टर, द आई फैक्टर। तो उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बिल्कुल बिल्कुल वही पूछा जो अभी अभी आपने कहा कि कोई किसी से पूछता है आपकी पहचान के बारे में तो लोग कहते हैं कि जी मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं लॉयर हूं, या मैं इंजीनियर हूं, या मैं पॉलिटिशियन हूं, या मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, या मैं रेडियो जॉकी हूं। बट ये सारे के सारे चीजें आप नहीं हैं, ये वो काम है जो आप करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये वो काम है, ये आपकी पहचान नहीं हो सकते। अभी आपसे आपका काम हटा लिया जाए तो फिर आप क्या हैं? तो आपको अपने जमीर के, अपने शख्सियत के अंदर झांक कर देखना ही होगा, तब आप पाएंगे कि एक आप छोटे से बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं जो खेलना चाहता है। आप शायद किसी एक अच्छे से बच्चे के पिता हो सकते हैं। पिता होना काम नहीं होता, पिता होना पहचान होता है। बिल्कुल सही साहब, बहुत ही प्यारा सवाल और बहुत ही प्यारा जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी। चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक गजल हमें और सुना दीजिए।
0: जी जरूर। सो ये देखिएगा, ये गजल है, कैलाश जोशी साहब है दिल्ली से, इन्होंने इसको धुन पर बांधा, लेकिन मैं धुन पर नहीं सुनाऊंगा, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, आपको तहत नहीं सुनाऊंगा ये गजल
1: जी।
0: लेकिन इससे कुछ कुछ अशआर अच्छे बन पड़े हैं, मुझे विश्वास ये सुनने वालों को पसंद आए।
1: जी जी जरूर।
0: इसका मतलब यू है कि चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम।
1: अच्छा जी जी।
0: चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे हम।
1: ओहो, क्या बात है।
0: देखिएगा इसमें कि चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे हम।
1: जी।
0: और ये शेर देखिए कि अ परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, रानाई मतलब खूबसूरती
1: जी।
0: अः परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, तेरे कहने से भी सयाद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात है।
0: अः परिंदे तेरी रानाई तो परवाज में है, तेरे कहने से भी सयाद नहीं होंगे हम। और ये देखिएगा कि अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने
1: जी,
0: अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने, और कहते हैं उन्हें याद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात है।
0: अनमने से वो पलटते हैं हमारे पन्ने, और कहते हैं उन्हें याद नहीं होंगे हम। और ये शेर बतौर खास देखिएगा गोयल साहब की, सिर्फ औजार नहीं बात जुनून की भी है
1: जी,
0: सिर्फ औजार नहीं बात जुनून की भी है, सिर्फ तेशे से ही फरहाद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात।
0: सिर्फ औजार नहीं बात जुनून की भी है, सिर्फ तेशे से ही फरहाद नहीं होंगे हम। और इम्तिजाज अपने अनासर का यगाना ठहरा, इसमें जरा थोड़े दकीक कठिन शब्द इस्तेमाल है, उनका अर्थ बताऊंगा। इम्तिजाज का मतलब होता है मिश्रण, अनासर का मतलब पंचतत्व जो होते हैं उन्हें कहा जाता है, और यगाना मतलब यूनिक। इम्तिजाज अपने अनासर का यगाना ठहरा, फिर से शायद कभी ईजाद नहीं होंगे हम।
1: ओहो।
0: इम्तिजाज अपने अनासर का यगाना ठहरा, फिर से शायद कभी ईजाद नहीं होंगे हम। चाहने से तेरे आबाद नहीं होंगे हम, इतनी आसानी से बर्बाद नहीं होंगे हम।
1: क्या बात है। मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इतना हाई है कि कुछ भी कर लो बर्बाद नहीं होंगे हम। मुझे याद आ रही है इस बात पे, कुछ समय पहले मैंने अमिताभ बच्चन साहब की आवाज में एक उन्होंने पढ़ा था, तो वो YouTube पर भी बहुत आराम से अवेलेबल है, जहां पर उन्होंने बोला था कि

0: कितने भी कंकड़ फेंकोगे मैं चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा, मुझे कब तक रोकोगे। बहुत खूब, बहुत खूब उन्होंने वैसे ही। तो आपकी जो ये गजल रही बहुत भारी भरकम, बहुत दिल को छू जाने वाली, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस गजल को हम हफ्ता दस दिन सुन लें तो कॉन्फिडेंस की कमी तो हमें जिंदगी भर शायद कभी हो नहीं सकती। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। नवीन जी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे प्रोग्राम में आए, आपसे बातचीत की, आपकी सुलझी हुई बातें, नो नॉनसेंस बातें, लेकिन बहुत जज्बाती, बहुत प्रॉमिसिंग, बहुत मोटिवेटिंग, और फिर आपकी गजलें बिल्कुल साफ सुथरी और मैसेज के साथ। मजा आ गया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंंक यू
0: सर। दोस्तों आज शाम गजलों के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, कल नई गजलें लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा आपके पास। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।

0: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम। आपनू रेडियो आपड़ी बातें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का कार्यक्रम खेती बाड़ी में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और बड़े सौभाग्य की बात है कि झाबुआ जिले में और झाबुआ जिले का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम अब स्टार्ट हो गया है, शुरुआत हो गई है इसकी। और सबसे खुशी की बात है कि यहाँ के किसानों के लिए ये वरदान साबित हो रहा है, खासतौर पर उन किसानों के लिए जहाँ पर जानकारी का अभाव रहता है और जानकारी उन तक नहीं पहुंच पाती है।
2: जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने साथियों को, किसान साथियों को खेती किसानी से जुड़ी बातचीत को लेकर आते हैं और खास तौर पर उन किसान साथियों को छोटी छोटी बातों पर हम नजर डालते हैं, याद दिलाते हैं कि हमारे किसान साथी किस तरीके से नई पद्धति से कैसे खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए झाबुआ जिले को तो यहाँ पर पथरीला इलाका है और ऐसे में हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि एक फसल बोते हैं और दूसरे फसल बोने के बाद वो यहाँ से पलायन कर जाते हैं और मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं। एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ की जो मिट्टी है, उपजाऊ शक्ति इसकी बहुत कम है। और सबसे पहले हम अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं कि यदि आपको लगता है कि हमारे जमीन में अब उर्वरा शक्ति कम होती चली जा रही है तो तत्काल अपने नज़दीकी जो कृषि विभाग है या केवीके है वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए। क्योंकि वैज्ञानिक विधि से यदि आप खेती बाड़ी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि खेती में अधिक मुनाफा होगा। क्योंकि यदि देखा जाए कि बरसात के मौसम में यहाँ पर कपास की खेती अधिकतर की जाती है, सोयाबीन की भी खेती की जाती है। ऐसे में किसान साथी, क्योंकि अगर सोयाबीन की बात करें और कपास की बात करें तो सोयाबीन में भी काफ़ी पानी लगते हैं और पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा किल्लत है। तो कुछ मुख्य बातें हैं जो अपने साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं। क्योंकि अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि कैसे, कब बरसात का समय आए, बरसात की मौसम आए और कब अपनी खेती में हम बोनी कर सके। खरीफ की फसलों की तैयारी करने से पहले किसान साथी सबसे पहले अपनी मिट्टी की जांच कराएं, यानी मिट्टी परीक्षण कराएं, साथ साथ में उसको उपजाऊ बनाने के लिए पहले तो गहरी जुताई करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ साथ में जो आपके पास पहले जैविक खेती किया करते थे, यानी गोबर की खाद अपने खेतों में डाला करते थे, उससे जो नमी बनी रहती थी खेतों में और साथ में पानी भी बहुत कम लगता था, तो ऐसे में किसान साथी वही विधि फिर अपना सकते हैं, अपने खेतों की तैयारी कर सकते हैं, खाद का वो अपने खेतों में डाल सकते हैं, बीजों का चयन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम अपने खेतों में कौन से बीज ऐसे लगाएं जिससे कम पानी लगे और उत्पादन बहुत अच्छा हो। कुछ खरीफ फसलों की तैयारी कैसे करें, ऐसे में किसानों को सबसे पहले स्थान विशेष की मिट्टी, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं संसाधन के आधार पर कहां कौन सी फसलें करना उपयुक्त है, इसका ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, तो आपके पास केवीके है, साथ साथ में कृषि विभाग भी इसमें मदद करता है, सरकार की योजनाएं भी हैं, तो उसका भी हम लाभ ले सकते हैं। क्योंकि धरती के अनुकूलता के आधार पर खेती हमें अब करनी चाहिए। अगर हम राजस्थान की बात करें, क्योंकि राजस्थान में इस तरीके की समस्या जो आती है, तो राज्य के कुल खेती का योग क्षेत्र जो रहता है लगभग 20 मिलियन हेक्टर है, इसमें से केवल 20% भूमि सिंचित है और राजस्थान के किसानों को सिंचाई के विभिन्न स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें ट्यूबवेल, कुएं और टैंक भी शामिल है। कुछ भागों में नहरों से भी सिंचाई की जाती है, लेकिन खरीफ सीजन में मुख्यतः बरसात पर वो लोग आश्रित रहते हैं। तो खेत की तैयारी कैसे करें, तो सबसे पहले सूंड ज़्यादातर बरसात जो आधारित खेती है उसको किया जा सकता है, क्योंकि फसल कटने के बाद से अगले मानसून वाले के बीच में किसान साथी अपनी जमीन की जुताई भूरक्षण को रोकने की वजह से जुताई नहीं कर पाते हैं। तो अपने किसान साथियों की एक बात और महत्वपूर्ण याद रखने वाली है कि अपनी खेती का समतलीकरण अवश्य करा लें। साथ साथ में समतलीकरण के साथ पहले जो अपने तालाब हुआ करते थे, कुआं जो हमारी सिंचाई के साधन हुआ करते थे, आज दिन प्रतिदिन नष्ट होते चले जा रहे हैं, उनकी रख रखाव के लिए हमें कुछ प्रयास करना चाहिए। अभी शासन की ओर से एक मुख्यतः बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे मेड़बंदान के लिए योजना चलाई जा रही है शासन की ओर से, तालाब गहरीकरण के लिए योजना चलाई जा रही है। आपको जहां लगता है कि यहां पर पानी रुकता है वहां पर मेड़बंदान कर दें जिससे पानी रुका रहे और आपकी जमीन की नमी है वो बनी रहे, क्योंकि यदि वाटर लेवल को देखा जाए तो ऐसे ही मुख्य स्रोत रहते हैं जैसे कुआ हुआ, तालाब हुआ, पोखर हुए, इनमें यदि इनको रोका जाए, इनके रख रखाव किया जाए तो जाहिर सी बात है कि हम अपने खेतों में जो नमी की जो समस्या आती है वो खासतौर पर बनी रहेगी। प्राकृतिक रूप से खेत में उगाई बेकार की खरपतवार जैसे झाड़ियां हैं उसे खेत से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दें। साथ साथ में इस प्रक्रिया में किसान द्वारा खेत में से आकड़ी झड़ियाँ जो रहती हैं, साथ में पौधे जो बारिश में आने वाले आने से पहले काट दिए जाते हैं उसकी देख अच्छी तरीके से उसको काट दें जिससे खेत में हल चलाने में आसानी होगी, बीज भी अच्छी तरह से उगते हैं, क्योंकि बड़ी खरपतवार जैसे कांटों से हल चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है। आप मिट्टी के आधार पर फसलों का चयन हमारे किसान साथी किस तरीके से कर सकते हैं, तो जो रेतीली जमीन है जहाँ पर वहाँ पर बाजरा, तिल और अरंडी की खेती हमारे किसान साथी कर सकते हैं। भूरी रेतीली जमीन जहाँ पर है वहाँ पर मूंगफली, मूंग, मोट, बाजरा की खेती कर सकते हैं। लाल पीली जगह है जहाँ पर मूंग और मूंगफली की खेती वहाँ पर भी कर सकते हैं। लाल लोमी जमीन जहाँ पर है वहाँ मक्का, गन्ना की खेती कर सकते हैं। मिश्रित लाल काली मिट्टी है जहाँ पर कपास हमारे किसान साथी लगा सकते हैं। यदि यहाँ के झाबुआ जिले की मिट्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर लाल मिट्टी साथ साथ में काली मिट्टी भी पाई जाती है, तो ऐसे में कपास, मूंगफली और सोयाबीन की खेती हमारे किसान साथी कर सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो रहती है उसमें चावल, कपास, सोयाबीन की भी खेती कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो परंपरागत खेती आपकी चली आ रही, जो पुरखों द्वारा आप बोते चले जा रहे हैं, उस पर भी हमें सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि किस तरीके से हम एक आधुनिक तरीके से, आधुनिक पद्धति से हम अपने खेती करें जिससे हमारे किसान साथियों की आय में वृद्धि हो। बीजों का चयन महत्वपूर्ण रहता है, कृषि उत्पादन में बीजों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे बोगे वैसा काटोगे, यह मम किसानों की समझ में आना चाहिए। किसानों की उन्नत बीज का चयन करना चाहिए, बीज हमेशा अधिकृत दुकान से आपको लेना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला बीज सामान्य बीज की अपेक्षा 20-25% अधिक कृषि उपज देता है, अतः शुद्ध एवं स्वस्थ प्रमाणित बीज अच्छी पैदावार के आधार का होता है। तो ऐसे में हमें बीजों का चयन मुख्य रूप से हमें कर लेना चाहिए। फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र भी अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि देखा जाए कि पिछली साल आपने जिस खेत में मूंगफली बोई थी उस खेत में आप सोयाबीन बोइएगा, और जिस खेत में आपने सोयाबीन बोया था उस खेत में आप मूंगफली लगाइएगा, जिस खेत में आपने कपास लगाया था वहाँ पर मूंगफली करके देखिएगा। तो ये फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे किसान साथियों के लिए। फसल चक्र को अपनाना और प्रगतिशील किसान की एक पहचान भी होती है। भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने और अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए किसानों को फसल चक्र अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए जिससे खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। एक फसल एक ही खेत में बार बार नहीं होनी चाहिए, ये हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी बातचीत हो गई है, यहाँ पर हम गीत सुन लेते हैं और एक भीली गीत के साथ मनोरंजन भी करते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया भील 90.8 FM।

0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और महत्वपूर्ण आपने इस गीत को सुना, गीत का आनंद लिया। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और बातें हैं जो अपने किसान साथियों को बता देना चाहते हैं, क्योंकि अभी जैसे ही मौसम हमारे बरसात का आएगा, हमारे किसान साथी तैयारी में लग जाएंगे। अगली फसल का जो चुनाव उनको करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि मक्का और सोयाबीन, कपास, मूंगफली खेती अधिकतर की जाती है। तो ऐसे में किसान साथी फसल चक्र का जरूर इस्तेमाल करें। और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप नज़दीकी वहाँ पर कृषि विभाग में चले जाइएगा। साथ साथ में KBK भी है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी हमारे जो वैज्ञानिक बैठे हुए हैं उनसे अधिक संपर्क कर सकते हैं, अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो बताएंगे। और साथ साथ में आप अपनी मिट्टी का जो परीक्षण की अगर हमने शुरुआत में बात की थी, तो मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र यानी मृदा स्वास्थ्य केंद्र जो रहता है वहाँ पर जाकर, कृषि विभाग में ही रहता है, वहाँ पर जाकर अपनी मिट्टी का स्वास्थ्य का परीक्षण अवश्य कराएं। भूमि उपचार की अगर बात करें तो भूमि उपचार करने से भूमि की जनित रोगों और कीटों की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। दीमक एक मुख्य समस्या है, जहाँ भी दीमक का प्रकोप देखा जाता है वहाँ पर किनोलफास 1.5% चूर्ण बनाकर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि की बुवाई से पूर्व मिलाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथ साथ में दीमक को कम करने के लिए खेत में सूखे फसल अवशेष हटा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कच्चा खाद भी खेत में नहीं डालना चाहिए, जिससे दीमक में काफ़ी हद तक निजात मिल सकता है। तो बुवाई के तरीके आपको पता ही है, सामान्यतः बुवाई आज भी किसानों द्वारा छिड़काव विधि जो रहती है उससे की जाती है। साथ साथ में जिसमें सिंचाई, निराई, गुड़ाई में भी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो बुवाई की सर्वोत्तम जो विधि है कतार विधि रहती है, तो आप किसानों को सीड्रिल का उपयोग करना चाहिए, जिसमें हम बीज की उचित मात्रा डाल सकें और जिसमें कतार की कतार और पौधे के पौधे की दूरी निश्चित कर सकते हैं और विभिन्न कृषि कार्य में भी लाभदायक होता है। तो ये हमारे किसान साथियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आपको हम सीधा स्टूडियो ले चलते हैं, जहां पर हमने कुछ किसानों से बातचीत की, वो किस तरीके से फसल चक्र अपनाते हैं, किस तरीके से अपने खेतों में फसल करते हैं। आइए उनकी बातचीत हम सुन लेते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में बड़ी सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ सलिया जी डामोर जो कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ अजमेर जी हैं, वो भी कांकड़कुआ गांव के रहने वाले हैं, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तेर सिंह वाकला जी हैं, कांकड़कुआ गाँव से हैं, इनका खेती में काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है, इनके अनुभवों को साझा करते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं, खेती अगर झाबुआ जिले की बात करें, यहाँ के आसपास के इलाकों की बात करें, तो पथरीला इलाका है, पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। हम जानेंगे आज उन विषयों पर जानेंगे कि यहाँ पर हमारे किसान साथी किस तरीके से खेती कर सकते हैं। सबसे पहले सलिया जी, आपसे हमारा सवाल है कि यहाँ पर कौन कौन किस किस प्रकार की खेती की जाती है?
1: अभी हम खेती करने के लिए तैयारी कर रहा है, इसमें हमारे मक्का होती है और कपास, यह थुवर भी होती है, मूंगफली होती है, उड़द भी होते हैं। यह बारिश के समय में हमको यह फसल मिलती है, सोयाबीन भी होते हैं, यह फसल हमको मिलती है सर।
0: अच्छा सलिया जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, यहाँ पर पथरीला इलाका है, आप जानते हैं पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत भी है, हमने देखा भी है, किस तरीके से आप, किस अनुभवों के साथ आप खेती करते हैं?
1: बस खेती यही करते हैं हम, सुमा समय बारिश आते है, इसमें कोई रुका पानी, कोई कुआ है थोड़ा बहुत, उसमें यही करते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, एक दो पानी कपास को मिल जाते हैं, ज़्यादा पानी की आवत है ही नहीं।
0: अच्छा अच्छा। हाँ, अगर कपास की, सोयाबीन की अगर बात करें तो किस तरीके से, चूंकि आपका अनुभव हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा अनुभव है, काफ़ी सालों से आप खेती कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये कपास की खेती की जाती है, कैसे की जाती है?
1: ये सर, इसमें अपन को बोवनी करते हैं कपास की, इसमें अपन को निंदाई खोदाई करनी पड़ती है और खाद बीज अपन को ये करना पड़ता है, दवाई भी करनी पड़ती है, टाइम टाइम से खाद मिलते हैं इनको, ये यूरिया भी मिलते है, क्या बोलते हैं सुपरफास्ट और डीएफी कपास को, और मक्का तो यहाँ पर यूरिया खाद से ही पक जाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: हाँ, ये इनको डीएफी और पोटास खाद मिलते हैं कपास को, इनकी फसल डीएफी खाद से और दवाई से होती है।
0: अच्छा, सबसे पहला सवाल है कि आप किस तरीके से भूमि को तैयार करते हैं, जब कपास की खेती आप लगाते हैं किस तरीके से इसकी तैयारी करते हैं?
1: इसको अभी खेड़ाई जुताई कर रहे हैं
0: जी,
1: ये तैयारी कर रहा, अपन उसमें हल चलाया, उसके बाद अपन थोड़ा वखरा कर गेर के इनको थोड़ा कहना डेफा डेफी है या भाग तोड़ के थोड़ी कर तैयारी करेंगे, पानी बारिश को गिर गया तो इसके बाद अपन बोनी करनी है सर।
0: अच्छा, यहाँ पर किस किस प्रकार की मिट्टी यहाँ पर, चूंकि लाल भी मिट्टी है, किस किस प्रकार की कौन कौन सी यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है?
1: ये लाल भी है और काली भी है।
0: काली मिट्टी है,
1: काली हाँ, और इसमें भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: किसी किसी को भूरी मिट्टी भी है।
0: अच्छा, ढलान होने के साथ क्या क्या आपको खेती किसानी में समस्या आती है आपको?
1: ढलान में तो सर ये पानी की समस्या होती है, इसमें
0: कितने पानी लगते हैं कपास में?
1: कपास में बस ज्यादा पानी वाले कोई दो चार पानी कर देते हैं, नहीं पानी वाले तो बस एक दो पानी में हो जाता है,
0: एक दो पानी में हो जाता है कपास। कपास से कितना मुनाफा हो जाता है? यदि आपको किसान सुन रहे हैं तो कपास की खेती में बीज कहाँ से लाया जाता है और इससे पहले तैयारी क्या की जाती है उसकी?
1: इसमें बीज तो सर ये मिलते है काली बाजार से, हम लाते हैं कपास का बीज, और तैयारी इनकी है, अभी तैयारी में ही है, बैठा है लोग कर रहा है, कोई हर काम जो भी है जो छोड़ के खेती पे ही लग गया है, तैयारी कर रहा है, बारिश की समय आ रही है ऐसे करके।
0: अच्छा अच्छा,
1: ये तैयारी चल रही
0: है। अच्छा, खेती के अलावा यहाँ पर और क्या हमारे किसान साथी करते हैं, क्या करते हैं?
1: मजदूरी जाते हैं सर।
0: अच्छा, खेती करने के बाद मजदूरी करने के
1: अभी,
0: लिए
1: अभी लोग बाग अभी भी बाहर है।
0: अच्छा,
1: बारिश की समय है तो
0: आ जाते हैं,
1: तो कोई एक दो घर पे है, नहीं तो आने वाले है।
0: अच्छा,
1: कुछ चार महीना करते है और वापस दिवाली बाद बाहर चले जाते, दाड़ की दपोड़ी यही करते।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कपास की खेती में सर कितना फायदा आपको हो जाता है?
1: फायदा तो होता है सर, इस साल तो कपास का भाव भी थोड़ा ठीक रहा।
0: अच्छा,
1: तो इस साल तो फायदा लोगों का।
0: कितने महीने में फसल आ जाती है ये अपने लगाने के बाद?
1: ये लगाने के बाद तो करीब कपास को तो छह महीना हो ही जाते हैं।
0: अच्छा, जो किसान हमारे जैसे कपास नहीं करते, उनकी जानकारी नहीं है, उनको क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से इसकी बीजों की रुपाई की जाती है, किस तरीके से इसको लगाया जाता है?
1: इसको सर उसको लगाना पड़ता है, तैयारी करते हैं अपन कपास करते हैं तो इस जमीन को जब अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, खाद कई अपन ये गाय का ये खाद मिल जाते हैं, ये डाल देता है, इसमें कपास अच्छा बनता है
0: जी।
1: हाँ, इसमें ठीक रहता है।
0: अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, चूंकि अभी हम यूरिया और हम डीएपी की बात करते हैं, पहले जमाने में जो खेती की जाती थी वो शुद्ध गोबर की गाय के गोबर से या फिर जो जैविक पद्धति होती थी उससे हम खेती करते थे, अब क्यों, ऐसा क्या कारण हो गया है कि इसको बंद कर दिया है और इसी पे हम लोग आश्रित हो गए?
1: इसमें सर ये अभी थोड़ा माल मेवा से कम पड़ गया है।
0: हाँ, मवेशी।
1: हाँ, मवेशी तो कम है अभी। क्या है कि पहला तो है कि घर में मवेशी करना 20-15 एक एक घर में कहीं दो दो चार चार आठ आठ दस दस गाय रहती थी, अभी है ही नहीं।
0: क्यों नहीं है, क्या कारण है?
1: अभी क्या है, अभी थोड़ा सारा सरनेमान सब थोड़ी कमी है।
0: हाँ,
1: तो अभी नहीं है, बस एक दो बैल है, किसी के पास भैंस है।
0: अच्छा अच्छा,
1: सब ये कम है अभी।
0: जैसे छोटी छोटी जमीन है तो अभी भी आवश्यकता पड़ती होगी बैलों की, हल की या
1: तो,
0: बकर की?
1: वो तो पड़े ना सर।
0: अच्छा, और भैंस पालन या बकरी पालन इस तरीके का नहीं करते हैं किसान इसके अलावा?
1: करते ना सर,
0: करते हैं,
1: बकरी भी है, भैंस है।
0: कौन सी बकरी पालते हैं, किस तरीके से वो पालन पोषण उसका करते हैं?
1: बकरी तो सर ये देसी बकरी है,
0: देसी बकरी, फायदा होता है इससे?
1: हाँ, इससे होता है।
0: मुर्गी पालन करते हैं?
1: मुर्गी पालन तो ये देसी मुर्गा है घर पे।
0: अच्छा अच्छा, करते हैं।
1: हाँ, है ना।
0: अच्छा, अब जो समस्या जो आप कह रहे हैं कि कपास में हम लोग जैविक खाद यानी गोबर खाद का इस्तेमाल करते हैं, फिर हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल क्यों करते हैं, मतलब क्यों डालते हैं डीएपी यूरिया?
1: तो वो अभी क्या है सर, लगातार अपन ने डाल दिया तो ये खाद तो डाले बिना तो नहीं होते है।
0: अच्छा,
1: अब तो वो क्या है, खाने की अपन को आदत कुछ पड़ गई तो वो खाद डाले बिना तो होते ही नहीं फसल।
0: अच्छा अच्छा,
1: ऐसा है।
0: अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहेंगे आपके क्या अनुभव हैं खेती किसानी में, आप कितने वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं?
2: साल हो गया है।
0: 20 साल से खेती कर रहे हैं। कौन कौन सी आप फसल उगाते हैं, कैसे करते हैं?
2: मूंगफली
0: भी करते हैं।
2: अच्छा अच्छा, उड़द थोड़े करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, 10-15 किलो।
0: अच्छा कर देते हैं। इनको आवाज में हमारी समझ, मतलब समझ में नहीं आ रही, तो आप करो।
3: हाँ, तो फिर से स्टार्ट करो या कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करो? स्टार्ट यहीं से जो हमने सवाल पूछे।
0: हाँ ठीक।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ू रेडियो, आपड़ी बातें।
0: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है, हमारे स्टूडियो में हमारे किसान साथी बैठे हुए हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है और हमारे बहुत सारे किसान साथी इसको अच्छे तरीके से सुन भी रहे होंगे कि किस तरीके से झाबुआ जिले के हमारे किसान साथी कैसे खेती करते हैं, कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं अपनी खेती किसानी में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं और इसके बाद और भी हमारे साथी हमारे स्टूडियो में हैं, उनकी भी बातचीत हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो जाइएगा नहीं, सुनते रहिए झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भी 90.8 FM। अपना रेडियो, अपनी बात है।

0: है भाव माना क्यों भावावे
1: क्यों भावावे मतलब अजमेर जी हूँ तन एम पूछवा मांगू कि अपना लोग लेखों देखे थे ना कि आई हूँ मोवड़ी मतलब डोला कम लग्या से ते मुफड़ा कम आव है अने अपन आमला जरिक आमला है ना ते अपन गांव में एक एक कहीं ना झाड़ रहे या फिर झाड़ू देखी कहीं ना लेखा देखे से है केवी रहते
2: ना नौकरा है क्या करे से
1: है करे ते हूँ किरा है हूँ हूँ चर्चा में आवी रू के अपन हूँ पाकवानु से हूँ
2: तर हमड़ी नहीं से
1: कोई ना हमड़ी हाल
2: नहीं हमड़ी
1: अच्छा अपन सलिया भाई ते कई हमड़वा में आवी कि नहीं कहीं बात के हूँ कहीं नू धान पाक है कहीं नू लेखो देखना रहा हूँ कीरा है ना
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम
4: आपनू रेडियो आपड़ी बातें
3: रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी किसान साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और इस महत्वपूर्ण चर्चा को सुना और हम सभी किसान साथियों को जो हमारे स्टूडियो में उपस्थित थे उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहते हैं। और खासतौर पर ऐसे ही हमारे किसान साथी यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं आपको लगता है कि हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाना है तो जरूर हमारे स्टूडियो में आइएगा अपनी बात को रखिएगा क्योंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है आपके लिए है आपकी बात को रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण मंच आपके लिए बनाया गया है। तो साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी से जाने का आपके हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार। ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम
4: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें
3: ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 एफएम
4: आपड़ू रेडियो आपड़ी बातें।
3: नमस्कार साथियों रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। और हमारे किसान साथी कैसे हैं हमें आशा है कि हमारे किसान साथी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और घर पर अपनी तैयारी में लगे होंगे कि जैसे ही बरसात का मौसम आए तैसे ही हम अपने बीजों का जो उन्होंने रख के चयन करके रख लिया है और उनका वो अपने खेतों में डालकर अपने बीज की बोनी स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हम और आप देखते हैं कि ऐसे में हमारे किसान साथी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हम और आप जानते भी हैं कि अगर झाबुआ जिले की अगर बात करें तो यहां पर सीमित किसानों के पास सीमित जमीन है सिंचाई के

नहीं है, यानी सीमित साधन है, खासतौर पर पानी के संसाधन नहीं है आपके पास, खेती सीमित है, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, अपने नजदीकी कृषि विभाग में जाकर संपर्क करना होगा, उनसे पूछना होगा कि हम अपने खेतों में कौन से बीजों का चयन करें, कौन से ऐसे बीज हैं जिसमें कम पानी लगता है और उत्पादन अच्छा होता है। खासतौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में सबसे पहले अपने किसान साथियों को, क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं, एक उन्होंने अपनी बखराई कर भी दी है, यानी जो कहा जाता है गर्मियों की जुताई बहुत महत्वपूर्ण रहती है, तो हमारे किसान साथियों ने अपनी गर्मियों की जुताई कर भी दी है। अब किसान साथियों को क्या करना है, मिट्टी परीक्षण करवाना बहुत ज़्यादा आवश्यक रहता है, क्योंकि स्वास्थ्य की अगर बात करें, जब तक हम बीमार नहीं पड़ते हैं तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तब पता चलता है कि हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारी है। ऐसे ही हमारी भूमि रहती है, ऐसी हमारी जमीन रहती है, जब तक उसका परीक्षण नहीं कराएंगे, जब तक उसकी जानकारी नहीं उपलब्ध कराएंगे कि कौन से तत्वों की हमारी जमीन में कमी है, तब तक हमें पता नहीं लगेगा, और तब तक हम वही परंपरागत खेती जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग करते चले आ रहे हैं उसी ढांचे से हम करते चले आएंगे, और उससे जो समस्या आती है उस समस्या से हमारे किसान साथी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, सबसे पहले कि मिट्टी परीक्षण कराएं, सलाह लें कि आने वाले समय में हम कौन प्रकार के बीजों का चयन करें, किस तरीके से उपचार जो बीजों का होता है वो किस तरीके से हमें करना होगा, साथ साथ में अपने खाद बीज की भी व्यवस्था कर लें। जब हमने यहाँ पर बात की किसानों से तो पता लगा कि वास्तव में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्या है, लोगों को ये इसमें जो अगर फसल चक्र की बात करें तो फसल चक्र में वो खेती तो करते हैं लेकिन वही परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उत्पादन उनको बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसे में किसान साथी KBK यानी कृषि विज्ञान केंद्र पर जाकर सलाह ले सकते हैं या फिर कृषि विभाग में जाकर सलाह ले सकते हैं। यदि आपको वहां पर कहीं नहीं जाना है तो रेडियो टांडिया भील 90.8 FM 24 घंटे आपके लिए तत्पर रहता है, 24 घंटे उपलब्ध है, आप हमें फोन लगाकर बात कर सकते हैं, और यहां या फिर आपको लगता है कि रेडियो टांडिया भील जो गढ़वाल में उपस्थित है वहां पर आकर हमारे किसान साथी अपनी बात को रख सकते हैं। ऐसे ही हम गांव यहां पर पहुंचे, एक गांव में वहां के लोगों से जब हमने पूछा कि किस तरीके से आप खेती करते हैं, किस तरीके से आप बुवाई करते हैं, कौन कौन बीज आप अपने खेतों में लगाते हैं, तो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही परंपरागत खेती वो करते चले आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा समस्या है, पानी के पीने की समस्या है, खेती में पानी की समस्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, तभी तो यहाँ के किसान यहाँ से पलायन कर जाते हैं। उनकी बात हम जरूर सुनेंगे लेकिन बातचीत काफ़ी हो चुकी है, यहाँ पर एक वीली गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांडिया व्हील 90.8 FM, अपना रेडियो अपनी बात है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से वीली गीत को।

0: क्या रहता है, बीज लगाते हैं आपकी?
1: बीज लगाते सर।
0: बीज कैसे बोते हैं इसको?
1: उसको थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, ऐसे मक्का का करेंगे ऐसे नहीं, थोड़ा इतना इतना दूर रखेंगे और एक एक एक एक एक एक करके लगाएंगे।
0: अच्छा, हाथ से ही लगा,
1: हाथ से लगाते
0: लगते कि
1: नहीं? बीज लगाते सर हाथ से।
0: हाथ से बीज लगाते हैं पूरे खेत में? कितना बीज लगता होगा?
1: हाँ, कितना भी, 2-3 किलो भी, जो भी लगता सर। डोरी पहले लंबा कर लेते, उसके बाद निशाना बनाते, वहाँ जहाँ निशाना है उस जगह पे वो बीज लगाते।
0: अच्छा अच्छा, और पानी कितना लगता है इसमें?
1: पानी सर वही बरसात का ही,
0: बरसात का है। वैसे अगर बरसात नहीं हुई तो कितना पानी देना पड़ेगा?
1: तो कमी है सर पानी यहाँ पे, जब तक उसको बरसात से बड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद
0: यहाँ पे पानी की समस्या है,
1: बहुत समस्या सर,
0: पानी आता ही नहीं।
2: पानी पीने के लिए,
1: पानी पीने के लिए बहुत कमी है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
2: रात में उठ के जाना।
0: और जो अब खादों का इस्तेमाल होता है, जैसे अपन DAP और यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, पहले जो हम लोग देसी खाद का इस्तेमाल करते थे, अब क्यों हम लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं उसका?
1: ये पत्तियों के कारण ये कम हो गए सर।
0: क्यों कम हुआ है?
1: कम करते जा रहे हैं इनको लोग, बाग बढ़ गए पब्लिक, तो जैसे पहले इनको घूमने फिरने की जगह थी ज्यादा।
0: अच्छा।
1: उसको फिर से मतलब कर लिया उसको।
0: हाँ।
1: खेती करने लग गए।
0: हाँ।
1: तो इसीलिए कम हो गए सर ये, तो अपने आप कम हो गया सर।
0: अच्छा, अपने आप कम हो गए।
1: और DAP फिर और यूरिया से पौधा बढ़ता है।
0: हाँ।
1: और जल्दी मतलब तैयार करते।
0: अच्छा, यूरिया
1: अभी 2 बार लगा रहे थे, फिर अब लोग बाग 3-3 बार भी लगा रहे सर यूरिया।
0: अच्छा अच्छा, कपास का बीज कैसे मिलता है, मतलब कहाँ से आप लाते हैं और कितने रुपए किलो मिलता है?
1: इस साल थोड़ा महंगा है, यूं कह रहे सर, गए साल तो 750 की 250 ग्राम करके ला रहे थे हम।
0: अच्छा,
1: पैकेट आता 250 ग्राम का।
0: 250 ग्राम का पैकेट आता है, तो एक पैकेट कितने खेत में हो जाता है?
1: एक पैकेट सर करीब 1 बीघा।
0: 1 बीघा में एक पैकेट?
1: हाँ।
0: जिसके पास 4-5 बीघा खेत है तो वो 4-5 पैकेट लगेगा।
1: हाँ सर। हाँ।
0: और इसमें कितने दिन में ये पौधा तैयार हो जाता है कपास का?
1: 3 दिन बाद वो थोड़ा सा निकल जाते सर।
0: हाँ।
1: उसके बाद में बढ़ता जाता, फिर उसमें खाद बीज चालू रहता।
0: अच्छा, कितनी बार डालना पड़ता है ये खाद बीज आपको?
1: खाद तो 2-3 बार डालना पड़ता है, दवाई तो बार सर।
0: दवाई कितनी लगती?
1: दवाई तो गिनती नहीं होती सर।
0: अच्छा।
1: जैसे उसमें कीड़े लगते वैसे दवाई।
0: ऐसा क्यों? आपने यहाँ पर जो कृषि विभाग है या KBK है, वहाँ पर संपर्क नहीं किया कि क्यों कपास में हमारे कीड़े लगते हैं?
1: वहाँ पे किया सर, वो अलग देते हैं सर दवाई।
0: अच्छा, उससे फायदा हो जाता?
1: नहीं, उससे नहीं होता सर, इसीलिए फिर मार्केट से खरीदना पड़ा।
0: अच्छा, ये फिर आपको अगर कपास को देखा, 1 बीघा में आपने 250 ग्राम की पैकेट लगाई है, कितना अपन को मुनाफा हो जाता है?
1: 250 ग्राम का पैकेट अगर लगा है सर, तो अच्छा मेहनत आदमी कर ले, उसको देखभाल बढ़िया कर ले, तो पहुंच जाता सर करीब 50 के लगभग,
0: 50,000 के लगभग। ये 3 महीने में हो जाता?
1: हाँ,
0: 3 से 4
1: चार महीने में
0: 50,000 का।
1: 4 के बोर भी बढ़ जाता है, मतलब सियाला कह रहे, ये तो मतलब ये बरसात के टाइम में।
0: अच्छा, अच्छा।
1: बड़ा हो जाता पौधा, ठंड के दिन में वापस फिर लगने शुरू होता है।
0: अच्छा, और जैसे अब मक्का की प्रक्रिया क्या रहती है, मक्का बोने की, या फिर आप सोयाबीन, मूंगफली बोते हैं यहाँ पे?
1: बोते हैं सर, पर बहुत कम।
0: क्यों? मूंगफली तो सुना है कि पथरीले इलाका में, और खास तौर पर जो मिट्टी यहाँ की देखी है, लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, तो यहाँ पर अब काफी अच्छी पैदावार हो सकती है।
2: बड़ा किसान अच्छा होए, कोई तो खेती ज्यादा होए, वैसे वो ज्यादा भी बो सकता है।
0: इस तरीके का हम लोग वो कर भी सकते हैं कि नई पद्धति को। अभी क्या है कि हम लोग परंपरागत खेती करते चले आ रहे हैं। अभी क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताया कि हमें इस खेती को करना है, इस प्रकार की खेती करना है, वो ही हम उसी पद्धति पे जा रहे हैं। आजकल बाजार में नए नए बीज की उपलब्धता हो गई है, साइंटिस्ट हमारे पास उपलब्ध हैं, उनसे जानकारी लेते रहना चाहिए हमें बागवानी के ऊपर जोर लगाना चाहिए कि हमारे पास सीमित संसाधन है, सीमित खेती है, तो हम किस तरीके से बागवानी, तो ये हमारे कुछ विकल्प हो सकते हैं खेती को या किसान की आय को दुगनी करने के लिए। आपने इस तरीके का प्रयास नहीं किया?
1: नहीं किया सर, जो जैसे पुराने जो आदमी लगाते आ रहे थे वैसे वैसे हम चलते आ रहे। और पहले पुराने लोग तो खाद ये यूरिया और डीएपी नहीं लगा रहे थे सर, इसी से काम चला रहे थे
0: गोबर की खाद।
1: हाँ, गोबर के खाद से। फिर बढ़ते बढ़ते बढ़ते खाद बीज हम लगा रहे सर।
0: अच्छा, आपको लगता नहीं है कि ये खाद बीज से हमारी आम वो क्या नाम जो लागत थी वो उसमें बढ़ोतरी भी मतलब बढ़ गई?
1: हाँ, बढ़ गई है सर। और जिसमें कम पहले कम हो रहा था, अभी एक किलो अगर मक्का बो देंगे तो आराम से 2-3 क्विंटल हो जाते हैं।
0: 2-3 क्विंटल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसकी देखभाल किस तरीके से करते हैं?
1: देखभाल तो सर जैसे पौधा बाहर निकल जाता है उसके बाद देखभाल करना पड़ता है सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: क्या लग रहा है इसमें क्या
0: नहीं व्यवस्था है तो पानी की व्यवस्था? यहाँ पर पानी के लिए क्या क्या साधन है?
1: पानी के लिए सर वही बरसात का ही पानी है हमारे पास।
0: और जैसे अगर रबी की फसल अपन बोते हैं जैसे गेहूं हुआ?
1: हाँ, वो तो तालाब में से लाते हैं सर। इधर
0: कहाँ से लाते?
1: पास में है तालाब इधर।
0: अच्छा,
1: उससे लेते। और
0: यहाँ पर कुआ बावड़ी पहले जो तालाब हुआ करते थे आप, कुछ नहीं है?
1: नहीं है सर, यहाँ पे तो इतना गहरा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ऐसे गड्ढे कर रखे, उसमें थोड़ा पानी ऊपर से ही जो उसमें रहते उसी से ही थोड़ा बहुत ले लेते। नहीं तो
0: आपने ऐसा कभी समय देखा है कि मतलब यहाँ पे कभी की बरसात नहीं हुई है और लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं?
1: बरसात नहीं हो तो वही का वही रह जाएगा सर, खत्म ही हो जाएगा।
0: खत्म हो जाएगा
1: बरसात से ही।
0: पर ही नहीं?
1: हाँ सर,
0: यहाँ पर कुआ खोजते नहीं है?
1: मतलब नहीं है सर, नहीं है,
0: कुछ नहीं। हैंड पंप
1: किसी के पास है सर बोरिंग?
0: अच्छा अच्छा,
1: वो लगाते लेकिन हर आदमी के पास नहीं है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
4: रेडियो टांडिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। और हमारे किसान साथियों की इस बातचीत को सुना, वास्तव में बहुत मेहनत हमारे किसान साथी करते हैं लेकिन उनको सही मार्गदर्शन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। यदि हमारे किसान साथी हमारी बातचीत को सुन रहे होंगे तो आप यदि आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ पर संपर्क करें, तो यदि आपको लगता है कि हमें अधिक जानकारी की आपको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है तो आप रेडियो टांडिया भील पर आप आ सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। आपकी जानकारी हम जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं, KBK जो रहता है, साथ साथ में कृषि विभाग भी रहता है, उसमें हम किस तरीके से हमारे विषय विशेषज्ञ के साथ आपके सवालों का जवाब हम दिलवा पाएं। साथ साथ में आप यदि आपको लगता है कि आप सक्षम हैं, आप जागरूक हैं, तो आप डायरेक्टली KBK में जाकर उनसे बातचीत कर सकते हैं और जानकारी भरपूर ले सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे पास जानकारी रहेगी तो हम अपने खेतों में अच्छे बीजों का चयन करेंगे, अच्छे बीज लगाएंगे अपने खेतों में, जिससे हमारे खेती में उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी हो। अब एक बात जब बात आती है कि हमारे किसान साथी सिर्फ 3 प्रकार की खेती करते हैं, यानी 3 प्रकार की जो फसलें रहती हैं उनको लगाते हैं, चाहे वो सोयाबीन हो, मूंगफली हो, मक्का हो, और धान भी कहीं कहीं हमारे श्रोता साथी करते हैं, तैयारी स्टार्ट कर दी है, गर्मी की जुताई भी हो गई है, अब वो बरसात का देख रहे हैं कि बरसात कब हो और कब अपने खेतों में हम बुवाई कर सकें। लेकिन साथियों, इससे पहले हम कुछ जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहते हैं कि जिन किसान साथियों के पास सीमित जमीन है तो वो किस तरीके से अपने घर आंगन या पर छतों पर किस तरीके से छोटी बागवानी हमारे किसान साथी लगा सकते हैं, जिससे जो हम सब्जी बाजार से लेकर आते हैं उस बाजार से जो सब्जियां हम खाते हैं वो हमारे शरीर को भी नुकसान करती हैं, क्योंकि केमिकल भरी जो हम खाद हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं जो शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो आप किस तरीके से जैविक पद्धति से अपने घर आंगन या छत पर अपनी बागवानी को लगा सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पौधे हैं, कौन कौन से सब्जियों के ऐसे बीज हैं जिनका हम चयन कर सकते हैं अपनी छतों पर या घर आंगन में या अपने खेतों में लगा सकते हैं, सब्जी का मौसम भी चल रहा है और सब्जी के मौसम में हमारे किसान साथी अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। तो छोटे छोटे मौके हमारे किसान साथियों के पास, वो कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भरपूर अनुभव है, कई सालों का अनुभव है खेती किसानी का, और वो जानते हैं कि किस तरीके से बीज लगाना है, किस तरीके से वो करना है। बस आपको पद्धति की जो जानकारी का अभाव जो रहता है, वो जानकारी आपको रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम आपको उपलब्ध कराने जा रही है। लेकिन साथियों, इससे पहले हम सुनते हैं एक प्यारे से गीत को। बने रहिए आपके आरजे मनीष के साथ, सुनते रहिए रेडियो टांटिया व्हील 90.8 एफएम। अपना रेडियो अपनी बातें।

0: રૂપિયા ભીલ 90.8 FM આપણો રેડિયો આપણી વાતે
1: रेडियो टांटिया भील 90.8 FM सुनने वाले सभी किसान साथियों का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेती बाड़ी में। और अभी आपने महत्वपूर्ण बातचीत को सुना और साथ साथ में गीत को सुना। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जून माह में हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, यानी बागवानी लगा सकते हैं। खास तौर पर सब्जियों के बारे में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इस चर्चा को हम सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस चर्चा को।
2: जून के महीने में कौन सी सब्जी लगाएं? हमारी पहली सब्जी है मिर्च, जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं। मिर्च को लगाने के लिए इसके पौधे तैयार करने पड़ते हैं। पौधे तैयार करने के लिए आप अच्छी क्वालिटी के मिर्च के बीज खरीद सकते हैं, या फिर आपके घर में जो लाल मिर्च होती है उसके बीजों का इस्तेमाल भी आप पौधे उगाने के लिए कर सकते हैं। मिर्च के बीजों को लगाने के लिए आप किसी भी प्लॉट ट्रे या फिर गमले को लीजिए और इसमें मिर्च के बीजों को ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए। आधा से एक सेंटीमीटर गहराई पर मिर्च के बीजों को लगाकर इसमें पानी दे दीजिए। मिर्च के बीज से पौधे तैयार होने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। 20 से 25 दिन बाद इन पौधों को आप किसी बड़े गमले, जिसकी साइज 12x12 इंच हो, या उससे बड़े गमले में लगा दीजिए। लगभग 60 दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिलने लगेगी। मिर्च के पौधे को पानी कम और ज्यादा धूप की जरूरत होती है, इसलिए आपको मिर्च के पौधों को पानी कम देना है और उसे धूप वाली जगह पर रखना है। यदि आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके मिर्च के पौधे के सारे फूल झड़ जाएंगे और उनमें फल भी नहीं आएंगे। मिर्च के पौधे जिस गमले में लगे हैं उसकी जब ऊपर की मिट्टी पूरी तरह से सूखी दिखे तभी पानी दें। साथ में यदि कोई पौधा रोगयुक्त दिखे तो उसे तुरंत हटा दें या फिर किसी ऑर्गेनिक दवा जैसे कि नीम के तेल का छिड़काव करें। मिर्च के पौधे को हर महीने खाद की भी जरूरत होती है। आप मिर्च के पौधे में बर्मी कंपोस्ट, किचन बेस्ड कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का समय समय पर बदल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मिर्ची की किस्में भी बहुत अधिक होती हैं, तो आप अपनी पसंद के अनुसार मिर्च की अलग अलग किस्मों में से अपनी फेवरेट वेराइटी को गमले में लगाने के लिए चुन सकते हैं। दोस्तों, दूसरी हमारी सब्जी है बैगन, जिसे हम एग प्लांट या ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं। बैगन एक ऐसा पौधा है जो लगभग होम गार्डन में साल भर आपको बैगन देता रहता है। बैगन के पौधे भी बीज से ही उगाए जाते हैं और आप अभी जून के महीने में भी बैगन के पौधे तैयार कर सकते हैं। बैगन के पौधे तैयार करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हमने मिर्च के पौधे तैयार किए थे। आपको किसी भी गमले में बैगन के बीज को ऊपर ऊपर बिखेर देना है और उसे हल्की मिट्टी से कवर कर देना है, साथ में पानी दे देना है। लगभग 2 से 3 हफ्ते में बैगन के पौधे बड़े गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब बैगन के पौधे 3 से 4 इंच के हो जाएं, तो आप इन्हें अलग अलग ग्रो बैग या गमले में ट्रांसफर कर सकते हैं। 12x12 इंच के गमले में आप एक बैगन का पौधा लगा सकते हैं और इससे बड़े गमले में आप 2 बैगन के पौधों को भी लगा सकते हैं। बैगन को फुल सनलाइट पसंद होता है। यदि आप अभी जून के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में बैगन के पौधे या फिर बीज लगाएंगे तो अगस्त में इनमें फ्लावरिंग और छोटे छोटे बैगन आना शुरू हो जाएंगे और लगभग 80 दिन बाद आपको बैगन तोड़ने को भी मिलने लगेंगे। बैगन को भी समय समय पर अच्छी तरह से खाद देना जरूरी होता है। आप हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद बैगन के पौधे में दे सकते हैं। कई बार बैगन में मिलीबग या माइट का अटैक होता है, इनसे बचने के लिए आप शुरुआत से ही बैगन में किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहें ताकि आपके बैगन में किसी भी तरह के रोग ना लगे। दोस्तों, बैगन को आप कलम से भी उगा सकते हैं। बैगन की कलम लगाने के लिए जुलाई का समय अच्छा होता है, तो आपके गार्डन में जो पुराने बैगन के पौधे लगे हुए हैं आप उनकी कलम को लगाकर भी बैगन के नए पौधे बना सकते हैं। दोस्तों, अगली हमारी सब्जी है टमाटर। टमाटर सभी घरों में इस्तेमाल होता है और आप जून के महीने में टमाटर भी लगा सकते हैं। टमाटर की कई अलग अलग वेराइटी होती हैं जो आप अपने पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं। टमाटर को लगाने के लिए भी इसके पौधे तैयार किए जाते हैं। पौधे तैयार करने के लिए टमाटर के बीज को ऊपर ऊपर मिट्टी पर बिखेर देना है और इसमें हल्की मिट्टी की परत से ढक देना है और इसके बाद इसमें पानी दे दीजिए और मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखेंगे तो टमाटर के बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाएंगे। लगभग 2 से 3 हफ्ते में टमाटर के पौधे बड़े ग्रो बैग या गमले में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टमाटर को फुल सनलाइट पसंद होता है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी टमाटर को की ग्रोथ के लिए सही नहीं होती, इसलिए आप इसे सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं। 6 से 8 घंटे की धूप टमाटर के लिए पर्याप्त होती है। टमाटर लगाने के लगभग 70 से 80 दिन बाद आपको टमाटर तोड़ने को मिलने लगते हैं। साथ में टमाटर को भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने की जरूरत होती है। टमाटर में भी कई तरह के रोग

0: आते हैं और इनसे बचने के लिए आपको पेस्टिसाइड पहले से ही तैयार रखना चाहिए। कई बार लीफ माइनर टमाटर में होता है और इससे बचने के लिए आप लौंग के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर के पौधे को सपोर्ट की जरूरत होती है तो आप किसी भी लकड़ी की मदद से इसके स्टेम को सपोर्ट दे सकते हैं। साथ में दोस्तों टमाटर को भी कलम से लगाया जा सकता है। आप टमाटर की कलम से एक नया टमाटर का पौधा तैयार कर सकते हैं। टमाटर का पौधा कलम से कैसे तैयार करना है? और दोस्तों हमारी नेक्स्ट सब्जी है भिंडी। भिंडी को भी आप जून के महीने में उगा सकते हैं। भिंडी स्पेशली गर्मियों में होने वाली सब्जी है जिसको फुल सनलाइट पसंद होता है। और भिंडी को आप जून के महीने में लगाएंगे तो आपको अगस्त से भिंडी तोड़ने को मिलने लगेगी। भिंडी लगाने के लिए आपको किसी भी 12x12 इंच की गमले या इससे अधिक साइज के गमले को लेना है। आप एक गमले में 2 से 4 भिंडी के पौधे उगा सकते हैं। भिंडी के बीज लगाने के लगभग 7 से 10 दिन बाद भिंडी के बीज जर्मिनेट हो जाते हैं और 45 दिन बाद भिंडी के पौधों से हमें भिंडी तोड़ने को भी मिलने लगती है। भिंडी बड़े आसानी से उगने वाला पौधा है, इसलिए आप इसे जरूर अपने होम गार्डन में ट्राई करें। भिंडी न केवल खाने में अच्छी लगती है बल्कि भिंडी के जो फूल हैं वह भी देखने में काफी सुंदर होते हैं। भिंडी को कैसे लगाया जाता है, बीज लगाने से लेकर भिंडी तोड़ने तक की पूरी जानकारी हमारे दोस्तों अगली हमारी सब्जी है जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है लौकी। लौकी को भी जून के महीने में बड़े आसानी से लगाया जा सकता है। लौकी स्पेशली साल भर होम गार्डन में ग्रो हो जाती है, लेकिन सर्दियों और बरसात में लौकी सबसे अच्छी होती है। लौकी लगाने के लिए आप इसे सीधे ही 15x15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले में या ग्रो बैग में लौकी के 2 बीज लगा दीजिए। जब लौकी के पौधे कुछ बड़े हो जाएं तो आपको एक गमले में केवल एक लौकी का पौधा ही रखना है। लौकी लगाने के लगभग 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है और लौकी को होम गार्डन में उगाना भी बहुत आसान है। लौकी में बहुत ज्यादा रोग भी नहीं लगते, लेकिन लौकी में पॉलिनेशन की समस्या आती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि 2 से 4 लौकी के पौधे जरूर लगाएं ताकि लौकी के पौधे में सही समय पर पॉलिनेशन हो पाए और उसके फीमेल फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट हो पाए, जिससे आपको ढेर सारी लौकी हार्वेस्ट करने को मिले। दोस्तों नेक्स्ट जो हमारी सब्जी है वह है खीरा। खीरा को भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। खीरा या ककड़ी को इसके बीज से उगाया जाता है। खीरा लगाने के लिए बीज को आप सेडी एरिया में उगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं। बीज को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले में ऊपर से अच्छी मिट्टी या फिर कंपोस्ट युक्त खाद लेकर इसके बीज लगा दीजिए और इसमें हल्की नमी जो है बनाकर रखिए। 3 से 4 दिन में खीरा के छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आएंगे। अगर आपने इनकी पौध तैयार की है तो 2 से 3 हफ्ते में यह किसी बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। खीरा को लगाने के लिए आपको 15 इंच या 18 इंच से बड़े ग्रो बैग की जरूरत होती है, क्योंकि यह एक बेल वाली सब्जी है। इसकी जड़ें काफी नीचे फैलती हैं, इसलिए बड़ा गमला लें ताकि आपको बाद में ढेर सारे खीरे तोड़ने को मिल सकें। एक बात का और विशेष ध्यान रखें कि खीरा के 2-4 पौधे जरूर लगाएं ताकि आपको आगे चलकर खीरा में पॉलिनेशन की समस्या ना आए। आप केवल एक पौधा लगाएंगे तो हो सकता है कि फीमेल फ्लावर में सही से पॉलिनेशन ना हो पाए। खीरा के पौधे को भी 6 से 8 घंटे की धूप की जरूरत होती है और इसमें भी आपको समय समय पर बदल बदल कर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना होता है, जिससे खीरे की ग्रोथ काफी अच्छी होती है। दोस्तों अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है करेला। करेला को बीज से लगाया जाता है। करेला लगाने के लिए आप 15x15 इंच या इससे बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग को लेकर इसमें 2 से 4 करेले के बीज लगा दीजिए। करेले के बीज को उगने में 10 से 15 दिन का समय लगता है। करेले लगाने के लगभग 45 दिन बाद इसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं और 60 दिन बाद आपको करेले तोड़ने को भी मिलने लगते हैं। करेला भी एक बेल वाली सब्जी है, इसलिए इसकी बेल को भी किसी क्रीपर नेट या फिर लकड़ी की मदद से ऊपर की तरफ चढ़ाना होता है। करेले में भी आपको हर महीने बदल बदल कर ऑर्गेनिक खाद देने की जरूरत है, जिससे आपको ढेर सारे करेले तोड़ने को मिलेंगे। जून के महीने में आप मूली भी लगा सकते हैं। मूली को घर में गमले में उगाना बहुत ही आसान है। जब हम जून के महीने में लगने वाली सब्जियों की बात करते हैं तो इसमें आप सब्जियों के बीज या फिर उनके पौधे लगा सकते हैं। मूली को लगाने के लिए इसके बीज को किसी भी गमले के ऊपर ऊपर बिखेर दीजिए और अच्छे से उसमें नमी बनाए रखिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में मूली के जो छोटे छोटे पौधे हैं वह मिट्टी से बाहर निकलकर आ गए हैं। आप इन पौधों को खुली धूप में रख सकते हैं। साथ में दोस्तों मूली के जो पत्ते होते हैं वह भी खाए जा सकते हैं। मूली लगाने के लगभग 50 से 60 दिन बाद आपको मूली गमले से उखाड़ने को मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल आप अपने किचन में सैलेड के रूप में कर सकते हैं। अगली हमारी सब्जी है जिसे आप जून के महीने में लगा सकते हैं, वह है पालक। पालक एक ऐसी सब्जी है जिसे आप पूरे साल भर अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। पालक लगाने के लिए आपको आपके पास जो भी मिट्टी है उसमें अच्छी जैविक खाद मिलानी है और उसके बाद आपको पालक के बीज उस मिट्टी के ऊपर बिखेर देने हैं और ऊपर से मिट्टी से कवर करने के बाद पानी दे देना है। पानी देने के लगभग 6 से 8 दिन बाद आपको पालक के बीज अंकुरित होते हुए दिखेंगे। पालक बहुत जल्द हार्वेस्ट करने को भी मिलने लगती है। लगभग 4 से 5 हफ्ते बाद ही आपको पालक की पहली पत्ती तोड़ने को मिल जाएगी। पालक को आप 2 से 3 बार हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियों को तोड़ते जाएंगे तो लगभग 10 से 15 दिन बाद आपको दोबारा इसकी पत्तियां तोड़ने को मिल जाएंगी। पालक के साथ आप इसी तरह की और पत्ते वाली सब्जियों को भी जून के महीने में लगा सकते हैं, जिसमें बथुआ, नौनिया, हरी भाजी, लाल भाजी जैसी बहुत सारी पत्तेदार सब्जियों को आप जून के महीने में लगा सकते हैं। यह सारे पौधे आप छोटे गमले में जिसकी हाइट 6 इंच हो उसमें लगा सकते हैं और यह सभी पत्तेदार सब्जियां सेहत के मामले में काफी ज्यादा फायदेमंद भी होती हैं। मई के महीने में आप मक्का या कॉर्न को भी अपने होम गार्डन में उगा सकते हैं। मई में लगाया गया मक्का आपको अगस्त में खाने को मिलेगा। बरसात के सीजन में मक्का खाना काफी लोगों को पसंद होता है। मक्का लगाने के लिए आपको 15x15 इंच के गमले में 2 से 4 मक्का के बीज लगाने होंगे। मक्का या कॉर्न लगाने के बाद इसे फुल सनलाइट में रखने की जरूरत होती है। मक्के को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसमें पानी तभी दें जब ऊपर की मिट्टी आपको सूखी लगे। गर्मी का सीजन है तो आप पुदीना भी आसानी से लगा सकते हैं। पुदीना की कटिंग लगती है, आप पुदीना की कटिंग को बाजार से भी ले सकते हैं। पुदीना को लगाने के लिए आपको किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की जरूरत नहीं है। जो भी मिट्टी आपके पास है आप उसमें पुदीना की कटिंग लगा दीजिए। पुदीना की कटिंग लगाने के लगभग 30 दिन बाद आपको उस कटिंग से पुदीना की पत्तियां हार्वेस्ट करने को मिलने लगेंगी। ध्यान रखें कि पुदीना को केवल अलग गमले में लगाएं, क्योंकि यह एक घास प्रजाति का पौधा है और एक बार यह बढ़ना चालू होता है तो फिर उसके बाद रुकता नहीं है। इसलिए इससे सेपरेट किसी गमले में लगाएं ताकि आपके दूसरे पौधे इससे खराब ना हो। मिट्टी में नमी बनाए रखने पर यह बहुत तेजी से अपनी ग्रोथ करता है। जैसे ही अभी जुलाई में बरसात आएगी और आप इसके गमले को खुली बारिश में रख देंगे तो इसकी ग्रोथ काफी तेज हो जाएगी और फिर आपको ढेर सारा पुदीना हार्वेस्ट करने को मिलता रहेगा। जून के महीने में आप फ्रेंच बीन्स को भी लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन्स खाने में काफी पौष्टिक होती है और इसके पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। आप 15x15 इंच या इससे बड़े ग्रो बैग या गमले को लेकर इसमें 4 से 5 फ्रेंच बीन्स के बीज लगा सकते हैं। फ्रेंच बीन लगाने के लगभग 45 से 60 दिन बाद हमें तोड़ने को मिलने लगती है। फ्रेंच बीन्स की दो तरह की वैरायटी होती है, एक वैरायटी होती है बुश वैरायटी और दूसरी वैरायटी होती है मचान वैरायटी। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार फ्रेंच बीन्स की वैरायटी को सिलेक्ट कर उसे अपने होम गार्डन में जून के महीने में लगा सकते हैं। आप जून के महीने में एलिफेंट फुट, ओल या जिमीकंद या फिर जिसे हम सूरन कहते हैं उसे भी लगा सकते हैं। आप इसे कंद से लगा सकते हैं। जो कंद आप बाजार से खरीद कर लाते हैं आपको उसी को लगाना है, उसमें से सूरन का पौधा तैयार हो जाएगा और उसी की जड़ों में आपको बाद में जो है जिमीकंद भी हार्वेस्ट करने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि यह सेड लविंग प्लांट है और आप इसे किसी छायादार जगह में भी रख सकते हैं या फिर अपने बड़े पौधों के नीचे इसके छोटे गमले को रख सकते हैं। यदि आपकी बालकनी या छत पर ज्यादा धूप नहीं आती तो आप उस जगह पर भी सूरन के पौधों को लगा सकते हैं। यह देखने में काफी सुंदर लगता है। 12 से 15 इंच के गमले में आप सूरन को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ सब्जियां जो आप जून के महीने में लगा सकते हैं। आपने अभी इन सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार नहीं की है तो उसकी तैयारी कर लें और जून के महीने में इन सब्जियों में से जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप अपने होम गार्डन में लगाएं और उनसे ढेर सारी सब्जियों को हार्वेस्ट करें।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
2: रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके रेडियो साथी मनीष और आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 एफएम। और अभी आपने हमारे किसान साथियों ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को सुना और जाना कि किस तरीके से हम अपने घर पर, छत पर, अपने आसपास किस तरीके से बागवानी लगा सकते हैं, किस तरीके से सब्जी के छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं जिससे हमारी आय में भी वृद्धि होगी और साथ साथ में ताजी ताजी सब्जियां हमें खाने को मिलेगी। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे साथियों को पता नहीं है, उनके बारे में कुछ जानकारी हम अपने किसान साथियों को देना चाहते हैं। सब्जियों की पौध तैयार करना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रहती है जो हम अब इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। सबसे पहले अधिकतर सब्जी फसलें जैसे कि टमाटर हुआ, गोभी व प्याज, इनके बीज छोटे व पतले होते हैं, इनकी स्वस्थ और उन्नत पौधे तैयार कर लेना ही आदि फसल उगाने के बराबर होता है। क्योंकि स्वस्थ पौधे तैयार करने के लिए पौधशाला के स्थान का चयन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इससे जुड़ी बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को समझना होगा, वो बातें क्या हैं कि सबसे पहली बात है कि स्थान ऊंचाई पर होना चाहिए जहां से पानी का निकास उचित हो, क्योंकि बरसात आने वाली है और ऐसे में हमारे किसान साथी लगा भी सकते हैं, सब्जियां भी लगा सकते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ऊंचाई पर वो हम खेत होना चाहिए। दूसरी बात ध्यान में रखना होगा हमारे किसान साथियों को कि भूमि दोमट बुलाऊ जो मिट्टी रहती है वो होनी चाहिए। पीएच मान जो रहता है वो, यदि आपको समझ में नहीं आता पीएच मान, तो आप नज़दीकी जो कृषि विभाग है या फिर केबी के वहाँ पर जाकर संपर्क करना चाहिए। पीएच का मान लगभग 6.5 होना चाहिए। स्थान पानी के स्रोत के समीप होना चाहिए। स्थान खुले में होना चाहिए जहाँ सूर्य की पहली किरण पहुँचे। स्थान देखरेख की दृष्टि से ही निकट होना चाहिए क्योंकि आपके आसपास हो। स्थान खेत के किनारे पर होना चाहिए ताकि कृषि कार्यों में रुकावट ना हो। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि कैसे तैयार करें हम अपनी पौध को, तो वो भी हम कुछ वैज्ञानिक विधि आपको कार्यक्रम के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि कैसे तैयार करें अपनी पौध में, पौधशाला में पौध कैसे बनाएं। तो यदि भूमि का पहली बार उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि दो ही फसल बोते हैं या फिर तीन फसल बोते हैं, तो उनको वही रट्टा रहता है कि हमें बस यही फसल बोना है। तो चूंकि नई आप सब्जी लगाना चाहते हैं तो भूमि की पहली बार जो उपयोग हो रहा है उसे फफूंद रहित करने के लिए इसका जो फार्मेल्डिहाइड नामक रसायन से उपचार करना आवश्यक होता है। इसका 25 मिलीलीटर से 1 लीटर पानी से घोल बनाकर पौधशाला के लिए चुने गए स्थान पर अच्छी तरह से इसका छिड़काव कर यानी छिड़काव कर भिगोएं। तत्पश्चात इस स्थान को पॉलीथीन चादर से अच्छी तरह से ढक दें। लगभग एक सप्ताह पश्चात पॉलीथीन चादर हटाकर इस जगह की अच्छी तरह से 3 से 4 बार जुताई व खुदाई कर खुला छोड़ दें, जिससे रसायन का असर जो रहता है वो समाप्त हो जाए। इसके पश्चात भूमि को अच्छी तरह भुरभुरा बनाएं और लगभग उपचार के 15 दिन पश्चात बुवाई के लिए तैयार करें। यह उपचार कमर तोड़ एवं क्लेग्ड गलन यानी डैम्पिंग ऑफ नामक बीमारी की रोकथाम के लिए सहायता प्रदान करता है। क्यारी बनाते समय यह ध्यान रखें कि प्रति 10 वर्ग मीटर के लिए लगभग 20 से 25 किलोग्राम सड़ी गली गोबर की खाद यानी ट्राइकोडर्मा हाइजोनम के साथ 1:50 का अनुपात जो रहता है उसमें मिलाकर 200 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 15 से 25 ग्राम इंडोफिल M45 नमक फफूंद नाशक और कोई भी उपलब्ध धूल कीटनाशक मिलाएं। इसमें क्यारियां 15 से 20 सेंटीमीटर की ऊंची उठी होनी चाहिए। इनकी जो चोंच रहती है वो निकली होनी चाहिए। डाई लगभग 1 मीटर और लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। सुविधा के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है। बीज का उपचार, बुवाई से पहले 2 से 3 किलोग्राम बीज की दर से कैप्टन, थीरम, बेबस्टीन इत्यादि फपूद नाशकों से हमें करना चाहिए। साथ साथ में अंकुरण होने पर घास हटा दें तथा फुब्बारे से हल्की सिंचाई और नमी बनाए रखें। कीटों व कमर तोड़ रोग से बचाव के लिए 0.25% इंडोफिल एम 45 या 2 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव अवश्य कर दें तथा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में के हिसाब से मेलाथियोन या फिर एंडोसल्फान का छिड़काव समय समय पर करते रहें। जब पौधा 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाए तो आप 0.3% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, थोड़ी कम मात्रा में करें ताकि जो बढ़वार है अच्छी से हो सके। 4 से 6 सप्ताह आयु वाले पौधों को 12 से 15 सेंटीमीटर ऊंची रोपाई के योग बनाएं। रोपाई से 3 से 4 दिन पूर्व सिंचाई रोक दें तथा उखाड़ने से 1 घंटे पहले हल्की सिंचाई कर दें। ऐसा करने से जड़ें नहीं टूटती हैं और स्वस्थ पौधे का रोपण यदि सायंकाल में यानी शाम के समय करें और उसमें हल्की सिंचाई करें। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौधे तैयार करने के लिए विभिन्न फसलों के बीज द्वारा क्यारियों का आकार करना चाहिए। तो ये बातें महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे किसान साथियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाह रहे थे। तो हमें जानकारी जो हमने प्रदान की, जो जानकारी आपको बताई है, हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को अच्छी लगी होगी। अब साथियों हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से जाने का। यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप नज़दीकी आप कृषि विभाग में जाकर संपर्क कर सकते हैं। साथ साथ में केवीके भी है, वहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आपको लगता है झाबुआ में अच्छे वैरायटी के बीज उपलब्ध हो तो वहाँ पर सबसे पहले अपने जो हमारे कृषि वैज्ञानिक रहते हैं उनसे सलाह लेकर बीजों का चयन करने, साथ साथ में नई तरीके से आप करें, आप अच्छी फ़ायदा इसमें होगी, अच्छा मुनाफा होगा। साथ साथ में किसान भाई हमारे क्या कर सकते हैं, बागवानी लगा सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं और जो आप फसल लगाते हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात है जो हमने पहले भी आपको बताई थी कि आप क्या करना है, गर्मी का मौसम है, गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में किसान साथी अपनी मेड़ बंधान का भी काम शुरुआत कर दें। साथ साथ में जो तालाब हैं आपके, जो तालाब खराब हो चुके हैं यानी मिट्टी भर चुकी है उनमें, उनकी साफ़ सफाई कर लें। साथ साथ में आसपास उनका मिट्टी चढ़ा दें और यदि आपको लगता है कि आप नहीं चढ़ा पाएंगे तो आप जो अपने नज़दीकी सरपंच हैं, सचिव हैं, उनसे संपर्क करके आप कर सकते हैं। अब हमें आशा है कि हमारे किसान साथियों को जो महत्वपूर्ण जानकारी दी वो उससे ज़रूर हमारे किसान साथी सीखेंगे। और ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, झाबुआ का पहला रेडियो स्टेशन है, ये आपके लिए है। आप आइएगा, कॉल लगाइएगा, बातचीत करिएगा और यदि आपको समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़कर आप अपनी बात को रख सकते हैं। वक्त हो चुका है कार्यक्रम से जाने का, फिर होगी आपकी अगले कार्यक्रम में मुलाकात। तो आपके रेडियो साथी मनीष लेते हैं जाने की अनुमति और चलते चलते आपको सुनवाते हैं एक और प्यारे से गीत को। नमस्कार,
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आप रेडियो, आपकी बातें।

ये आवाज है झाबुआ की और आप सुन रहे हैं रेडियो टांटिया फील 90.8 FM। आपनो रेडियो आपड़ी बातें।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला

अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आज के कलाकार का एक और बहुत ही खूबसूरत एपिसोड लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज जो कलाकार, जो गायिका, जो टैलेंट हमारे साथ मौजूद हैं, वो एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे गुजरात के शहर से हैं, अहमदाबाद से, और वो हैं दीना धर्मेश रावल मैम। मैं दीना धर्मेश रावल मैम का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आभार प्रकट करता हूं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, आपके फैंस के लिए, जो आज आपके फैंस बनने वाले हैं, उनसे बात कीजिए। थोड़ा अपने बारे में बताइए, कौन हैं आप, भला क्या करती हैं आप, और कहाँ हैं आप, थोड़ा सा बताइए।
1: सबसे पहले समीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपनी टैलेंट अपने श्रोताओं के सामने पेश कर सकूं। तो आपका भी धन्यवाद, और जो सुनने वाले हैं उन सभी का धन्यवाद। मेरा नाम दीना धर्मेश रावल है, मैं अहमदाबाद से हूं, और मेरे पर्सनल बातों के लिए मैं बताऊं तो मुझे गाने का संगीत का बहुत शौक है, और बचपन से ही मैं संगीत से जुड़ी हूं।
0: जी, ओके। तो दोस्तों, आपने जाना कि दीना मैम बचपन से ही संगीत से मोहब्बत करती आई हैं, संगीत से प्रेम है उनको, गायकी और अलग अलग तरीके के म्यूजिक में उन्हें बहुत आनंद आता है। तो जाहिर से बात है दोस्तों, हम आगे बात करेंगे दीना मैम से और उनके गीतों को भी सुनेंगे, बहुत मजा आएगा। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं इस प्यारे से प्रोग्राम की दीना मैम के ही गाए हुए इस बहुत ही खूबसूरत गीत से।

0: बहुत ही प्यारी गायकी और बहुत ही सुंदर शुरुआत। दीना मैम, चलिए आपको बेहतर समझने के लिए, आपके संगीत को बेहतर समझने के लिए, आपके संगीत के प्रति प्यार और समर्पण को समझने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा। यूं तो आपने अभी अभी कहा कि बचपन से ही आप संगीत से जुड़ी हुई हैं, फिर भी थोड़ा याद करके बताइए कि आपका सबसे पहला औपचारिक यानी कि ऑफिशियल परफॉर्मेंस स्कूल में हुआ होगा या कॉलेज में हुआ होगा या जहां भी हुआ हो, वो कब हुआ आपको याद है? किस भी उम्र में हो सकता है फोर्थ फिफ्थ क्लास में आपने स्टेज पे गाया हो, तो वो जरा याद करके बताइए कि कहाँ हुआ था वो, कैसा तो वो एक्सपीरियंस था और कौन सा गीत गाया था आपने?
1: जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया समीर जी। मुझे याद है कि मैं जब 12वीं कक्षा में थी तो उस टाइम पे हमारी एनुअल डे की सेलिब्रेशन होने वाली थी और उस सेलिब्रेशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था और उस वक्त सरगम मूवी आई थी और उस मूवी का एक गाना था डफली वाले डफली बजा। वो गाना मैंने मेरे एक साथीदार के साथ, जो कि वो ड्यूएट था, तो एक नरेंद्र पवार करके थे, उनके साथ मैंने परफॉर्म किया था स्टेज पे और वो गाना वंस मोर हुआ था। ये मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से याद है।
0: तो आपसे गुजारिश करूंगा मैम, एक लाइन उसकी सुना दीजिए प्लीज।
1: ओके
0: ओके, मजे मजे में, डोंट वरी, कोई प्रेशर नहीं है मैम, आराम से हंसते खेलते बात करते हुए बस ऐसे ही गुनगुना देना है। आप कहोगे तो मैं आपके साथ गुनगुना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं गायक मैं गायक नहीं हूँ, बिगाड़ दूंगा मैं गाने को। आप गाइए
1: जी। डफली बजा,
0: वाह,
1: मेरे घुंघरू बुलाते हैं आ, मैं नाचू तू नचा,
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बड़ी ही प्यारी मूवी थी साहब। ऋषि कपूर के ऊपर इसको फिल्माया गया था और पहली बार हमें देखने को मिला डफली कितनी खूबसूरत तरीके से बजाई जाती है। चलिए दोस्तों
1: जी,
0: आगे बढ़ते हुए दीना मैम की ही आवाज में एक और बहुत ही प्यारा सा गीत पेश करता हूं, लीजिए एंजॉय कीजिए उसे।

0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। मैम, आपने जो भी संगीत सीखा, गाया, एंजॉय किया, अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया, परफॉर्मेंसेस दी, इन सब के पीछे किसका इंस्पिरेशन रहा? किसने आपको मोटिवेट किया? किसने आपको इंस्पायर किया कि दीना आप गाइए, आपकी आवाज में खूबसूरती है, सीखिए और गाते रहिए? तो कौन थे वो या कौन है वो?
1: सच बताऊं समर जी, तो मेरी माँ थी। उनका बहुत ही बड़ा योगदान है मुझे संगीत में आगे बढ़ाने के लिए। वो भी बहुत ही अच्छा गाती थी। वो जब छोटी थी तो उनको उसके टाइम पे उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, तो जब उन्होंने मुझमें ये गाने की टैलेंट देखा तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि तुम भी जाओ, तुम भी अपने संगीत के माध्यम से लोगों को एंटरटेन करो और अपनी कैरियर भी बनाओ।
0: जी ओके ओके, बहुत खूबसूरत। तो कोई ना कोई तो होता ही है दोस्तों हमारी जिंदगी में, जो हमें प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और बस रास्ता दिखा देता है एक गुरु की तरह, और हम चल पड़ते हैं उस रास्ते पे। तो इस केस में, दीना जी के केस में, उनकी माता जी, उन्होंने इंस्पायर किया दीना जी को। बहुत सुंदर। हम दीना जी की माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से आज हम दीना मैम से बात भी कर पा रहे हैं और उनके गीतों को भी सुन रहे हैं। तो फिर चलते चलते क्यों ना एक और प्यारा सा गीत हो जाए दीना मैम का। आइए ना फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत सुंदर। अब जाहिर सी बात है दीना मैम, आप इतने समय से संगीत से जुड़ी हुई है, गा रही हैं, तो आपको तो इन एंड आउट सब कुछ पता होगा म्यूजिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट की, उस वाद्य की जो आपके साथ हमेशा मौजूद है, वो है आपका गला, आपकी आवाज। तो अपनी आवाज का ख्याल कैसे रखते हैं, उसको मेंटेन कैसे करते हैं?
1: समीर जी, मैं ये कहूंगी कि मैं हर रोज उठते ही ब्रश करके गुनगुना सा पानी जिसमें नमक और हल्दी और नींबू मिला के उसको हर रोज सुबह मैं सबसे पहले पी लेती हूँ। दूसरी बात, मैं कभी फ्रीज का पानी नहीं पीती और कभी भी कोल्ड ड्रिंक मैं नहीं पीती। आइसक्रीम को भी मैं बहुत ही कम खाती हूँ। और एक बात, बाहर में जब जाती हूँ, लोगों के साथ कांटेक्ट में आती हूँ, तो मास्क का यूज करती हूँ। अगर कोई इन्फेक्टेड है या किसी को थ्रोट इन्फेक्शन है या किसी को सर्दी का इश्यू है, तो उस टाइम में उनके साथ कांटेक्ट में आते पहले आने से पहले कॉन्टेक्ट में आने से पहले मास्क पहन लेती हूँ। ये सब बातों का हमें बहुत ही ख्याल रखना होता है। हमारे गले की संभाल हमें खुद ही करनी होती है, क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिनको ईश्वर की दी हुई ये भेंट प्राप्त होती है। और सबसे अहम बात यह है कि पॉजिटिव माइंडसेट और मेडिटेशन में करती हूँ, बस दैट्स इट।
0: वाओ, तो जाहिर सी बात है संगीत अपने आप में एक मेडिटेशन है, एक साधना है। वही चीज दीना मैम अपने मेडिटेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड को रखते हुए, अरे ऑफ कोर्स सीधी सी बात है ना दोस्तों, अगर आप खुश होंगे तो गाना अच्छा आएगा ही। अगर आप दुखी हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, गुस्सा है, तो भला कैसे गा पाएंगे। बहुत सुंदर। चलिए तो इसी बात पर इतने प्यारे से गीत को आइए सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत खूब, बहुत ही ज्यादा सुंदर। मैम, आपका संगीत, आपकी गायकी, मुझे ऐसा लगता है, वो तो आप मुझे बताएंगी अभी, कि क्या आप दिन में एक या दो सॉन्ग्स रिकॉर्ड करती हैं, मतलब एवरी सिंगल डे? तो आपकी जो ये गायकी है, जो सिंगिंग है, आपका जो ये पैशन है, मैं इसको शौक बिल्कुल नहीं कहूंगा, पैशन कहूंगा, उसको प्रेरित क्या करता है आपका, आपकी कैरेक्टर में से, आपके व्यक्तित्व में से, शख्सियत में से, ऐसी क्या चीज होती है जो उसको हमेशा प्रेरित करती है कि चलो दीना एक गाना हो जाए, चलो दीना एक गाना रिकॉर्ड करें, ऐसी क्या चीज है आपके अंदर?
1: समीर जी, मैं ये कहूंगी कि संगीत के प्रति मेरी जो प्रेरणा स्रोत, संगीत के प्रति जो मेरा प्रेरणा स्रोत है, वो वैसे तो लता दीदी है और साथ ही साथ कई पुराने गायक भी हैं
0: जी।
1: और इससे ज्यादा मेरे श्रोता है, जब भी मैं परफॉर्म करती हूँ तो उनकी तालियां, उनकी तारीफें, उन सभी की तरफ से मुझे मिल रही रिस्पेक्ट, यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा होती है।
0: बहुत खूब, बिल्कुल सही बात, सच्ची बात कही है दीना ने, दीना जी ने। दोस्तों, इस बात में अपने आप को छुपाने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार में हर व्यक्ति को अच्छा लगता है कि कोई उनकी तारीफ करे। देखिए, इसमें झूठ बोलने वाली या छुपने वाली कोई बात नहीं है, सबको पसंद होता है। तो अच्छी बात है ना, अगर आपकी कोई तारीफ करे तो आप इंस्पायर होकर और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो समझिए ना, ये एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी गोली है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम और बेहतर कर सकते हैं जो भी हम कर रहे हों। बहुत बढ़िया बात कही। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए, फिर इसी बात में झूमते हुए सुनते हैं प्यारा सा गीत दीना मैम का।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डियर मैम, इतना समय से गा रही हैं, मैंने अभी आपसे पूछा तो आपने बताया कि स्टेज पे भी आपने गाया, आपकी मॉम ने, आपकी माताजी ने आपको इंस्पायर किया। क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती है, किस तरीके से आप अपने गले का ख्याल रखती हैं, आपने सारी चीज़ें बताई, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, और जाहिर सी बात है मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में हर व्यक्ति को तारीफ सुनना अच्छा लगता है। मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा दीना मैम, लेकिन आज तक की डेट में आपकी गायकी से संबंधित जो सबसे प्यारा अवार्ड आपको मिला हो, तारीफ आपको मिली हो, एकॉम्प्लिशमेंट आपको मिला हो, थोड़ा सा हमें उसके बारे में बताइए, कहाँ था, क्या था, कैसे मिला था।
1: समीर जी, मुझे वो लम्हा, वो पल याद है जब मैं कॉलेज के दिनों में मैं गाया करती थी। एक दिन हमारी ज्ञाति का एक फंक्शन था, बहुत ही बड़े हॉल में था, तो उसमें कई लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और मेरी मम्मी ने मुझे इंस्पायर किया कि तू भी वहां पे जा और वहां पे कुछ अच्छा सा गाना को पार्टिसिपेट कर ले। मैं पहले तो तैयार नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ज्यादा फोर्सफुली बोला तो मैंने उस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। और आप नहीं मानेंगे समीर जी, कि परफॉर्मेंस जब चालू होने वाला था और मेरा टर्न आने ही वाला था तो मेरे हाथ पैर वैसे कंपने लगे, वैसे शिवरिंग होने लगा, थोड़ा सा गला मेरा सूखने लगा, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के मैं स्टेज पे गई और वहां पे ऑर्केस्ट्रा वाले सब बैठे थे, तो वहां पे जो मेन थे कीबोर्ड पे, उस बंदे के सामने मैंने नजर मिलाई और उन्होंने मुझे थम्स अप किया और मुझे चीयर किया, तो मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बन गया और फिर मैंने गाना शुरू किया। जो गाना था आजा रे परदेसी, मैं कब से खड़ी इस पार।
0: अच्छा।
1: और जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया। पूरा गाना मैंने कंप्लीट किया और इसके बाद में मुझे सभी लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लीमेंट्स दिए और वहां पे जो चीफ गेस्ट थे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बुलाकर बोला कि आप इस लड़की को संगीत की शिक्षा दीजिए तो वो बहुत ही आगे बढ़ सकती है। ये कुछ मेरे लाइफ का यादगार किस्सा है जो मैंने आप सभी से शेयर किया।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों, हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि बिल्कुल जो ऐसा एक किस्सा था जो दीना जी के दिल के बहुत नजदीक है, उनको सेंसिटिव कर देता है, उनके दिल को छूता है, वो आज हमें सुनने को मिला है। बहुत प्यारा। और इस तरीके के जिस जो जो भी किस्से हमारी जिंदगी में गुजरे हैं, जरा उनको याद करके देखिए ना, बहुत मजा आएगा। अपनी यादों में जाइए, एंजॉय कीजिए उसे। तब तक दीना मैम का गाया हुआ ये प्यारा सा गीत सुन लीजिए।

0: बहुत सुंदर। अब तो बहुत वक्त गुजरा दी ना मैम आपने गाते हुए, माइक पकड़ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपने परफॉर्मेंस दी, लेकिन आज की दुनिया है सोशल मीडिया की, डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड। यहां पर सोशल मीडिया बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है, बनता ही जा रहा है, तो ठीक है ना, उसको हम अपने आफ्टरऑल हमारे लिए ही तो वो बनाया गया एक टूल की तरह, तो हम उसको क्यों ना इस्तेमाल करें, करना ही चाहिए, वो बनाया ही इसीलिए गया है। तो आप जैसे कलाकार यानी कि गायक, उनके लिए सोशल मीडिया किस तरह से इंपॉर्टेंट हो गया, क्या क्या इस्तेमाल हम कर सकते हैं, आप क्या क्या करती हैं?
1: समीर जी, देखा जाए तो सोशल मीडिया मेरे जैसे कलाकारों के अलावा जो नए कलाकार हैं, जो उगते सितारे हैं, उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो सबको मतलब एक स्टेज देता है, एक पूल देता है, ऐसा मैं कहूंगी तो ज्यादा नहीं होगा। जो कलाकार सोशल मीडिया बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं बल्कि एक पूल देता है कलाकार को, जो कलाकार को सीधे दर्शकों से जोड़ता है। मेरे बारे में कहूँ तो खास करके मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब जैसी बहुत सारी एप्स के साथ जुड़ी हूँ, और ये मुझे इस तरह से हेल्प करते हैं कि जब भी मैं मेरा कोई अच्छा मुझे लगे कि नहीं ये ठीक गाया है और मैं पोस्ट करती हूँ, तो मुझे पर्सनली बहुत मजा आता है। और जो अन्य कलाकार हैं जो कि फिनेंशियल उनको फिनेंशियल जरूरत होती है, तो उन लोगों के लिए भी वो सोशल मीडिया बहुत ही हेल्पफुल है, ऐसा मेरा मानना है। और फेम तो मिल ही जाता है, क्योंकि जब सोशल मीडिया का उपयोग करके आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो कहीं ऐसे लोग होते हैं जो संगीत के साथ जुड़े हैं, वो सभी आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया आज के जमाने में बहुत ही यूजफुल है।
0: बहुत खूब, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो दोस्तों, बहुत संभाल के इस मीडिया को, इस टूल को इस्तेमाल करते चलिए और एंजॉय कीजिए अपने टैलेंट को। आइए तब तक आगे बढ़ते हुए दीना मैम के इस प्यारे से गीत का आनंद उठाएं और फिर मैं भी दीना मैम के पास वापस आता हूं।

0: बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मैम जाहिर से बात है, हम जब कभी किसी कला का प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई अपना पैशन परस्यू कर रहे होते हैं, तो हमको सपोर्ट चाहिए होता है। हम अकेले कई बार नहीं कर पाते। वैसे भी आप किसी भी कलाकार को ले लीजिए, चाहे फिर वो कोई प्लेयर हो, कोई नेता हो, कोई राइटर हो, कोई सिंगर हो, कोई म्यूजिशियन हो, उसके पास एक सपोर्ट फंक्शन होना चाहिए, वरना वो कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो हम आपके सपोर्ट फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब आपके परिवार ने आपके टैलेंट को बढ़ाने में किस किस तरह मदद की, थोड़ा बताइए ना।
1: जी समीर जी, बिल्कुल बताऊंगी। मेरे परिवार ने हमेशा से ही मेरा साथ है। मेरे परिवार के सदस्य मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा से। मेरी प्रोग्रेस का श्रेय मैं अपने परिवार को दूंगी, क्योंकि जब हमारा परिवार समीर जी हमारे साथ नहीं होता, तब उसका इफेक्ट सीधा हमारी कला पर होता है, हमारी रचनात्मकता पर होता है, और हमारी प्रोग्रेस में वो बाधा बन जाता है। लेकिन इन सब चीजों से मैं दूर हूं, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। परिवार जब साथ होता है ना, तो हम दिन ब दिन हमारी कला को उनके सपोर्ट से निखार सकते हैं। मेरे परिवार के बारे में कहूं तो सबने मुझे उड़ने के लिए पंख दिए हैं और भरोसा दिया है, ताकि मैं अपनी पहचान खुद बना सकूं।
0: बहुत बढ़िया दोस्तों, इस तरीके का सपोर्ट फंक्शन अगर किसी के पास हो, तो जाहिर से बात है उनके टैलेंट को तो पंख लग सकते हैं, जैसा कि दीना मैम ने कहा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं, वेल आई एम नॉट अ टैलेंट, बट मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं अगर अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, दीना मैम से बात कर रहा हूं, तो मेरा जो परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, उनको पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो वो मेरे चेंबर के आसपास या मेरे रूम के आसपास नहीं आएंगे। दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू स्टे काम, पीसफुल, साइलेंट, कोशिश करेंगे कि कोई बर्तनों बर्तनों की आवाज ना आए। तो यही सपोर्ट होता है। उसके बाद अगर मेरा सेशन लंबे चल रहे हैं, तो वो हल्के से बीच में आकर एक कप चाय, कुछ गर्म पानी, कुछ देके जाएंगे, सो दैट आई कैन टेक अ ब्रेक। सो दैट्स इट, यही सपोर्ट तो फंक्शन चाहिए होता है। तो आप अपने सपोर्ट फंक्शन को जरा चेक करो दोस्तों, बहुत मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए, तब तक दीना मैम की आवाज में सुने ना ये बहुत ही खूबसूरत संगीत।

0: बहुत खूब दीना मैम, बहुत बहुत आभार, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बस अब चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी आप, मौका है, बात कर लीजिए उनसे।
1: जी समीर जी और जी श्रोता मित्रों, मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि संगीत आत्मशुद्धि और आत्म उन्नति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। संगीत एक महाशक्ति है जो सुरों के माध्यम से प्रस्तुत होती है। संगीत महाविद्या है, संगीत ईश्वरीय नाद है, संगीत प्रेम है, पूजा है, श्रद्धा है, संगीत भक्ति है, शक्ति है, शांति है, संगीत प्रेरणा है, संगीत समर्पण है, संगीत साधना है, संगीत आराधना है। दोस्तों संगीत की कोई भाषा नहीं होती, संगीत खुद एक भाषा है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी बातचीत अच्छी लगी होगी। आप सभी को प्यारा जय हिंद जय भारत। अंत में मैं गुजराती हूँ, गुज्जू हूँ, तो कुछ गुजराती में भी कहना चाहूंगी। सूरो त्यारे जीवंत बने छे जयरे ए दिल थी निकले छे अने बीजा दिल सुधी पहुंचे छे। लव यू ऑल, बाय।
0: थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार।

दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ। तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: और आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं रोहिणी जी। और जैसा मैं हमेशा करता हूं, जिससे कि जो भी हमारे मेहमान हैं वो सीधे सीधे आपसे बात करें, मैं बीच में से हट जाऊं, मैं रोहिणी जी का स्वागत करते हुए उन्हीं से प्रार्थना करूंगा कि वो आपसे बात करें, आपको बताएं कि वो कौन है, कहाँ हैं, क्या करती हैं। तो रोहिणी जी, हमारे सुनने वालों के मुखातिब होइए, उनके सामने आइए, हमें बताइए आप कहाँ हैं, क्या करती हैं।
1: मेरा नाम टीवीबी रोहिणी है। बेसिकली मैं हैदराबाद की नेटिव हूँ और रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में। ऑल माय लाइफ, जब तक रिटायर नहीं हुए तब तक तो हम लोग सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड काम कर रही थी। बाय प्रोफेशन, एज अ प्रोफेशन आई हैव रिटायर्ड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा। फॉरेक्स मैनेज करती थी मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, और बैंक ऑफ बड़ौदा से रिटायर हुई हूँ। और मेरे हस्बैंड सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, ही वाज अ डायरेक्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। वी लिव्ड इन पंडारा रोड। तो ये हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा ये हमारा।
0: दैट्स रियली अमेजिंग। दोस्तों, आप में से बहुत बहुत सारे लोगों को मालूम होगा पंडारा रोड बहुत ज्यादा हैपनिंग प्लेस है, और वहां पर रहकर हम बात करेंगे रोहिणी जी से, जिन्होंने बहुत एक्सपीरियंस गैदर किया, समझा दुनिया को, जिंदगी को समझा। तो रोहिणी जी, इस प्रोग्राम के तहत हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी की, आध्यात्म की, अपने आप को पहचानने की। तो आप मुझे थोड़ा एनलाइटन करने कीजिए कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म है क्या? और सबसे पहले आपको आध्यात्म के बारे में कब पता चला, किसने बताया?
1: ये बहुत अच्छा आपने पूछा। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे आपने इस सुंदर दिव्य दर्शन नाम से जो चैनल आप कर रहे हैं काम, इस नाम से उस पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर हैविंग इनवाइटेड मी हियर। और दूसरा, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, और सुंदर तरीके से अगर बताएं तो आध्यात्म तो हर घर में, एवरीवन, एवरी फैमिली के अंदर आप देखोगे तो पूजा पाठ अपने घरों में करते ही हैं। तो आस्था ही हमने समझा कि स्पिरिचुअलिटी है। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा शुरुआत हुआ था, आई वुड से कि मैं बहुत ही ब्लेस्ड अपने आप को मानती हूँ कि मेरी आत्मा ने या मेरे सोल ने ऐसे पेरेंट्स को चुना जो आंध्रा ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं
0: जी।
1: तो आई हैव सीन माय पेरेंट्स डूइंग यू नो रिचुअलिस्टिक पूजा पाठ करना, उनको मैं बचपन से देखती रही हूँ, और मुझे लगा कि वही आध्यात्म है या स्पिरिचुअलिटी है। बट दैट इज ओनली रिचुअल दैट वी वर डूइंग इट, और आत्मा को अपने इवोल्यूशन के लिए जो चाहिए था वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। बट एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी मतलब आपके अंदर ये प्रश्न उठना कि मैं कौन हूं और मैं कहाँ पे आई हूँ, इस पृथ्वी पे आके क्या मकसद है मेरा और मुझे कहाँ जाना है
0: जी।
1: अगर ये क्वेश्चन आपके अंदर उठे तो आप समझो कि आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल पड़े हो। देयर एक्चुअली योर फर्स्ट स्टेप बिगिंस। और वो कब होता है, जनरली हम देखते हैं कि या तो मन बहुत ही खुश है या फिर बहुत ही सैड है। जैसे घर पे आपने अपने क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को, किसी को देखा, ही हैज पास्ड अवे और शी हैज पास्ड अवे, एंड यू सी द बॉडी एंड यू सी दैट ही इज नो मोर इन इट, देयर इज नो लाइफ, आत्मा कहीं चली गई। ये तो शरीर है, और वो जब देखते हैं वो वहां से हमारा क्वेश्चन शुरू हो जाता है अंदर कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रही हूँ और मुझे कहाँ जाना है
0: जी।
1: तो ये वाला जो प्रश्न आपने बोला मेरे स्पिरिचुअलिटी का कब शुरू हुआ, तो ये तो मेरे को लगता है कि 35-36 ईयर्स ओल्ड जब मैं हो गई, आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज 34. उसके बाद से ये डीपर सर्च जो है, ये हमारा जर्नी इस सर्च पे शुरू हुआ.
0: ओके,
1: सो दिस इज व्हाट आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी.
0: जी,
1: तो इस तरह से हम स्पिरिचुअलिटी को समझ, जो मुझे समझ में आया अभी तक, तो मैं ये बता सकती हूँ. आई एम स्टिल ऑन दैट जर्नी.
0: जी,
1: और ये नेवर एंडिंग जर्नी है, मुझे ये ऐसा लगता है. आई एम देयर फ्रॉम 1996 से मैं कुछ साधना कर रही हूँ, जिससे मुझे इस बात पे कॉन्स्टेंटली विथ कमिटमेंट चलने का मौका मिला.
0: जी, बहुत खूब. इसी तरीके की यात्राएं हमारे अपने जीवन में भी होंगी. आज जब रोहिणी जी ने कहा है, तो हो सकता है आपको भी आपकी यात्रा याद और आ रही हो. दोस्तों, चलिए उस यात्रा पर चलते हैं अपने को समझने की और इस भजन को सुनते हुए.

0: बहुत सुंदर भजन और बहुत ही सुंदर बात रोहिणी जी। तो आज के प्रोस्पेक्टिव में, क्योंकि आज बहुत कुछ बदल गया है, जिस वक्त आपने स्पिरिचुअलिटी के बारे में जाना, अपने समाज से, अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से, अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट से, उस समय में और समय में बहुत फर्क आ गया है। तो आज के यूथ के लिए आपको क्या लगता है, जो आज की जनरेशन है, जो हमें सामने दिखाई दे रही है, हमारे परिवार में ही लोग हैं, उनके लिए अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? या वो सिर्फ ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हर चीज में ट्रेंड फॉलो करते हैं। घर बनाना है, गाड़ी लेनी है, पार्टनरशिप, कपड़े और जॉब और एवरीथिंग। सो आर दे फॉलोइंग ट्रेंड ओनली, या स्पिरिचुअलिटी का कुछ भी मायने है उनका?
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा। जैसे मैं अपने आपको ब्लेस्ड बोल रही थी, उसी तरह से मैं तो बोलूंगी कि आज का जो जनरेशन है, यंगर जनरेशन, दे आर रियली ब्लेस्ड एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और उनको ये चीज तो समझ में आ जा रही है बहुत अच्छे से कि वेल्थ एंड नेम एंड फेम इज नॉट द अल्टीमेट हैप्पीनेस। वो भी कभी भी खत्म हो जाती है, उसके बाद क्या परमानेंट खुशी जो है वो कहाँ से मिलेगी, उसको कहाँ से तलाशना है, और उस परमानेंट खुशी के लिए क्या करना है, ये नॉलेज उन लोगों में बहुत यंग उम्र में ही मिलने लग गई है। मैंने जैसे बोला कि 36 इयर्स मुझे लगे कि वहां मेरा सर्च शुरू करने के लिए, तो मेरा बेटा जो 7 साल का था, ही वॉज रियली ब्लेस्ड। उसको अनोइंगली वो दीक्षा मिली, अनोइंगली उस पाथ को चुनने का मौका मिला, एंड देन ही कुड गो मूव फॉरवर्ड। उसी तरह से मैंने देखा कि धीरे धीरे मैंने भी जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त किया, देन माय पैशन, इट वाज माय पैशन टू टेक अलोंग पीपल ऑन दिस पाथ, हैंड होल्ड करके लोगों को, जिसको भी इंटरेस्ट है अपने आत्मज्ञान के रास्ते पे चलने का, उसका हाथ पकड़ के उस रास्ते पे ले जाने का मेरा पैशन रहा है। हीलिंग वाज माय पैशन। पहले मैं बीमार थी, उसमें से मैंने अपने आप को बाहर निकाला, फिर उसके बाद इस जर्नी पे चलती रही, और चलते चलते जितने लोगों को पॉसिबल है, जितने लोगों को चाहिए, इच्छा है, उन लोगों का हाथ होल्ड करके मैं आगे लेके चलना ही मेरा मकसद बना लिया अपने जीवन का
0: जी।
1: तो इसमें मैंने पाया है कि 8 साल की उम्र से लेके 75 साल की उम्र तक तब को मैं इस रास्ते पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ। आई फैसिलिटेट द कोर्सेस फॉर देम। तो वो कोर्सेस के माध्यम से उनको अनोइंगली नोइंगली वो कौन है ये जानने का मौका मिल जाता है। तो जो अल्टीमेट चीज है, हम इस पृथ्वी पे आए क्यों, क्या करना चाहते हैं, उसके रास्ते पे उनको ले जाना शुरू कर देती हूँ। तो आई फील दैट यंगर जनरेशन इज रियली ब्लेस्ड। और मैं देखती हूँ कितने यंगस्टर्स हैं जो एक बार इस रास्ते पे एक चख लेते ना, जैसे कि आंखें बंद किया और आपने ध्यान अपने सांस पे लेके गए, सी हु यू आर, आपको समझ में आना लगता है।
0: Wow.
1: और आज के डेट में बच्चे से लेके बड़े तक सारे स्ट्रेस में ही है, और जैसे स्ट्रेस से निकलने के लिए कुछ भी रास्ता अगर थोड़ा सा भी उनको चखा दो तो दे आर गोइंग डीपली इनटू इट। तो आई वुड से कि इवन इफ दे आर फॉलोइंग ए ट्रेंड, इट नेवर माइंड, बट वो रास्ते पे चल पड़े ना
0: जी।
1: और वो जो चलना शुरू करते हैं, फिर उनको और कुछ चाहिए भी नहीं, वो सिर्फ इस रास्ते पे ही चलना चाहते हैं। So they are enjoying that ultimate bliss and परमानंद जो है वो महसूस कर पा रहे हैं। तो उससे बढ़कर और कुछ चाहिए ही नहीं हमें।
0: बहुत सुंदर विचार करने वाली बात है, और हमें विश्वास कई बार हो जाता है कि हम यूथ से या आज की जनरेशन से थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रोबेबली हम चाहते हैं कि वो हमारी तरीके की जिंदगी जिए, लेकिन उनको भी पूरा हक है अपने तरीके से जीने का। तो रोहिणी जी ने बहुत प्यारे ढंग से हमें क्लैरिफाई किया, समझाया है। आइए विचार करते हुए इस भजन को सुने और फिर आगे बढ़ते हैं।

0: सुंदर। और जाहिर से बात है रोहिणी जी, जिसने जैसे हमने पिछले सवाल में थोड़ा सा डिस्कशन किया और आपने हमें बताया, हमको समझ में आई बात। और आज के जमाने में सोशल मीडिया बहुत ज्यादा हावी है हम पर, हम लगातार कोशिश में लगे हैं कि वो हमारे मतलब हमको इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस ना करे, लेकिन सोशल मीडिया का आध्यात्म पर क्या असर पड़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी कैसे इन्फ्लुएंस हो रही है सोशल मीडिया से, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप?
1: हाँ बिल्कुल, बढ़िया बोला आपने, बहुत अच्छा पूछा। सोशल मीडिया समझिए कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जो इतने फास्ट इम्प्रूव हुई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या, सोशल मीडिया क्या, ये सब चीजों की वजह से तो हमें कोने कोने में बैठे हुए भी कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है तो हमें बहुत जल्दी से पता चल जाता है, इज़न्ट इट
0: जी।
1: तो अब इसके दोनों एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पुराने जमाने में टीवी चलती थी तो लोग सिर्फ एक टीवी ही थी और कुछ थी नहीं, तो लोग उसमें ग्लूड हो जाते थे, बट देन देयर वाज अ टाइम कि दे वर फेड अप ऑफ दैट, दे कुड कम आउट ऑफ इट। सिमिलरली ये भी आप भी मानिए, सोशल मीडिया पे हर किसी के हाथ में व्हाट्सएप है और फेसबुक है, लोग उसमें गुम हो जाते हैं। हाँ, उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो सही है कि नहीं, वो खुद अपने विजडम से उनको ये यू नो दे नीड टू हैव देयर ओन विजडम टू अंडरस्टैंड कि कौन सी बात सच्ची है कौन सी बात झूठी है, इतना तो विजडम उनमें इंटेलिजेंस होना चाहिए। और वो मीडिया के वजह से वो कैसे अफेक्ट हो रहे हैं, अपने आप को कैसे बचाना है, ये भी बहुत जरूरी है। बट ऑल सेड एंड डन, सोशल मीडिया इज रिक्वायर्ड एंड इज गुड। इट्स गुड दैट सोशल मीडिया के वजह से काफी सारा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है स्पिरिचुअलिटी के लिए। जिन जिन को रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, वो यहाँ टटोलते टटोलते बाई चांस एक्सीडेंटली भी अगर उसमें कहीं देख लेते हैं एंड देयर उनका इंटरेस्ट जग जाता है तो इट कैन कॉज एन अवेकनिंग इन देम, तो यू कैन टेक इट इन बोथ वेज।
0: जी,
1: सोशल मीडिया कैन इंपैक्ट इन अ वेरी पॉजिटिव वे और बहुत ही अच्छे वैल्यूज के साथ में सोशल मीडिया को अगर लेके चले तो इट विल हैव वेरी गुड इंपैक्ट ऑन इवन स्पिरिचुअलिटी एंड द चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली लोग जो सोशल मीडिया पे रहते हैं।
0: आई गेट इट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये बात बार बार कही जा रही है, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया एक दुधारी तलवार है, डबल एज सॉर्ड, हमें इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना आना होगा। इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि हम अपना नुकसान कर बैठें, लेकिन सोशल मीडिया को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हम स्पिरिचुअलिटी के और नजदीक जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए विचार करते हुए, ये एक थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी आइडिया हो सकता है सोशल मीडिया को यूज करने का, विचार कीजिए और इस भजन का आनंद लीजिए।